सुप्रभात, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है मंगलवार, शक संबद 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की सभा। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं और अब समय है खेती किसानी कार्यक्रम का। सब्जियों के स्वास्थ्य पौधे कैसे तैयार करें विषय पर जानकारी सुनी अनीता तिर्की से।
4: सब्जियों की पैदावार उनके पौधे की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी जैसी सब्जियां जो कि पौधे से तैयार की जाती है, निरोग पौधे से 20-30% तक उत्पादन बढ़ जाता है। मृदा सौरीकरण विधि से क्यारी उपचारित करके पौध तैयार करने से इस फसलों में स्वस्थ बिचड़ा तैयार किया जाता है, जिससे भरपूर उपज की प्राप्ति की जा सकती है। सब्जियों का स्वास्थ्य पौधा तैयार करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें किसान अक्सर भूल करते हैं, जिनसे उनको भारी नुकसान होता है। वर्तमान समय में किसान भाई सब्जियों की पौध तैयार करने पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, फलस्वरूप खेत में फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पौधों का खेत में रोपण के बाद भी कीट और रोग नियंत्रण के लिए आरंभ से ही दवा का प्रयोग करना पड़ता है। सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए मुख्य रूप से 2 विधियां अपनाई जाती हैं। एक है साधारण विधि, इसमें रसायनों का प्रयोग अधिक होता है, जबकि दूसरा है मृदा सौरीकरण विधि, इसमें रसायनों का प्रयोग कम किया जाता है। साधारण विधि में सामान्यतः किसान भाइयों का पौधशाला ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां की जमीन आसपास से थोड़ी ऊंची हो और खेत में पानी रुकने की समस्या नहीं हो, जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिलता हो। पौधशाला की मिट्टी बारीक, नम और भुरभुरी होनी चाहिए। क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 15-20 सेंटीमीटर रखते हैं। इससे सिंचाई करने और खरपतवार हटाने में सुविधा होती है। क्यारियों को ऊंचा रखने से पानी का जमाव नहीं होता है। प्रति क्यारी के हिसाब से 20-25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और कीड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए 15-20 ग्राम फ्यूराडोन और 15-20 ग्राम डायथन M45 मिट्टी में मिला दिया जाता है। पौधशाला में बीज को बोने से पहले बीज को फफूंदी नाशक दवा जैसे बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। बीज को पंक्तियों में 0.5-1 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 5 सेंटीमीटर रखते हैं और बोने के बाद पंक्ति को बारीक गोबर की खाद या मिट्टी की पतली सतह से ढक दें। क्यारियों को फुहारे से हल्की सिंचाई करते हैं, क्यारी को सूखी घास से ढक देते हैं और गर्मी के दिनों में सुबह और शाम और जाड़े के दिनों में एक ही बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बीज के अंकुरण हो जाने के बाद घास को हटा देते हैं। जाड़े और बरसात के दिनों में क्यारियों के ऊपर छाया देने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए पॉलीथीन का चादर या घास फूस के छपरों का प्रयोग करते हैं। जब पौधा 2-3 सेंटीमीटर का हो जाए तो अधिक छाया या अधिक पानी देने से पौधे पीले और मुलायम हो जाते हैं। रोग और कीट का प्रकोप होने की संभावना रहती है। आर्द्र और गर्म मौसम में आर्द्रपदन जैसी बीमारियों की आशंका बनी रहती है। रोगग्रस्त पौधों को हमेशा हटाते रहना चाहिए। पौधशाला से शुरू होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पौधशाला की मिट्टी को सूर्य के तेज प्रकाश से उपचारित करने पर सौरीकरण यानी सोलराइजेशन कहते हैं। क्यारियां बनाने के बाद फुहारे से हल्का पानी डालकर उसको प्लास्टिक की चादर से ढककर चारों तरफ से मिट्टी को दबा देना चाहिए। ऐसा करने से हवा और भाप बाहर नहीं निकलती है, लेकिन यह कार्य गर्मी के दिनों में करना चाहिए।
0: सब्जियों के स्वस्थ पौधे कैसे तैयार करें विषय पर जानकारी अभी आप सुन रहे थे अनीता तिर्की से। इसी के साथ आज का खेती किसानी कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन।

0: मुस्कान में बड़ी शक्ति मानी गई है। एक चीनी कहावत है, अपनी मुस्कान का इस्तेमाल दुनिया बदलने के लिए करो। दुनिया को अपनी मुस्कान बदलने मत दो। वस्तुतः हमारा चेहरा हमारे दिल का आईना होता है, क्योंकि जो दिल में है वो चेहरे पर झलक हुए बिना रह नहीं पाता। हालांकि वास्तविक रूप में हंसना तो अकेले में हंसना होता है। नियति जब हमें रोने के 100 कारण दे तो उसे दिखा दें कि हमारे पास भी मुस्कुराने की 1000 वजह हैं। मुस्कान हमारे दिल के झरोखे से आती हुई वो रोशनी है जो बताती है कि अंदर सबका ध्यान रखने और सबके लिए उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति है। अक्सर चेहरे की मुस्कान से ये समझा जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान तमाम चिंताओं को पल भर में दूर करने की क्षमता रखती है। कभी कभी दर्द, गुस्से और खीज या कभी बेचैनी को छुपाने के लिए मुस्कुराहट एक पर्दे का काम भी करती है। यह मुस्कुराहट किसी की खुशी की वजह बन जाती है तो कभी कभी हमारा दर्द भी मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर आ जाता है। हर एक मुस्कान को पढ़ना आसान नहीं। मुस्कान में आंखों की जुगलबंदी मायने रखती है। कहते हैं कि जब दिल से मुस्कुराते हैं तो हमारी आंखें भी मुस्कुराती हैं, लेकिन जब हम बनावटी तौर पर मुस्कुराते हैं तो आंखें हमारा साथ नहीं देती। हम जिन लोगों से हर रोज मिलते हैं उनके चेहरे के आकार प्रकार और हाव भाव हमारे अंतस में एक गहरी छाप छोड़ देते हैं। जब उन चेहरे पर झूठी मुस्कान तैरती है तो हम उसे भांप लेते हैं। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, उसका मुस्कुराहट के साथ सामना करना ही श्रेयस्कर माना जाता है। इसलिए जब भी मुस्कुराने का मन हो तो खुलकर मुस्कुराना चाहिए। हम इस तरह मुस्कुराने की आदत डालें कि परिस्थितियां भी हमें परेशान करके थक जाएं और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए कार्यक्रम की शुभारंभ अनुप चलोटा के स्वर में प्रेरणादायक भक्ति गीत के साथ करते हैं।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में आज आपने नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज में माता रानी को समर्पित लोकप्रिय भक्ति रचनाओं का आनंद लिया। इसी के साथ आज का आराधना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवासे पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

श्री रामचरितमानस कान का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर आप सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, डर के आगे जीत है विषय पर। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद और भेंट करता होंगे संजीव कुमार लाल। 7:15 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। खुला आकाश ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 7:45 पर। आज इस कार्यक्रम में वार्ता का विषय है जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार। लोक रंग लोक गीतों का कार्यक्रम आप सुनते हैं 8:45 पर। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे उड़ाव भाषा में। कार्यक्रम होंगे गोविंद उड़ाव और साथी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन आप सुनते हैं 9 बजे। 9:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमारे गायक कलाकार होंगे राणा झा। इनसे आप सुनेंगे राग तोड़ी में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। संगत करेंगे तबला पर कौशिक दास और हारमोनियम पर संचाली नाग।

0: सुबह के 10 बजे वक्त होगा क्रीड़ा जगत कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की होगी। 10:30 पर आप सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जानकारी और मनोरंजन से भरपूर जोहार राजी। 11 बजे आपको सुनाएंगे स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रांची के पूर्व प्रसारण कर्मी और वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश देवकलिश से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। आपकी पसंद 11:30 पर। 12 बजे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा आहार में फाइबर का महत्व। भेंटवार्ता में आप सुनेंगे घर बैठे रोजगार के तरीके विषय पर जानकारी। जानकारी में वर्क फ्रॉम होम के लाभ, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की। 12:30 पर एनसीईआरटी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे। दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 1:20 पर आपको सुनवाएंगे अनुरंजनी उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार होंगे सिद्धेश्वरी देवी। 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:15 पर दोपहर समाचार। फौजी भाइयों को समर्पित हमारा दैनिक कार्यक्रम जय भारती आप सुनते हैं 2:30 पर। प्रादेशिक समाचार 2:55 पर। नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप सुनते हैं 3 बजे रांची मेलोडीज 3:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिए संस्कृत और हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आगे जीत है। वेट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुजीत प्रसाद और वेट करता है संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, आजकल देखा जा रहा है कि लोगों के मन में डर या भय घुसा रहता है। लोग डर जाते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं। बहुत लोगों को ये डर होता है कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों को एकांत में रहने का डर समा जाता है। बहुत लोग खुले आसमान के नीचे रहने से भय खाते हैं, डर लगता है। बहुत लोग भीड़ में जाने से डरते हैं और बहुत लोग बंद कमरे से डरते हैं। बहुत लोग डरते हैं कि कहीं हमसे अपनों का जुदा नहीं हो जाए, अपनों को खोने का डर। ये डर युवाओं को, विद्यार्थियों को, एग्ज़ाम का डर, इस तरह की डर बहुत है। आखिर डर हमें क्यों सताता है? और कहा भी जाता है कि जो डर गया सो मर गया। क्या डर हमें अच्छे कार्य करने की ओर प्रेरित करता है, या कहीं ना कहीं डर हमारे व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाता है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब, स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
1: डॉक्टर साहब, डर या भय क्या है?
2: जैसा सर आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ऊंचाई का डर, बंद कमरे का डर, खो जाने का डर, ये सारे हमारे मनोरोग में डायग्नोसिस है, ये सब बीमारियां हैं। तो बोलचाल की भाषा में डर या भय, हम लोग उसे स्पेसिफिकली एंग्जाइटी बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आदमी को एक इनहेरेंट वो भय लगता है, मतलब वरी ज़्यादा करता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, ये होगा तो क्या होगा। अगर उसको आप बोलचाल की भाषा में बोले तो वरी, ज़्यादा चिंता करना, वो ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, वरी करने लगते हैं, जो उनके शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में वो प्रदर्शित होती है, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि ये भय इसको हो रहा है या इसे डर हो रहा है।
1: मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसका भय हमें सताता रहता है। तो जब हम भयभीत हो जाते हैं तो हमारी कदम ठिठक जाती है, हम रुक जाते हैं, सफलता हमें नहीं मिल पाती है। तो डरना जायज़ है या फिर जो डर गया सो मर गया?
2: सर, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो ये जो डर गया सो मर गया से ज़्यादा अच्छा मैं मानता हूँ कि डर के आगे जीत है।
1: जी, डर के आगे जीत है, जो डर गया सो जीत गया।
2: तो डर के आगे जीत है, तो जीत सबको मिल सकती है। डर या भय सर, दोनों उसके पहलू है। स्लाइट लेवल ऑफ भय जो है, थोड़ा लेवल ऑफ एंग्जाइटी किसी चीज़ के लिए, वो अच्छा होता है बहुत बार। अगर आपको एंग्जाइटी ही ना हो तो आप बहुत बार परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा लेवल ऑफ एंग्जाइटी अगर आपको है, जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं पैदा कर रहा है, मतलब आप उसको कंट्रोल करके परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, तो वो अच्छी है आपके लिए, यू एक्सेल इन योर वर्क। लेकिन अगर वही चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरवेलमिंग वरी, बहुत ज़्यादा अगर वरी आप कर रहे हैं, तो वो आपके परफॉर्मेंस को ज़रूर उसको कम करता है, और लोग इसके कारण बहुत बार असफल भी होते हैं,
1: और मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है।
2: जी, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये सारे एक बीमारियों के लक्षण हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कमरे में, बंद कमरे में कोई नहीं रहना चाहता, कि बंद कमरे में रहता है तो उसे बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ, धड़कन तेज, उसे लगता है कि नहीं निकल जाए, उसे लगता है कि हम कैसे निकल पाएंगे, ये हो गया। या बहुत लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई में जाते ही नहीं कि नहीं ऊंचाई में जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, उन्हें भय ये लगता है कि गिर जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो गिर जाएंगे, बट उनका ये जो इरेशनल फियर है, अगर जो रैशनल नहीं है, रैशनल मतलब जो इसका लॉजिक है, इरेशनल, उनको ये बन गया है कि नहीं ऐसा होने से ये हो सकता है, तो अगर इरेशनल फियर है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है, और आपको मेरे हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलना चाहिए।
1: जी, कोई बच्चे, कोई युवा साथी, कोई विद्यार्थी जब इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसे डर लगता है, हमारा इंटरव्यू बढ़िया होगा नहीं होगा, सफलता हमें मिलेगी या फिर हम असफलता को प्राप्त कर पाएंगे, तो इस डर के कारण वो मेहनत करता है। एग्ज़ाम का डर, हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, एक डर मन में सताता है, तो डर के कारण हम पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो डर कहीं ना कहीं स्वाभाविक प्रक्रिया भी है।
2: जी, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। वही मैंने बताया सर कि अगर थोड़ा लेवल ऑफ डर है, जो आपके मतलब फंक्शनिंग को इम्पेयर नहीं कर रहा है, तो वो अच्छा है, उसके कारण आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। लेकिन यही बहुत ज़्यादा अगर डर बढ़ जाती है तो वो फिर आपके लिए नुकसानदायक है, और वो उसके कारण आपको असफलता होती है।
1: जी, अपनों को खोने का डर, अपने प्रियजनों को खोने का डर, ये डर हमें कहीं ना कहीं सिखाता है, एक अच्छे राह की ओर ले जाता है, गलत काम से करने से हमें रोकता है ये डर, कि यदि ये काम हम कर जाते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर इसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, इस डर, जो अच्छी डर है जैसा आपने कहा, और डर के आगे जीत है, तो हम कोई

0: काम करने चाहते हैं, कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, गोल को भेदना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, या कोई कार्य काम शुभारंभ करना चाहते हैं, तो डर आ रहा है, इस डर को अपने मन से कैसे बाहर निकालें?
1: उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके आगे अपने आप को हार नहीं मानना है। पहली चीज़ ये समझनी है कि ये नॉर्मल है, ये सभी लोगों के साथ होता है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझे नहीं भय होता है, तो वो झूठ बोल रहा है। वो उस पर काबू पाना है और ये सोचना है कि हम लोग ने जो मेहनत की है उसके पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे, अगर वो आपने सही रखा है तो जैसा कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, तो उसी तरह अगर वैसा कभी बहुत ज़्यादा लगे तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि मैंने मेहनत की है, जो होगा देखा जाएगा, मैं कर्म अपना कर रहा हूँ, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है आगे। तो ये एक अप्रोच आपको जीवन में सफल बना सकता है। दूसरा है कि आप रेगुलर मेडिटेशन अगर करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम होते हैं बॉडी में, डर के कारण उसी के रिएक्शन होता है, सिंपैथेटिक रिएक्शन, उसको वो चेक और बैलेंस करके रखता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रवेट नहीं करने देता है। तो कुछ कुछ योगाएं हैं, कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इस चीज़ को कम करते हैं और आपकी इवन इच्छा शक्ति या भय का जो समस्या है उसको कम भी करती है और इच्छा शक्ति बढ़ाती है।
0: डॉक्टर साहब, इस डर का हमारे दैनिक दिनचर्या, इस डर का हमारे खान पान पर भी प्रभाव पड़ता है?
1: जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा भय है, आपका हमेशा, उसको हम लोग बोलते हैं सिटिंग ऑन द एज, हमेशा एकदम एक हड़बड़ी में, एक जल्दी में, हमेशा एकदम जल्दी जल्दी में सब कुछ करता है, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो शांत नहीं रहता है। मन शांत नहीं है तो बॉडी का सिस्टम, फिर सारे सिस्टम वैसे फंक्शन भी नहीं करते हैं, और फिर इसके कारण हर चीज़ अफेक्ट होता है, स्लीप और भूख, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि ये कॉमन बायोलॉजिकल फंक्शन है, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है।
0: डर का वातावरण घर में बना हुआ ना रहे, अभिभावक का डर, टीचर का डर, टीचर का डर, अभिभावक का डर, ये डर कहीं ना कहीं आपको अच्छे कार्य करने की ओर प्रेरित करता है।
1: जी, अगर ये चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो
0: जी,
1: जैसे कुछ कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा डरा देते हैं तो वो घातक है
0: जी,
1: लेकिन जैसा मैंने कहा, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ डर जो आप में कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करे, या शुरू में डर से ही सही आप वो स्टार्ट करते हैं, फिर वंस यू स्टार्ट दैट आपको फील होता है कि अरे मैं तो ये कर पा रहा हूँ, तो वो जो छोटी सी जो एक स्टिमुलस है जो डर के कारण, थोड़े लेवल ऑफ भय के कारण मिलता है, वो आपको आगे लेके जाती है। तो वो चीज़ें अगर फैमिली में हो रहा है या टीचर के द्वारा हो रहा है तो दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू, वो आपके लिए मददगारी ही होगा।
0: इसकी भी एक सीमा है
1: जी, मैंने जैसा बोला, बहुत ज़्यादा अगर होगा हर बात पे कि नहीं आपको ये करना ही है, मतलब बच्चे का एक होता है असेसमेंट कि
0: मतलब
1: बच्चा क्या कर सकता है,
0: डरा कर आप काम नहीं
1: हर
0: करा
1: चीज़
0: सकते
1: नहीं करा सकते हैं।
0: जी,
1: तो वो उनका भी कंसेप्ट और उनकी भी जो क्षमता है वो हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि कितना वो कर सकते हैं, ये नहीं कि दूसरे के कंपेरिजन करके कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है तो आप भी करो, ऐसा नहीं।
0: तो डर के आगे जीत है, और यदि आप डरते हैं तो डर पर काबू करने के लिए आपको कुछ मेडिटेशन, कुछ ध्यान, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ना आप शुरू करें, और सुबह प्रातःकाल यदि आप सैर करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक आपके मानसिक चेतना को मजबूत बनाता है।
1: जी, हम लोग चार चीज़ें बोलते हैं सबको कि एक अच्छी नींद, पौष्टिक खाना, मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज, और नशे से दूर। ये चार चीज़ें करें तो आपको ये ओवरऑल डेवलपमेंट करता है और आप में ये जो भय का रहता है उसको भी कम करता है, और जितना हो सके कोई भी समस्या हो, कोई भी भय हो, आप अपने नियर डियर से बात करें, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से बात करें, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है उस चीज़ को कम रखने में, बहुत ज़्यादा आगे उसके जो बढ़ के उसके बाद बीमारी हो सकती है उससे वो प्रिवेंट करेगा आपको।
0: जी, तो मित्रों, यदि कोई आप कार्य करना चाहते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और यदि आपको लगता है कि हमें डर सता रहा है, तो आप डरिए नहीं, और अपने यहाँ कहावत है डर के आगे जीत है, तो जीत आपको अवश्य मिलेगी, बस खुश रहिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। डॉक्टर सुजीत प्रसाद जी, आप इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और मित्रों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
1: थैंक यू सर।
2: डर के आगे जीत है विषय पर अभी आप सुन रहे थे वेट वार्ता। वेट वार्ताकार थे डॉक्टर सुरजीत प्रसाद और वेट करता थे संजीव कुमार लाल। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह की ताजगी, मधुर संगीत और सुनहरे गीतों के साथ प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। कार्यक्रम

ये आप सभी श्रोताओं का स्वागत, विश्वजीत का नमस्कार। गाइड फिल्म के गीत से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, सचिन देव वर्मन का संगीत और इस गाने को लिखा है शैलेंद्र ने।

किशोर कुमार के स्वर में ही सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अंदाज से। गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और रचना हसरत जयपुरी की है।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉग इन करें।
2: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में प्रस्तुत है फिल्म सिलसिला से कार्यक्रम का अगला गीत। शिव हरी का संगीत है और रचना जावेद अख्तर, राजेंद्र कृष्णा और निदा फाजली की है।

आइए अब सुनते हैं फिल्म सौतन का ये मधुर गीत, लता मंगेशकर की सुरीली आवाज, उषा खन्ना का संगीत और सावन कुमार की बोली।

सुबह सुरीली कार्यक्रम के इस खूबसूरत सफर का आखिरी नगमा प्रस्तुत है फिल्म परिचय से। इसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने, गीत है गुलजार के और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

गीतों की मिठास और यादों की खुशबू के साथ आज का सुबह सुरीली कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। विश्वजीत का नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खुला आकाश। आज इस कार्यक्रम में वार्ता का विषय है जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा।
1: बहुत ही सुंदर विषय है जीवन में आध्यात्म की आवश्यकता। आध्यात्म जीवन में आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। आज के इस भौतिक युग में हर व्यक्ति भाग रहा है, किसी को किसी के लिए तो दूर, अपने आप के लिए भी फुर्सत नहीं है, लेकिन भाग भाग कर

पहुंचना कहाँ है, पाना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, किसी को पता नहीं। भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी भाग रहा है, मित्र भाग रहा है, रिश्तेदार भाग रहे हैं, और जो भाग भाग कर एक स्कूटर से तीन बड़ी गाड़ियों के और किराए के मकान से चलकर तीन तीन फ्लैटों के मालिक हो गए, बस उन्हीं को देखकर हम भी भाग रहे हैं। अगर मकान होना, दुकान होना, गाड़ियों का होना, बैंक बैलेंस होना ही जीवन का लक्ष्य होता तो आए दिन हम अखबारों में नहीं पढ़ते कि अमुक व्यवसायी अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आध्यात्म की राह पर चल पड़ा। कहते हैं कि पहले हम अपने शरीर पर ज्यादती करते हैं पैसा कमाने के लिए, फिर जब शरीर बीमार हो जाता है उसी पैसे को खर्च करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, और अंत में न शरीर बचता है और न पैसा। आज रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई है, परिवार टूट रहे हैं, संस्कार गिरता जा रहा है, संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म हो गई है, जो प्यार, मार्गदर्शन, संस्कार, जो दादा दादी, नाना नानी के सानिध्य और कहानियों से मिलता था, नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बच्चे तनाव, अवसाद के शिकार होने लगे हैं, नशा पान करने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या तक कर लेते हैं। इन सब परेशानियों, उलझनों, गिरती मानवता और भाग दौड़ के बीच आध्यात्म ही एक ऐसा संबल है जो हमें उचित मार्गदर्शन देकर मानवता को पतन से बचा सकता है, जिससे हम एक नए भारत ही नहीं बल्कि नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं, जहां मानवता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो। आध्यात्म का मतलब किसी खास रंग के कपड़े धारण करने से नहीं है, आध्यात्म का मतलब किसी पूजा पाठ की पद्धति विशेष से नहीं है, बल्कि आध्यात्म का मतलब हमारी आंतरिक यात्रा है। बाह्य यात्रा हमें संसार में ले जाता है जहाँ उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, भागदौड़ हैं, वही हमारी आंतरिक यात्रा हमें अपने स्व से जोड़ती है, अपने आप से जोड़ती है, जहाँ सुख है, शांति है, आनंद है। आध्यात्म जीवन जीने की कला का नाम है, आध्यात्म जीवन में संतुलन का नाम है, आध्यात्म हमारी सोच को एक सही और सकारात्मक दिशा देता है, बुद्धि देता है, विवेक जागृत करता है, सही समय में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। दुख में सुखपूर्वक जीने की कला का नाम है आध्यात्म, नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक तरीके से जीने की कला का नाम है आध्यात्म। आध्यात्म हमें प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि समाधान पर केंद्रित करना सिखाता है। आज हम समस्याओं पर केंद्रित करने से ही तरह तरह की मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति अकेले गाड़ी खुद चलाकर कहीं जा रहा था। रास्ते में नदी के ऊपर बने पुल पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो व्यक्ति चिंतित हो गया, दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नहीं। उसने गाड़ी को जैक पर खड़ा करके व्हील के चारों बोल्ट को खोलकर जमीन पर रखा, फिर जैसे ही व्हील को गाड़ी से बाहर झटके से खींचा, जमीन पर रखे हुए चारों बोल्ट व्हील के झटके से नदी में गिर गए। बोल्ट के नदी में गिर जाने से वो और चिंतित हो गया। तभी एक गांव का आदमी वहां आया और पूछा, लगता है आप किसी समस्या में हैं, क्या मैं आपकी मदद करूं? वो आदमी गुस्से में बोला, तुम क्या मेरी मदद करोगे? व्हील के चारों बोल्ट नदी में गिर गए हैं, क्या लादोगे? उस आदमी ने कहा, मैं ला तो नहीं सकता पर समाधान बता सकता हूं। बाकी के जो तीनों व्हील ठीक हैं उसमें से एक एक बोल्ट निकालकर इसमें लगा दें और गाड़ी को धीरे धीरे चलाकर ले जाएं, आगे 3 किलोमीटर पर मैकेनिक रहता है, वो ठीक कर देगा। गाड़ी वाला आश्चर्यचकित हो गया उसकी सूझ को सुनकर। फिर गाड़ी वाले ने उस व्यक्ति से पूछा, आखिर इतना सरल और अच्छा समाधान मुझे क्यों नहीं सूझा? उस आदमी ने जवाब दिया, आप परेशानी पर केंद्रित करके तनाव में थे और मैंने समाधान पर केंद्रित किया तो समाधान मिल गया।
हम रामचरितमानस में देखें भगवान राम सबसे पहले उठकर क्या किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातःकाल उठके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवायहि माथा, आय सुपाय करहि पुरकाजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। प्रातःकाल उठकर भगवान राम सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, फिर राज्य का कार्यभार संभालते थे। दशरथ जी उनके इस चरित्र को देखकर मन ही मन हर्षित होते थे। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करहि शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारा, धर्म जाए सिर पातक भारा। मानस बतलाता है कि हमें माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार किए शुभ जानकर करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। अगर हम सोचते हैं कि करना उचित है या नहीं, तो मेरा धर्म भी जाता है और हम महान पाप के भागी भी बनते हैं। आज इन सब बातों का नितांत अभाव हो गया है। आज आधुनिकता के इस दौर में यदि अध्यात्म हमारे जीवन का आधार हो, तो हमारे जीवन में संतुलन होगा और हम बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को भी बहुत ही थोड़े से प्रयास से हासिल कर सकेंगे। मैंने सुना है, दो लकड़हारे लकड़ियाँ काटा करते थे, उनमें से एक दिन भर लगा रहता, दूसरे की अपेक्षा मेहनत भी ज़्यादा करता और लकड़ियाँ भी कम काट पाता, जिससे उसकी कमाई भी कम होती। दूसरा लकड़हारा लकड़ियाँ ज़्यादा काटता, कमाई भी ज़्यादा होती और बीच बीच में आराम भी करता हुआ दिखता। एक दिन पहला लकड़हारा दूसरे के पास गया और पूछा कि राज क्या है, मैं दिन भर लगा रहता हूँ फिर भी तुमसे कम लकड़ियाँ काटता हूँ, जिससे मेरी आमदनी भी कम होती है, जबकि तुम आराम भी करते हो, लकड़ियाँ भी हमसे ज़्यादा काटते हो तो आमदनी भी ज़्यादा होती है, राज क्या है। दूसरे लकड़हारे ने कहा कि जब मैं आराम करता हूँ उस समय अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लिया करता हूँ, इसीलिए मैं कम प्रयास में ज़्यादा लकड़ियाँ काटता हूँ। आध्यात्म उसी कुल्हाड़ी को तेज करने की कला का नाम है, जिससे हम अपनी शक्तियों को सही समय में सही दिशा प्रदान करके कम समय में ज़्यादा उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें। और जैसा मेरा मानना है कि इन सब उपद्रवों की जड़ है मेरा मन। मन के चंगुल में फंसकर व्यक्ति संसार में सांसारिक भोगों के पीछे भागते भागते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन हमारा कैसे स्थिर हो, ये युक्ति हमें जाननी चाहिए। बिना मन के स्थिर हुए न हम आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं और न सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। संत कबीरदास जी की वाणी है, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, करका मन का डार कर मन का फेर। भावार्थ है कि युगों से हम माला फेर रहे हैं फिर भी हमारा मन स्थिर नहीं हुआ, इसलिए मन को स्थिर करने के लिए हाथों की माला को छोड़कर मन की माला को फेरें। प्रश्न यह है कि मन को कैसे स्थिर करें। यही बात जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल है, इसको रोकना वायु के वेग को भी रोकने से भी कठिन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चंचलम, अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। भावार्थ है कि हे अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं कि मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य भाव से मन को रोका जा सकता है। अभ्यास क्या है, किसी युक्ति को जानकर बार बार दोहराना। फिर उन्होंने गीता के 6वें अध्याय के 13वें श्लोक में मन को रोकने की युक्ति बतलाई, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचल स्थिर, संप्रेक्षय नासिका अग्र स्व दिशा च अवलोकयन। यानी खास आसन में बैठकर शरीर गर्दन और सर को सम यानी एक सीध में स्थिर रखकर बिना अन्य दिशाओं को देखते हुए नासिका के अग्रभाग को देखें। इस मन को रोकने की विधि को यदि हम किसी योग्य गुरु से सीखकर प्रतिदिन नियमित अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारा मन स्थिर और शांत होता है और हमारी अंधी दौड़ जो संसार की तरफ चल रही है अंतर की तरफ होने लगती है, जिससे हम शाश्वत सुख शांति को उपलब्ध होते हैं, हमारा तनाव कम होता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।

0: आत्मविश्वास बढ़ता है और हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों स्तर पर स्वस्थ होते हैं।
1: जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता विषय पर अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। खुला आकाश कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, आज 19 मई है और 19 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेयर प्ले डे यानी विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेलों में ईमानदारी, सम्मान, अनुशासन और खेल भावना को बढ़ावा देना। खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं, बल्कि यह हमें एक दूसरे का सम्मान करना, नियमों का पालन करना और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना भी सिखाता है। फेयर प्ले का मतलब है बिना किसी धोखाधड़ी, भेदभाव या गलत तरीके की पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ खेलना, चाहे मैदान क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो या जीवन का। असली खिलाड़ी वही कहलाता है जो नियमों का सम्मान करे और अपने प्रतिद्वंद्वी का भी आदर करे। आज के समय में जब खेल में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, ऐसे में फेयर प्ले की भावना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि जीत से ज्यादा जरूरी है अच्छा व्यवहार और सच्ची खेल भावना। दुनिया के कई महान खिलाड़ियों ने अपने व्यवहार से यह साबित किया है कि खेल का असली सम्मान ट्रॉफी से नहीं बल्कि ईमानदारी और इंसानियत से मिलता है। मैदान में विरोधी खिलाड़ी प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन खेल खत्म होने के बाद वही खिलाड़ी दोस्ती और सम्मान का संदेश भी देते हैं। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस खास करके युवाओं और बच्चों का यह प्रेरणा देता है कि वे खेल को केवल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम समझे। खेल हमें सिखाता है कि हार कर भी मुस्कुराना, जीत कर भी विनम्र रहना और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना। तो आइए इस वर्ल्ड फेयर प्ले डे पर हम सभी यह संकल्प लें कि खेल हो या जीवन, हम हमेशा ईमानदारी, सम्मान और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। यही सच्ची खेल भावना है और यही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिए समाचार प्रभात, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और

0: और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिवी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
9: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की

0: अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद यह छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation.

0: रांची में नए समाचार पत्र का किया लोकार्पण। कहा, मीडिया को जनहित के मूल्यों के साथ करना चाहिए कार्य। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी के पद पर किया गया नियुक्त। आदेश जारी। और रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।
1: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है। और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
0: पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक डॉक्टर प्रदीप पॉल ने कहा कि झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित सभी आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य और निर्बाध बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की आपूर्ति श्रृंखला टर्मिनल, डेपो और रिटेल आउटलेट स्तर पर सुचारू रूप से कार्य कर रही है तथा ईंधन भंडार की लगातार निगरानी की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और राज्य भर में इसकी उपलब्धता सामान्य है। तेल कंपनियों ने लोगों से घबराकर खरीदारी नहीं करने और ईंधन उपलब्धता संबंधी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद रांची की मेयर रोशनी खलको ने आम लोगों से पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करने को कहा है। साथ ही उन्होंने देश हित में अभी सोने की खरीदारी नहीं करने की भी अपील की है।
2: मैं एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि अपने घर में जो हम लोग बचत करेंगे वो अपने लिए होगा। उसी तरह से देश के लिए जो हम बचत करेंगे वो देश के लिए होगा, चाहे वो पेट्रोल के रूप में हो, चाहे वो डीजल के रूप में हो, चाहे वो आप सोना के रूप में हो। आज जो बचत होगी वो हमारे देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है।
0: राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि इस वर्ष खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्री ने किसानों से सही योजना और आधुनिक खेती तकनीक से इस परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने की अपील की।
3: जहाँ भी मई जून में बारिश हो तुरंत खेतों की अच्छी तरीके से जुताई कर ले, मेड़ को मजबूती से बनाए ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे, धान पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहे। वैसे फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है जैसे मूंग, सोयाबीन, मड़ुआ, अन्य फसलों को अपनाएं।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्षेत्र में सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क धंसने और पत्थरों के टूटने की घटनाएं विकास कार्यों की जमीनी सच्चाई की उजागर करती है। उन्होंने साहिबगंज उपायुक्त से मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एक नए समाचार पत्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है और मीडिया समाज की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में

पीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को केंद्र सरकार में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में डीआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 21 मई तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। राजधानी रांची के थरपकना स्थित यूनियन क्लब कराटे सेंटर में शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक दिवसीय विशेष कराटे प्रशिक्षण सह बेल्ट ग्रेडेशन शिविर का आयोजन किया गया। बेल्ट ग्रेडेशन में सफल प्रतिभागियों को बेल्ट प्रदान किया गया, जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि श्वेतांग सेन और विशिष्ट अतिथि राम चटर्जी ने मेडल देकर सम्मानित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड में नियुक्तियों का दौर, देश में पर्चा लीक। प्रभात खबर ने झारखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है 59 केस के रैयतों को 9 करोड़ से ज्यादा मिलेगा मुआवजा। दैनिक जागरण ने खूंटी में किशोर किशोरी की हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने 22 से 26 मई के बीच मॉनसून के केरल पहुंचने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा, झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, ईंधन भंडार की लगातार हो रही निगरानी। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, खरीफ फसल के मौसम में औसत से कम बारिश की है संभावना, किसानों से खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नए समाचार पत्र का किया लोकार्पण, कहा मीडिया को जनहित के मूल्यों के साथ करना चाहिए कार्य। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी के पद पर किया गया नियुक्त, आदेश जारी। और रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और मैं हूँ आपका रेडियो साथी विश्वजीत पात्र।

कार्यक्रम की जानकारी के अंतर्गत आज सुबह 11 बजे सुनिए स्वर यात्रा के 90 वर्ष आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रांची के पूर्व प्रसारण कर्मी और वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश देव कुलिश से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति प्रशांत कौरव की।

0: ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उरांव लोकगीत। कलाकार होंगे गुणांत उरांव और साथी।
1: तेरा

झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति में उड़ाव समाज के लोकगीतों का विशेष महत्व है। ये गीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि परंपरा, प्रकृति और सामुदायिक जीवन की पहचान भी है। उड़ाव लोकगीत में प्रकृति, खेती किसानी, प्रेम, त्योहार और सामाजिक जीवन की सुंदर झलक देखने को मिलती है। करम, सरहुल और शादी विवाह जैसे अवसरों पर मांदर और नगाड़े की थाप के साथ ये गीत पूरे माहौल को उत्साह और उमंग से भर देते हैं।

उड़ाव गीतों की खास बात है सादगी, मधुर धुन और सामूहिक प्रस्तुति है। गांव के लोग एक साथ नृत्य करते हुए गीत गाते हैं जो आपसी एकता और संस्कृति को मजबूत बनाता है।

0: padanta jo kamo kule der bechna engan ayo sasurata hai dire engan ayo sasurata hai.
1: आज भी झारखंड के गांव में उड़ाव लोकगीत अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। यही लोकगीत झारखंड की सांस्कृतिक विरासत की असली पहचान है और अब लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग इसी मधुर गीत के साथ संपन्न होता है। हमारे आज के कलाकार थे गुणानंद उरांव और साथी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। नमस्कार, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। आज का कार्यक्रम समर्पित है उस कलाकार को जिसके बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपने हुनर से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एक ऐसा अभिनेता जिनकी आंखें बोलती है, जिनकी एक्टिंग दिल में उतर जाती है। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्मदिन। संघर्ष, मेहनत और अभिनय की मिसाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के छोटे गांव बुढ़ाना में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। एक किसान परिवार से आने वाले नवाज ने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि वो बॉलीवुड के सबसे सम्मानित कलाकारों में गिने जाएंगे। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री की पढ़ाई की। कुछ समय तक फैक्ट्री में केमिस्ट की पढ़ाई किया, लेकिन दिल में अभिनय का सपना था और यही सपना उन्हें दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NST तक लेके गया। दिल्ली में कई रातें भी गुजारी, छोटी रातें तक, लेकिन चुनौती

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मुंबई पहुंचने के बाद नवाजुद्दीन को लंबे समय तक सिर्फ छोटे छोटे रोल मिले, कभी वेटर बने, कभी चोर, कभी भीड़ का हिस्सा, लेकिन हर छोटे किरदार में उनकी अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म ब्लैक फ्राइडे और फिर गैंग्स ऑफ बासीपुर ने उनकी किस्मत बदल ली। फैसल खान का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके बाद नवाज सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, अभिनय की यूनिवर्सिटी बन गए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सादगी और किरदार में पूरी तरह ढल जाना। चाहे फिल्म द लंच बॉक्स हो या मेट्रो या फिर सेक्रेट गेम्स, हर जगह नवाज ने साबित किया है कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं बल्कि किरदार को जीना होता है। उनकी आवाज, उनकी आंखें और उनका ठहराव, हर चीज अलग महसूस होती है।
5: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से।

0: फॉर एक्साइटिंग अपडेट।
1: नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन युवाओं के लिए प्रेरणा हैं जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर निकलते हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो देर जरूर लगती है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। आज दुनिया उन्हें इंटरनेशनल कलाकार के रूप में पहचानती है, लेकिन उनकी सादगी आज भी वैसी ही है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि टैलेंट किसी चेहरे या बड़े परिवार का मोहताज नहीं होता।

तो दोस्तों, ये था संघर्ष, मेहनत और शानदार अभिनय की मिसाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्रेरणादायक सफर। उनकी चिदमदन पर हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही वो अपने अभिनय से दिल जीतते रहे। संघर्ष से सितारों तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी बर्थडे स्पेशल रसलंचन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। विश्वजीत का नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज हम शास्त्रीय संगीत में राग तोड़ी में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, पर हमारे गायक कलाकार हैं आज के राणा झा, संगत कर रहे हैं तबला पर कौशिक दास और हारमोनियम पर संचाली नाग।

गायक कलाकार राणा झा से अभी आप सुन रहे थे राग तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध था। संगत कर रहे थे तबला पर कौशिक दास और हारमोनियम पर संशाली नाग। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आज इस कार्यक्रम में परिचर्चा में आप सुनेंगे आईपीएल प्लेऑफ की पहली टीम आरसीबी। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली के बारे में विशेष जानकारी। संकलन प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी की, प्रस्तुति एवं संयोजक प्रभु शरण।

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज सबसे पहले हम बातचीत करेंगे आईपीएल की। प्लेऑफ में आरसीबी पहली टीम बनी है, कोहली ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, इस पे चर्चा होगी। टीवी रेटिंग में इस बार आईपीएल थोड़ी पीछे चल रही है, सपाट पिच और ज़्यादा क्रिकेट होने की वजह से लोकप्रियता घटी है थोड़ी। इसके अलावा कुछ ऐसे कप्तान हैं जो अगले आईपीएल में या नहीं रह पाएंगे, उस पर भी चर्चा होगी। पर्सनालिटी में बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार की कि उन्होंने कैसे अपने आप को इस मुकाम पे लाया, उनका प्रदर्शन कितना अच्छा रहा। खास खास में फीफा वर्ल्ड कप की बात होगी, हाफ टाइम शो का आयोजन होगा और इसके अलावा जापान में क्रिकेट कैसे लोकप्रिय हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे और खेल खबरें तो होंगी ही। तो सबसे पहले बातचीत आईपीएल की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। रविवार को पंजाब को 23 रन से हराकर उसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम के 18 पॉइंट्स हैं। प्लेऑफ मैच 26 मई से होंगे, फाइनल 31 मई को खेला जाना है। इससे पहले लीग मैच में आरसीबी ने पंजाब को 223 रनों का टारगेट दिया था। इसमें विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर के अर्धशतक हैं। कोहली ने आईपीएल इतिहास में 50 से अधिक रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया। अब वे 50 या उससे ज़्यादा रन की 138 साझेदारियों का हिस्सा हो चुके हैं। रोहित शर्मा 107 साझेदारियों के साथ दूसरे नंबर पे हैं। इसके अलावा कोहली ने 9वीं बार आईपीएल में 500 से ज़्यादा रन बनाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डेविड वार्नर और केएल राहुल के साथ साथ ऐसे सीजन हैं। सबसे ज़्यादा 280 आईपीएल मैच खेलने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम हो गया है और इसमें भी उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। बाकी प्ले ऑफ टीमों की अगर चर्चा करें, तीन चार प्ले टीमों की, तो गुजरात के अभी 16 अंक हैं, टेबल में दूसरे स्थान पर है। एक मैच चेन्नई से बचा है, अगर हार गए तो भी बेहतर रन रेट से प्लेऑफ में टीम चली जाएगी। हैदराबाद की बात करें तो 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है हैदराबाद की टीम। दो मैच बाकी हैं, एक जीते तो प्लस में नेट रन रेट से पहुंच जाएंगी टीम पहुंच जाएगी। राजस्थान रॉयल्स के 12 अंक हैं, टेबल में छठे स्थान पर है, दो मैच बाकी है और दोनों मैच जीतने जरूरी हैं। पंजाब 13 अंक हैं, एक मैच बचा है, अगर जीते तो 15 अंक होंगे, किस्मत दूसरों टीमों की हार जीत पर टिके हैं। और चेन्नई के 12 अंक हैं, दो मैच बचे हैं, दोनों मैच जीतने होंगे लेकिन फॉर्म थोड़ा खराब है। तो अब देखना है दोस्तों कि 26 तारीख से जो प्लेऑफ के मैच होंगे उसमें कौन कौन सी टीमें पहुंचती हैं और 31 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। अब हम बात करें आईपीएल की, जिसमें कि टीवी का घाटा हो रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्हें फायदा हो रहा है। टीवी की औसत व्यूअरशिप 26% घटी है लेकिन डिजिटल रीच 15% बढ़ी है। आईपीएल के 19वें सीजन के आंकड़ों ने बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर की चिंता बढ़ा दी है। मैदान पर भले ही रनों की बारिश हो रही है लेकिन टीवी स्क्रीन से दर्शक धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और ये गायब होने का प्रतिशत 26 तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन के पहले फेज में टीवी रेटिंग 18.8 और औसत व्यूअरशिप 26% की भारी गिरावट दर्ज की गई। विज्ञापन के मोर्चे पर भी झटका लगा है, जहां टीवी विज्ञापनों में 31% की कमी आई है। इसके विपरीत डिजिटल ब्रॉडकास्टर जो हैं उनकी एक अलग ही ट्रेंड दिख रही है। इसके अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईपीएल की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है और इसकी कुल रीच 110 करोड़ तक पहुंच गई है। तो टीवी पे विज्ञापनों की भी कमी हो रही है और व्यूअरशिप भी कम हो रहा है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उस पे लोगों की व्यूअरशिप बढ़ी है।
टीवी व्यूअरशिप घटने की बहुत सारी वजह हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक तो पहली बात यह है कि एक तरफा मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, बल्ले और गेंद के बीच जो स्पर्धा है वो खत्म होती दिख रही है। विशेषज्ञों और फैंस का मानना है कि आईपीएल के पीछे अब केवल बल्लेबाजों के लिए बन गई है। मैच में 220 से 260 तक के स्कोर अब बहुत जनरल हो गए, बहुत सामान्य हो गए। जब बल्ले और गेंद के बीच संघर्ष ही जब खत्म हो जाए तो हर गेंद बाउंड्री के पार जाने लगती है और ऐसे में खेल में अनिश्चितता खत्म हो जाती है। इंपैक्ट प्लेयर नियम ने गेंदबाजों की भूमिका को और भी कम कर दिया है, जिससे मैच नीरस और एक तरफा होने लगा है। अब बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं और दोनों टीमों के लिए यहाँ पर दिलचस्पी वाली कोई बात नहीं रह रही। एक बात दर्शकों की थकान से भी जुड़ी है कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद इतने बड़े टूर्नामेंट का बोझ दर्शकों पर डाला गया है। साल भर क्रिकेट की अधिकता भी दर्शकों को उबने के लिए छोड़ रही है। आईपीएल का आयोजन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद हुआ और लगातार क्रिकेट देखने के कारण दर्शकों में वो उत्साह नहीं बचा है जो पहले हुआ करता था। अब आईपीएल में 10 टीमें हो गई और 74 मैच खेले जाते हैं और यह लीग 2 महीने से ज़्यादा चलती है। SA20 मेजर लीग और द 100 जैसी दुनिया भर की तमाम लीग के कारण भी क्रिकेट में कुछ नयापन नहीं रह गया है। इसके अलावा एक बात और है कि जो फैंटेसी गेमिंग पे बैन लगा है उससे क्या हो रहा है कि रियल मनी गेमिंग ऐप हटने से क्रेज कम हुआ है। इन्वेस्टेड दर्शक व्यूअरशिप गिरने की सबसे प्रमुख वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 सरकार द्वारा कुछ रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर बैन लगा देने से उस बड़े दर्शक वर्ग को मैच से दूर कर दिया है जो केवल अपनी टीम और इनाम के लिए ही मैच से जुड़े रहते थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो इस गेमिंग ऐप्स के थ्रू पैसा भी कमा रहे थे। ये ऐप न केवल विज्ञापन दाता के लिए बल्कि दर्शकों को भी अंतिम गेंद तक बांधे रखते थे। अब वह वित्तीय उत्साह खत्म होने से भी टीवी के सामने दर्शकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन सरकार की नीतियों के अंतर्गत ये बातें आती हैं इसलिए इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जो हो सकता है कि अगले सीजन में वो टीमों के कप्तान नहीं रहे। इसकी वजह है खराब प्रदर्शन या कुछ विवाद भी इसकी वजह है। जैसे अक्षर पटेल की बात करें, खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। उन्होंने 9 पारियों में 112.5 शून्य की धीमी स्ट्राइक से 100 रन बनाए और 12 मैचों में केवल 10 विकेट लिए। वे फैसलों के लिए भी कोच पर निर्भर दिखे। अभिषेक पटेल को नज़रअंदाज करना और अनुभवहीन साहिल परख को सीधे उतारने जैसे उनके फैसले भी सवालों के घेरे में रहे। अब देखना है कि अगले आईपीएल में वो टिके रहते हैं कि नहीं। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो 27 करोड़ की भारी फीस मिली उन्हें, पर स्ट्राइक रेट सिर्फ 138 की रही। लगातार 2 सीजन टीम के क्वालिफाई न करने से मालिक का, जो फ्रेंचाइजी के मालिक होते हैं, उनका नाराज होना स्वाभाविक है। 27 करोड़ की भारी कीमत पाने वाले पंत ने 11 मैचों में 138 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 251 रन बनाए हैं और पूरे टूर्नामेंट में महज 9 छक्के लगाए हैं। धीमी स्ट्राइक रेट वाले आर्सेन कुलकर्णी से ओपनिंग कराना और बिना पावर गेम वाले आयुष बदोनी को टॉप ऑर्डर में भेजने जैसे फैसलों ने उनकी रणनीतिक समझ पे सवाल खड़े कर दिए हैं। अजिंक्य रहाणे कोलकाता के कप्तान हैं और KKR ने मजबूरी में रहाणे को कप्तान बनाया था क्योंकि उनके पास कोई और विश्वसनीय विकल्प नहीं था। इसमें हेड कोच और उनके पूर्व साथी अभिषेक नायर का भी बड़ा हाथ था। 37 साल के रहाणे और युवा अंग क्रिस रघुवंशी दोनों ने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की, लेकिन इनकी धीमी गति ने हर मैच में टीम की लय बिगाड़ दी। रघुवंशी ने 139 की स्ट्राइक रेट से 340 रन बनाए जबकि रहाणे ने 133 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 237 रन ही जोड़े। अब बात करते हैं पैट कमिंस की। हैदराबाद के से जुड़े हैं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस इस सीजन शुरुआती 7 मैचों में नहीं खेले। इस दौरान युवा भारतीय ईशान किशन ने कप्तानी करते हुए टीम को 4 मैच जिताए। मतलब साफ है कि फ्रेंचाइजी को ईशान के रूप में कप्तान का एक विकल्प मिल गया।
मौजूदा सीजन में कमिंस के नेतृत्व में टीम ने 5 में से 3 मैच जीते और इन मैचों में कमिंस ने सिर्फ 5 विकेट लिए और औसत 33 से ज़्यादा रहा। ऐसे में ईशान बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं और हो सकता है कि अगले आईपीएल में पैट कमिंस हैदराबाद टीम के कप्तान न रहें। हार्दिक पांड्या की बात करें जो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, टीम ने इस सीजन के शुरुआती 11 मैच में से 3 जीते और सीजन से बाहर होने वाली दूसरी टीम ये बनी। पिछले साल भी टीम मुश्किल से प्लेऑफ में पहुंची थी, ऐसे में संभावना है कि अगले साल हार्दिक से भी टीम का नेतृत्व छीन लिया जाए। वह पिछले 2 मैचों में चोट की वजह से नहीं खेले, जबकि इस दौरान नेट्स में अकेले ट्रेनिंग करते दिखाई भी दिए, प्रदर्शन भी औसत रहा। चर्चा है कि कुछ टीमें हार्दिक को ट्रेड करने की कोशिश भी कर रही हैं। अब बारी है रियान पराग की, जो राजस्थान के कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में टीम ने 4 मैचें जीतकर शुरुआत बहुत शानदार की, लेकिन उसके बाद 7 मैच में से 5 हारे। 2 बार टीम 220 से अधिक रन नहीं बना पाई। रियान 10 मैच में 23 के साधारण औसत से 207 रन ही बना सके। तो दोस्तों, ये तो हुए आईपीएल की बातें और अब हम पर्सनालिटी में बात करने जा रहे हैं भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली की। तो सबसे पहले बात भुवनेश्वर कुमार की। इनके साथ एक बात यह रही कि आरसीबी से खेल रहे भुवनेश्वर ने 21 विकेट लेकर इस आईपीएल में सबसे सफल गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया है। तेज रफ्तार, आक्रामक बयानबाजी से दूर रहते हैं, अनुशासन और धैर्य ने इन्हें सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाया है और ज़रूरत के हिसाब से खेल बदल कर ये घातक साबित हो रहे हैं। आईपीएल 2026 में जब भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मुश्किल वक्त में विकेट की जरूरत पड़ी तो कप्तान रजत पाटीदार की नज़र सबसे पहले एक ही खिलाड़ी पर गई और वो हैं भुवनेश्वर कुमार। उम्र 36 साल, शरीर पहले से जैसा तेज नहीं, लेकिन अनुभव और दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत। मुंबई के खिलाफ रायपुर में आखिरी ओवर में रोमांच खत्म करते हुए मुश्किल से एक दिन हुआ था, पर 4 विकेट लेने और बल्लेबाजी से आखिरी ओवर में अहम रन बनाने वाले भुवी के चेहरे पर न कोई अतिरिक्त उत्साह था और न कोई दिखावा। वो शांति से बैठे थे जैसे यह सब उनके लिए सामान्य बात हो। हाल ही में आर अश्विन ने मजाक में कहा था कि भुवनेश्वर को फिर से भारत की T20 टीम में शामिल होना चाहिए। जब यह बात उनसे पूछी गई तो वो मुस्कराए और बोले कि अश्विन को ही सेलेक्टर बना दो। यही सहजता भुवनेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है और इस सीजन उनके नाम 21 विकेट हैं। वह पर्पल कैप होल्डर भी बन गए हैं। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड भी इस साल उन्होंने ही बनाया। लेकिन भुवनेश्वर के लिए आंकड़ों से ज़्यादा अहम है मानसिक संतुलन। वे कहते हैं कि जिस दिन मुझे भारतीय टीम से बाहर किया गया उसी दिन मैंने उसे स्वीकार कर लिया। 10 साल तक सब कुछ देखा, इसलिए अलग होना आसान था। कभी सिर्फ स्विंग गेंदबाज माने जाने वाले भुवनेश्वर ने अब खुद को T20 के हिसाब से बदल लिया। उनकी नकल बॉल और डेथ ओवर गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए परेशानी बनी हुई है। वे मानते हैं कि T20 क्रिकेट पूरी तरह से बदल चुका है। पहले 200 रन बनते थे तो लगता था मैच खत्म हो गया, अब 200 भी छोटा स्कोर लगता है। बल्लेबाज बदल रहे हैं इसलिए गेंदबाजों को भी बदलना पड़ता है। हालांकि इतने बदलाव के बावजूद भुवनेश्वर खुद को बदला हुआ खिलाड़ी नहीं मानते। उनका कहना है कुछ नया नहीं किया। वह कहते हैं लोग सोचते हैं मैं कुछ अलग कर रहा हूं, लेकिन मैं वही पुरानी चीज़ें कर रहा हूं जो करता रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि विकेट मिल रहे हैं। विकेट से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से गेंद सही जगह पर जाती है। यही भुवनेश्वर की असली कहानी है। तेज रफ्तार नहीं, आक्रामक बयान नहीं है, सिर्फ अनुशासन और धैर्य और लगातार मेहनत करना उनकी पहचान है। शायद यही वजह है कि बढ़ती उम्र में भी वे आईपीएल के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए हैं। और अब बात करते हैं विराट कोहली की। 2026 में विराट कोहली का किंग अवतार फिर से छा गया दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपनी क्लासिक आक्रामक शैली और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से आलोचकों को करारा जवाब दिया। लगातार 2 मैचों में 0 पर लौटने के बाद बुधवार को कोहली ने केकेआर के खिलाफ
नाबाद 105 रनों की पारी खेली और कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। अभी तक टी20 में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ियों में पहला नंबर क्रिस गेल का है, जिन्होंने 22 शतक बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम ने 13, विराट कोहली ने 10, डेविड वार्नर ने 10 और अभिषेक शर्मा ने 9 शतक लगाए हैं। अब कोहली के नाम आईपीएल में 21 प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब दर्ज हो गए हैं। किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा यह संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा है। रोहित शर्मा के नाम भी इतने ही अवार्ड हैं। बुधवार को कोहली ने 409 पारियों में 14,000 रन पूरे किए तो विश्व रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 423 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो दोस्तों, पर्सनालिटी में हमने बातें की आज भुवनेश्वर कुमार की, जिन्होंने अपने धैर्य, अपने प्रदर्शन के बल पर आईपीएल में अपना एक मुकाम हासिल किया है। और उसी तरह से विराट कोहली भी रहे, जिन्होंने आईपीएल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ख़ास ख़ास में आज हम बातें करते हैं फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल प्रेमियों के लिए इस साल का वर्ल्ड कप सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि संगीत के इतिहास का सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहली बार सुपर बॉल की तर्ज पर एक भव्य हाफ टाइम शो का आयोजन किया जा रहा है। 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल के दौरान पॉप क्वीन मैडोना, लैटिन सुपरस्टार शकीरा और के पॉप दिग्गज बीटीएस परफॉर्म करेंगे। 49 साल की कोलंबियाई पॉप सिंगर शकीरा अपना नया आधिकारिक वर्ल्ड कप गाना डाई डाई इटालियन शब्द, जिसका अर्थ होता है चलो चलो, रिलीज कर रही हैं और उनके साथ नाइजेरियाई सिंगर बर्नार बाय भी नजर आएंगे। 67 साल की मैडोना 15वीं एल्बम कन्फेशंस 2 के रिलीज के साथ वर्ल्ड कप के मंच पर अपना जादू बिखेरेंगी। हाल ही में कोचेला में उनके सरप्राइज परफॉर्मेंस ने पहले ही काफी चर्चा बटोरी है। और बीटीएस की बात करें तो अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद वापसी कर रहा दक्षिण कोरियाई बैंड बीटीएस अपने 85 एक दिवसीय वर्ल्ड टूर के बीच इस फाइनल में परफॉर्म करेगा। कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन द्वारा क्यूरेट किए गए इस शो के जरिए फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड के लिए $100 मिलियन करीब 957 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है और यह राशि दुनिया भर के बच्चों की शिक्षा और बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये हाफ टाइम शो 11 मिनट का होगा। वर्ल्ड कप को लेकर वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के बीच वैश्विक संगठन फीफा प्रो ने एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट के दौरान गर्मी का खतरा रहेगा। कुल मैचों में लगभग 25% मुकाबले अत्यधिक गर्मी और उमस के होने के कारण प्रभावित होंगे और जिन मैचों में गर्मी का जोखिम 10% से अधिक है उनमें से एक तिहाई ऐसे स्टेडियम में जहां एसी नहीं है, इनमें मियामी, कंसास सिटी, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी जोर शोर से चल रही है दोस्तों। और अब खास खास में हम बात करने जा रहे हैं जापान में कैसे लोकप्रिय हो रहा है क्रिकेट। बेसबॉल के दीवाने जापान में अब क्रिकेट की आवाज़ भी सुनाई देने लगी है। नागोया शहर से करीब 40 मिनट दूर बने कोरोगे स्पोर्ट्स पार्क में जब बल्लेबाज ने गेंद को जोरदार छक्का लगाकर मैदान के बाहर रेत और झाड़ियों तक पहुंचाया तो दर्शकों की तालियों से स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन साथ ही साथ नियमों की किताब भी पकड़े हुए थे खिलाड़ी, उन्हें खेल समझ नहीं आ रहा था लेकिन रोमांच जरूर महसूस हो रहा था। इसकी वजह क्या है कि सितंबर में होने वाले एशियन गेम से पहले जापान में क्रिकेट को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। पहली बार यहां क्रिकेट के लिए खास मैदान तैयार किया गया है और इसी मैदान पर 2028 टी20 वर्ल्ड कप के ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं। इन मुकाबलों में जापान, वानुआतु, फिजी, समोआ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, कुक आइसलैंड और दक्षिण कोरिया जैसी
टीमें हिस्सा ले रही हैं और भले ही बड़ी क्रिकेट ताकतें इसमें न शामिल हैं, लेकिन जापान के लिए यह टूर्नामेंट किसी बड़े मौके से कम नहीं है। मैदान पर मौजूद 34 साल के स्थानीय युवा आकिमासु मैच देखने पहुंचते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने क्रिकेट का नया नाम पहली बार बच्चों के मशहूर ऑस्ट्रेलियाई कार्टून ब्लूई में सुना था। मैच देखते हुए नियमों की किताब पलट रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे खेल पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखने में काफ़ी मज़ेदार है। यह मैदान जो बनाया गया वह पहले बेसबॉल का था, इसलिए बाउंड्री लाइन के पास अब भी पिचर का छोटा टीला दिखाई देता है। मैदान की पिच तैयार करने की जिम्मेदारी श्रीलंका के अनुभवी क्यूरेटर आसिता विजय सिंगे के पास है, जो पल्ले केल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच भी संभालते हैं। आयोजकों का कहना है कि यहाँ की पिच पाकिस्तान जैसी होगी, जहाँ गेंद उछाल भी लेगी और स्पिन गेंदबाजों को मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों, खास खास में हमने फीफा वर्ल्ड कप की बात की और जापान में क्रिकेट कैसे लोकप्रिय हो रहा है ये भी बात की। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और चलते चलते खेल जगत की कुछ खास खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने बुधवार को जारी आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजों की सूची में 8वें और 9वें स्थान पर रहे, जबकि इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान जो रूट 880 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। जायसवाल के 750 अंक हैं, गिल को एक स्थान का फायदा हुआ है और उनके 730 अंक हैं। हैरी ब्रुक इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जबकि उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का नंबर आता है। भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2026 में

0: अब तक एक भी मैच नहीं खेला है। टीम ने अपनी पिछली सीरीज स्वदेश में नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। एशिया के नंबर एक और विश्व रैंकिंग में छठे नंबर के ट्रैप निशानेबाज जोरावर सिंह संधू को इस वर्ष के आखिर में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की संभावित शॉटगन टीम में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह देश के शीर्ष ट्रैप निशानेबाजों में एक हैं और उन्होंने पिछले वर्ष विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रीय चैंपियनशिप और घरेलू चयन ट्रायल के दौरान जोरावर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप फाइनल्स की तैयारी में व्यस्त होने के बावजूद उनके लिए इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य था। राष्ट्रीय ट्रायल में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण उन्हें एशियाई खेलों के लिए संभावित टीम में जगह नहीं मिली। वह एक महीने पहले तक विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर थे। जोरावर ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। भारतीय वुशू टीम ने 11वें साडा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। महिला खिलाड़ियों के 6 सदस्यीय दल में इन दोनों स्वर्ण पदकों को जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह अस्मिता खेलो इंडिया महिला लीग के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। सीमा सुरक्षा बल की एथलीट शिवानी ने महिला 75 किलोग्राम वर्ग में अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए रूस की प्रतिद्वंदी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अर्पना ने भी 52 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। दोनों ने ब्राजील में आयोजित विश्व वुशू में रजत पदक जीते थे। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, दिग्गज खिलाड़ियों को शिकस्त देने वाली साक्षी चौधरी, जादूमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल ने शुक्रवार को चयन ट्रायल के अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। कड़ी स्पर्धा और वजन वर्गों में फेरबदल के बीच इन मुक्केबाजों ने कोटा हासिल किया। ट्रायल के दौरान कई मुक्केबाजों ने सीमित वजन वर्ग में जगह बनाने के लिए अपना वर्ग बदला। इनके साथ विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता परवीन हुड्डा, सुमित कुंडू, अंकुश और कपिल पोखरिया भी ग्लासगो और जापान जाने वाली टीम में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने फातिमा सना की अगुवाई में इंग्लैंड और वेल्स में अपने अगले महीने होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इस टीम में 5 ऐसी खिलाड़ी हैं जो पहली बार इस वैश्विक टूर्नामेंट में उतरेंगे। ऐमान फातिमा, नतालिया परवेज, रामी शमीम, सायरा जबीन और तस्मिया रुबाब पहली बार महिला T20 विश्व कप खेलने जा रही खिलाड़ियों में शामिल हैं। पाकिस्तान अपना विश्व कप अभियान 14 जून को बर्मिंघम में भारत के खिलाफ मुकाबले से शुरू करेगा। वेलबन सेंथिल कुमार और जोस्ना चिनप्पा की शीर्ष वरीय जोड़ी ने तीसरी HCL राष्ट्रीय युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में अभय सिंह और रतिका सिलान को 11-7, 11-9 से हराया। सेंथिल कुमार ने अभय के साथ मिलकर फाइनल में राहुल बैठा और सूरज कुमार चंद को 11-8, 11-5 से हराकर लगातार तीसरे वर्ष पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। बायर्न म्यूनिख ने हैरी केन की हैट्रिक की मदद से कोलोन को 5-1 से हराकर बुंडेसलीगा 2026 का खिताब अपने नाम किया। टीम ने 122 गोल का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले बुंडेसलीगा में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बायर्न के नाम था। टीम ने 1971-72 में 101 गोल किए थे, जब फ्रांच वेकेन बायर और गेड मोलर जैसे दिग्गज खिलाड़ी क्लब का हिस्सा थे। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए सीजन की चौथी हैट्रिक लगाई। उन्होंने इस सीजन में कुल 36 गोल किए। हालांकि वह रॉबर्ट लेवांडोस्की के 41 गोल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने से 5 गोल पीछे रह गए। बायर्न म्यूनिख की तरफ से इस मैच में टॉम बिशोप और निकोलस जैक्सन ने भी गोल किए। कोलोन पर बड़ी जीत के बाद खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने स्टेडियम में जोरदार जश्न मनाया। इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट, संकलन एवं प्रस्तुति स्वर अमित अखोरी, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन का कार्यक्रम जोहार रांची।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और आज मैं हूं आपके साथ आभा और मेरे साथ है
1: विश्वजीत।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारा जोहार नमस्कार।
1: और आभा जी कैसी हैं आप?
0: मेरी आवाज से तो पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी मतलब खराब है ना।
1: मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन ये खराब हुआ क्यों? ये तो हमें जानकारी चाहिए ना, और हमारे श्रोताओं को भी जरूर देना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि मौसम बदल रहा है। अब बारिश के बाद जैसे ही धूप के बाद कड़ी बारिश होती है और उसके बाद मौसम में बदलाव होता है, तो ऐसे में हम अगर रेडियो में काम कर रहे हैं और तो हमारी आवाज की सुरक्षा भी हमें खुद को ही लेनी है।
0: बिल्कुल, इसलिए ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
1: तो जोहार रांची कार्यक्रम की आप लोग शुरुआत करेंगे
0: एक अच्छे से सुविचार के साथ।
1: हाँ, क्योंकि हर एक शुभ विचार जो कि हमारे अंदर और हमारे जीवन में बहुत प्रभाव लेके आता है। कहते हैं जिनसे मिलकर मन स्थिर हो जाए, जिनकी उपस्थिति में सोच सहज हो और भीतर कोई खिंचाव ना हो, वही सही साथ है। सही संग हो जो सिर्फ हंसी या बातचीत दे, बल्कि वो है जो हमारे भीतर की उथल पुथल को शांत कर दे, जहां दिखावा नहीं, दबाव नहीं और खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे संबंधों में शब्द कम और अनुभूति गहरी होती है।
0: और जब हमारा मन स्थिर रहता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित रहती हैं और जीवन अपनी लय में चलने लगता है। इसीलिए लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके साथ अपने मन की स्थिति से पहचानिए, क्योंकि सही साथ वही है जो आपको अपने भीतर से जोड़ दे।

है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Cena.
1: जुहारा जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और जैसे कि आवा जी, मौसम का मिजाज ना बिल्कुल बदला हुआ है। रांची की अगर बात करें, रांची तो अपने मौसम के लिए और अपनी हरियाली के लिए ही जाना जाता है। और अगर रांची के अब के मौसम की बात करें तो अगले 24 आज से लेकर 24 तारीख तक, यानी कि 24 मई तक आंधी बारिश का जो येलो अलर्ट आया है ना, वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दिया है। क्योंकि मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने का आसार है। और ऐसे में 20 मई को आंधी बारिश का आसार सबसे अधिक नजर आ रहा है। और पलामू और गढ़वा को छोड़कर बाकी हमारे जितने भी झारखंड के जिले हैं, उन सभी जिलों में ये प्रभाव देखने को मिल सकता है।
2: कहने का मतलब ये है कि मौसम में फिर से बदलाव होगा। ऐसे में आप सभी अपना ख्याल रखें, जैसा कि मेरी तबीयत जो है मौसम की वजह से ही खराब हुई है ना।
1: बिल्कुल, झारखंड में अगले कई दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तो ऐसे में आपको मौसम के बदलाव के साथ साथ आपको भी कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। और मौसम के अनुसार ही आपको ढलने

0: जुआ रांची में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और निश्चित रूप से आभा, हर तारीख अपने भीतर अपने अतीत को और कई कहानियों को समेटा हुआ है। और आज का दिन यानी कि 19 में भी विश्व और भारत के इतिहास में कई अहम घटनाओं का साक्षी रहा। यानी कि मैं बात क्या चीज का करने वाला हूँ ये तो आप पता
1: बिल्कुल आप बात कर रहे हैं इतिहास की,
0: इतिहास की तो याद, इतिहास के पन्ने को पलटने का वक्त आ चुका है। तो आज ही के दिन 1743 को फ्रांसीसी खगोल शास्त्री जिया पियरे क्रिस्टिने ने सेंटीग्रेड तापमान पैमाना बनाया था, जो आज भी तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे आज हम सेल्सियस के नाम से जानते हैं। विज्ञान की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने तापमान मापने की तारीख में क्रांति ला दी थी।
1: और 1848 में आज ही के दिन दुनिया का पहला डिपार्टमेंटल स्टोर न्यूयॉर्क में खोला गया था। और बात करें 19 मई 1961 की, तो गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ भारत में संयुक्त मोर्चा आंदोलन तेज हुआ था। और आज ही के दिन 2002 में पूर्वी तिमोर चार सदियों की दास्ता के बाद 21वीं सदी के पहले नए राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
0: आज ही के दिन यानी कि 1934 को फ्रांस प्रसिद्ध भारतीय रस्किन बॉन्ड ने भी इस दुनिया में कदम रखा था, जो अंग्रेजी भाषा के सबसे लोकप्रिय भारतीय लेखकों में से एक हैं और विशेषकर बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ लिखा, जो एक किशोर अंग्रेज लड़के की भारत में जिंदगी पर आधारित था। यह उपन्यास 1957 में प्रकाशित हुआ। 1992 में माफ कीजिएगा, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1999 में पद्मश्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है उन्हें।
1: और आगे जानते हैं। और आज ही के दिन 19 मई 1913 में नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ था, जो भारत के छठे राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनेता के रूप में उनकी पहचान थी। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला। और आपको बता दें, वे अपने कार्यकाल के दौरान भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और विश्वजीत, अगर हम बात कर रहे हैं इतिहास की, तो जन्म के बाद आइए जानते हैं कि किन हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो भारतीय उद्योग जगत के पितामह कहे जाने वाले जमशेद जी नुसेरवानजी टाटा का निधन 19 मई 1904 को जर्मनी के बाड नाउहेम नामक स्थान पर हुआ था। जमशेद जी ने 1868 में टाटा समूह की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली उद्योग समूह बना।
0: और आज के दिन यानी 1989 में हिंदी के महान साहित्यकार, आलोचक और निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। वे हिंदी साहित्य के एक युग स्टार थे, जिन्हें उत्कृष्ट उपन्यास जैसे वाणभट्ट की आत्मकथा और गहन आलोचनात्मक लेखन के लिए जाना जाता है। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषाओं के विद्वान थे। वक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था और सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

0: जोहाराची कार्यक्रम आप सुन रहे थे और हवा बातों ही बातों में और बहुत मधुर गीतों के साथ वक्त तो का पता ही नहीं चलता ना।
1: और हमारे पास आज समय की भी कमी है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: समय की भी कमी है और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो ऐसे में हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं, तो ऐसे में जिंदगी में हमेशा आप उम्मीद की रोशनी जलाए रखिए और अपनों के साथ खुशियां बांटते रहिए। इसी संदेश के साथ
1: जुहार रांची कार्यक्रम से
0: हमें यानी कि विश्वजीत और
1: आभा को दीजिए अनुमति। जुहार, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं और अब आइए सुनते हैं स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रांची के पूर्व प्रसारण कर्मी और वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश देवकुलिश से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति प्रशांत कौरव की है।

स्वर यात्रा के 90 वर्ष आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के इस उत्सव में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपके दोस्त मीनाक्षी। साथियों, 90 वर्षों की यात्रा कोई कम समय नहीं होता। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने कई सुनहले समय के साथ अपनी अनवरत यात्रा की है। समाचार, संगीत, संवाद, साक्षात्कार, ज्ञान विज्ञान के साथ आकाशवाणी की पहुंच करोड़ों घर तक और करोड़ों हृदय तक होती रही है। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस शानदार यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, साक्षात्कारों की श्रृंखला के माध्यम से हम उन लोगों की बातों को, उन लोगों के एहसासों को, उन लोगों के यादों को और भावनाओं को आप तक संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में आकाशवाणी की इस गौरवशाली यात्रा के सहयात्री रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमें आमंत्रित किया है श्री प्रकाश देवकुलश जी को, जिन्होंने आकाशवाणी रांची में अपने पहले कार्यकाल 1989 से 1993 में यहां के हिंदी अनुभाग और नाटक अनुभाग को संभाला। जब दूसरी बार ये आकाशवाणी रांची आए, इनका कार्यकाल था 2009 से 2011 का। इस समय हिंदी और नाटक के अलावा इन्होंने कार्यक्रम प्रमुख की भूमिका भी बहुत बेहतरीन तरीके से की। कुछ अविस्मरणीय से पल हैं जो इनके यादों में संजोए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने आकाशवाणी में महसूस की, कुछ संवेदनाएं हैं जिन्हें याद करते ही अभी भी इनके हृदय में स्पंदन होता है।

0: तो आइए हम इस यात्रा में एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। तो सबसे पहले श्रीप्रकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम स्वर यात्रा के 90 वर्ष में।
1: नमस्कार मीनाक्षी जी, और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। अच्छा लग रहा है कि आज आपने इस खास अवसर पर मुझे आमंत्रित किया है अपने विचार रखने के लिए।
0: सर, जब हम किसी यात्रा पे निकल पड़ते हैं, या चाहे वो हमारी काम की यात्रा हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाती हैं। हमें लगता है कि ये स्वर्णिम समय था जो हमने जिया है। कुछ ऐसे पल आपके जहन में रहे होंगे, कुछ ऐसे कार्यक्रम आपके जहन में हैं जिसकी रूपरेखा अभी तक आपको याद होगी, कुछ परिवर्तन आपने अपने कार्यकाल के दौरान देखे होंगे। तो मैं चाहूंगी हमारे जो सुनने वाले लोग इस समय हमसे जुड़े हैं, थोड़ी चर्चा हम उस कार्यक्रम की रूपरेखा जो उस समय हुआ करती थी और जो परिवर्तन करने की आपने बड़ी बेहद संजीदगी से जो कोशिश की, उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं।
1: अवश्य अवश्य। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस संस्था में मैंने काम किया, जीवन का लगभग 30-32 वर्ष दिया, आज उस संस्था के 90 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर हम बात कर रहे हैं, ये बहुत खुशी का अवसर है।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम किसी ऐसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। एक सिंहावलोकन है जो हमें दिखाता है कि हमारी यात्रा कैसी रही, इसका स्वरूप कैसा रहा। तो मैं सबसे पहले कुछ उन कार्यक्रमों की चर्चा करना चाहूँगा जो आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले तो थे पर अब नहीं है, ताकि हमारे श्रोता उस कार्यकाल से परिचित हो सके।
0: बिल्कुल, अपने आपको जोड़ सकें
1: कि भाई ये भी एक स्वरूप था। मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो अभी आकाशवाणी में कार्यरत हैं, शायद वे भी इन चीज़ों को न जानते हों कि कुछ बड़ी अच्छी और विशिष्ट परम्परा आकाशवाणी की थी। मैं उसमें से 2-3 की चर्चा करता हूँ।
0: जरूर सर।
1: सबसे पहले तो चूंकि मैं साहित्यिक कार्यक्रम से जुड़ा था तो उसकी चर्चा करता हूँ एक कार्यक्रम का। देखिए, अभी एक कार्यक्रम यहाँ होता है शतदल नाम से, जो कि शायद साप्ताहिक है, हाँ, तो वो तो रांची केंद्र से होता है, लेकिन उस समय शतदल नाम से ही एक हिंदी साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम होता था, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना, रांची, भागलपुर, दरभंगा, चारों केंद्रों से होता था। महीने में एक रविवार को एक केंद्र करते थे और इसका प्रसारण चारों केंद्रों से एक साथ होता था। तो ये एक बड़ा ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम था, और चूंकि ये साहित्य का कार्यक्रम था तो मुझे याद है कि जो अपने क्षेत्र के जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो इस कार्यक्रम में आने के लिए लालायित रहते थे। और जब उनका पार्टिसिपेशन, जब उनका इसमें मौका मिलता था प्रतिभागी के रूप में आने का, तो बहुत ही उनकी खुशी दिखाई पड़ती थी।
0: बिल्कुल, वो रोमांच नजर आता था।
1: और इतना ही नहीं, उस समय जो मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो भी इतना सक्रिय थी, वो मीडिया भी, और वो भी हमारे साथ इस तरह से जुड़ी रही वो, कि हर हफ्ते के उस कार्यक्रम का रिव्यू भी अखबार में आता था। तो इस तरह से वो एक बड़ा ही जीवंत कार्यक्रम था। और मुझे याद है कि यहाँ से जब मैं रांची में बनाता था, फिर उस समय तो ये अभी तक डिजिटल व्यवस्था तो थी नहीं, टेप में रिकॉर्डिंग होती थी और चारों केंद्रों को वो टेप हम भेजते थे। उसमें कभी यदि देर हो गई, जल्दी पहुंचना है, उसके लिए क्या भागदौड़ मची रहती थी। तो ये एक चीज थी,
0: इसमें भी बहुत सुकून मिलता होगा इस तरह के काम में भी, टेप समय पर नहीं पहुंच, तो प्रसारण कैसे, भाई बहुत सारी चीजें।
1: मतलब मुझे तो याद है कि एक आध बार ऐसा हुआ है कि कार्यक्रम बनने में विलंब हो गया और अब क्या करें, तो मैं अपने हाथ से लेकर मैं बस स्टैंड जाता था और वहां पर जो है व्यक्तिगत संपर्क से देता था और फिर भागलपुर में बता देता था कि भाई तुम कलेक्ट कर लो। मतलब ये भी कई कई स्थिति आ जाती,
0: और ये दर्शाता है कि मतलब एक जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते थे या प्रोग्राम से जुड़े लोग होते थे, उनको कितनी चाहत होती थी कि किसी भी तरीके से मेरा कार्यक्रम वहां तक पहुंच जाए जहां से उसका प्रसारण होना है।
1: तो वो कार्यक्रम जो एक्चुअली जब बंद हुआ तो बहुत थोड़ी सी निराशा हुई थी पूरे मतलब पटना से जुड़े और दरभंगा से जुड़े जो साहित्यकार थे, उन लोगों को थोड़ी निराशा हुई थी। एक दूसरे कार्यक्रम की मैं चर्चा करता हूँ, वो पूरे आकाशवाणी से जुड़ा है, पूरे अपनी हमारी जो संस्थागत जो का जो स्वरूप है। हम लोग हर केंद्र, हर वर्ष 4 विशेष कार्यक्रम आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष करते थे,
0: खुले मंच पर
1: या किसी बड़े हॉल में, और सभी श्रोताओं को आमंत्रित करते थे। वो 4 कार्यक्रम कौन कौन होते थे? एक शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, देश के जो मूर्धन्य संगीतकार हैं वो एक या

0: वो आते थे और दो घंटे का कार्यक्रम होता था, मुझे याद है उसमें विजी जोग आए हैं, उसमें राजन मिश्र, साजन मिश्र आए हैं, ऐसे कई कलाकार उसमें आए हैं। तो एक तो शास्त्रीय संगीत का हो गया, फिर एक दूसरा काव्य सम्मेलन होता था, और एक सुगम संगीत का कार्यक्रम होता था, और एक लोक गीतों का कार्यक्रम होता था,
1: गीतों गजलों का और फिर लोक संगीत।
0: अभी जो अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने बिल्कुल उसमें समझिए कि यंग थे जब हम लोगों ने देखा है उनको आते हुए, तो वो ये चार कार्यक्रम लगभग हर केंद्र अपने अपने शहर में करता था।
1: बिल्कुल,
0: ये एक ऐसी विशिष्ट परंपरा थी कि लोगों को इसका इंतजार रहता था, भाई इतने बड़े बड़े कलाकार को सुनने का मौका, उन्हें एकदम सम्मान के साथ मंत्रित किया जा
1: और
0: रहा है,
1: सामने देखने का,
0: सामने देखने का मौका,
1: सामने देखने का मौका।
0: तो वो परंपरा पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू हो गई, मतलब वो हमारी जो संस्था है आकाशवाणी, वो तो एक्चुअली संस्कृति
1: को बढ़ावा देने,
0: बस इसको बचाने के लिए। और संस्कृति का की जो भूमिका जीवन में है, देखिए एक बड़े चिंतक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भी 1.5-2 साल पहले वो दिवंगत हो गए, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, वो एक समाजवादी और गांधीवादी चिंतक हैं। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि मनुष्यों में हिंसा को त्यागने की कोई अलग से प्रवृत्ति नहीं बनी हुई है, वो संस्कृति की भूमिका है कि वो ये काम करती है।
1: बिल्कुल, और हिंसा से उन्हें दूर रखती है।
0: तो वो संस्कृति जो है वो तुरंत में कुछ उसका रूप नहीं दिखाई पड़ता, पर वो हमारी चेतना में आती
1: है और गहरा असर
0: पड़ता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो एक वातावरण हम आकाशवाणी केंद्र से पूरे शहर में देते थे, उसका चूकना अभी खलता है, मतलब ये होना चाहिए ना कि अभी भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये एक चीज थी जो नहीं होती थी।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है शिवराज सर, ये तो श्रोता हमारी बातें तो सुन लेते हैं अपने रेडियो के माध्यम से, लेकिन ये श्रोताओं से भी रूबरू होने का और आमने सामने बातें करने का, मिलने का एक अच्छा मौका होता
0: होगा। अच्छा मौका था बहुत, और हमें याद है कि मतलब उसकी वजह से हम लोगों की भी शहर में एक प्रतिष्ठा रहती थी, लोगों को लगता था भाई
1: आकाशवाणी
0: आमंत्रित करेंगे सुनने का मौका।
1: मुझे लगता है कलाकार के लिए बहुत गौरव की बात होती होगी कि आकाशवाणी के किसी संस्था ने उसे आमंत्रित किया है, आकाशवाणी जैसी संस्था ने, ये बहुत बड़ी बात होगी।
0: और कभी कभी हम लोग इसमें क्या करते थे कि चारों केंद्रों को मिलाकर भी बुकिंग होती थी, उसको चेन बुकिंग कहते थे, माने वही कलाकार हैं,
1: हाँ,
0: वो पटना में आए, फिर
1: हैं।
0: दो दिन के बाद भागलपुर आए, फिर हाँ, दो दिन के बाद रांची आए, तो ये होता था। तो ये एक बड़ी अच्छी परंपरा थी, क्योंकि मैं इसे बहुत मिस भी करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी चर्चा हम लोग करें।
1: नहीं, और एक अच्छी बात आपने कही कि संस्कृति हमारी चेतना में प्रवेश करती है, संस्कृति हमें जड़ों से जोड़ने का काम करती है, तो जब तक हम संस्कृति से जुड़े रहेंगे, हमारा जो मानवीय स्वरूप है वो मुझे लगता है और प्रगाढ़ होता रहेगा और सशक्त होता रहेगा।
0: देखिए हमारे एक मित्र हैं, साहित्यकार मित्र, वो ये कहते हैं कि आप साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको वर्तमान सामाजिक परिवेश में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन 20 वर्ष के बाद जो पीढ़ी आएगी वो संवेदनाहीन और हिंसक पीढ़ी होगी।
1: बिल्कुल, उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन नजर आएगा।
0: तो इतनी बड़ी भूमिका इसकी है
1: जी। तो श्री प्रकाश सर, कई सुनहले दौर होते हैं हर संस्था के। जब आपने यहाँ पर काम किया, आपने बताया कि जो इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे, लोगों को जोड़ते थे, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के उद्घोषकों को, सबको जोड़ के रखने का काम करते थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ तो चुनौती आपने लगी होगी उस समय, कि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं आकाशवाणी के संस्था के साथ जुड़ी, जिन्हें दूर कर दिया जाए तो आकाशवाणी की पहुंच और इसका जो प्रसारण और बहुत विस्तृत हो जाएगा।
0: देखिए, आकाशवाणी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो पहली थी जिस पर हम लोगों ने चर्चा की
1: जी,
0: कि सांस्कृतिक परिवेश को बचाना। दूसरी चुनौती थी वो तबका जिसके पास की सुविधाएं नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान की बातें जिस तक नहीं पहुंच रही हैं, उन्हें हम कैसे जागरूक करें। तो आपको अभी भी वो कार्यक्रम होते हैं, माने ग्रामीण कार्यक्रम हो रहे हैं और ये कार्यक्रम, और शायद आप लोग जानते ही होंगे कि आकाशवाणी का जो रीच है, मेरे ख्याल से 95% या 96% रीच हो चुका है आकाशवाणी का। तो पूरा जो ग्रामीण परिवेश है, मुझे याद है कि हम लोग कई बार जो ट्रेनिंग में जाते थे और वहाँ पूरे देश के कार्यक्रम अधिशासी और अन्य अधिकारी जमा होते थे तो वे बताते थे कि आकाशवाणी के द्वारा दी गई सूचनाओं से कई किसानों ने अपने खेती में परिवर्तन और उन्नति लाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये असर तो दिखता है हमें अभी भी ग्रामीण इलाकों में, तो ये पूरा का पूरा असर दिखता है क्योंकि जो भी हमारे विशेषज्ञ आते हैं चाहे वो कृषि के क्षेत्र के हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों, उनकी बातों का सीधा असर हमारे

0: ग्रामीण परिवेश में तो पड़ता है श्रीप्रकाश सर। एक और बात है, हम निष्पक्षता की बात करते हैं, विश्वसनीयता की बात करते हैं, और मुझे लगता है, मैं अभी कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम उस संस्थान से जुड़ने का हमें मौका मिला है जो बहुत ही विश्वसनीय है। कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसी बड़ी खबरें इधर उधर से आ जाती थी, लेकिन लोग जल्दी से अपना रेडियो ऑन करते थे कि नहीं, ये खबर जब तक आकाशवाणी से नहीं आएगी तब तक हम इसे पुष्ट खबर नहीं मानेंगे। तो वो विश्वसनीयता और वो निष्पक्षता, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए, इसमें तो सबसे जो बड़ी रेखांकित करने वाली बात है कि अभी हम एक मीडिया विस्फोट के जमाने में पहुंच गए हैं। ढेरों विजुअल चैनल्स हैं, ढेरों ऑडियो चैनल्स हैं, लेकिन जो आपने कहा कि लोगों को एक सुकून मिलता था और पूरा भरोसा होता था जब वो आकाशवाणी से सुनते थे, मैं अभी भी कहता हूं, अभी भी, हालांकि लोगों को सुनने में वो कमी हो गई है आकाशवाणी के समाचारों को सुनने की, लेकिन अभी भी जब आप एक बार 10 मिनट का न्यूज बुलेटिन सुनेंगे
0: तो सारी चीजें आपके सामने
1: आएंगे और आपको लगेगा कि समाचार मैं सुन रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं कोई झगड़ा और बहस नहीं सुन रहा हूँ, मैं किसी के द्वारा बनाए गए प्रेजुडिस ओपिनियन को नहीं सुन रहा हूँ, मैं समाचार सुन रहा हूँ। इस गरिमा को आकाशवाणी ने अभी तक बचा कर रखा है।
0: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी समाज के प्रति बहुत बड़ी जवाबदेही है जो आकाशवाणी बड़ी शिद्दत के साथ निभा रहा है।
1: देखिए, मैं एक मिनट जोड़ूं, जब आप समाचार कह रहे हैं तो वो एक सूचना है, उसमें एक सूचना की शालीनता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: उसमें वो उन्माद और अतिरेक नहीं होना चाहिए,
0: हर चीज ब्रेकिंग न्यूज के रूप में
1: नहीं आनी चाहिए कि वो आदमी जो है उसको समाचार ना लेके या तो कुछ घबराहट की बात सुन रहा है या वो कुछ क्रोध की बात सुन रहा है या यदि आनंद की बात भी सुन रहा है तो उसमें इतना अतिरेक है कि वो भी कोई रचनात्मक कुछ क्रिएट नहीं कर पाता है।
0: और कई बार ऐसा होता है जो उस पैनल डिस्कशन में लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बहुत गंभीरता से अपनी बातों को करना चाहते हैं, बस वो जो, लेकिन जो हल्ला बोल होता है उसमें वो गंभीर बातें भी कहीं ना कहीं दब जाती हैं, हम तक नहीं आ पाते।
1: उस बीच अभी भी आप आकाशवाणी का जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक वगैरह होता है या कोई एक, अभी पता नहीं वो परंपरा है कि नहीं, पहले एक घंटे का वार्ताओं का एक विशेष कार्यक्रम होता था
0: भारतीय कार्यक्रम
1: जिसमें एक वार्ताकार एक घंटा बोलते थे, वो अभी नहीं हो रहा है शायद, लेकिन तब होता था। मुझे याद है कि वो केदारनाथ सिंह जो पोएट है, वो सोना चक्रवर्ती जो स्पीकर थे, वो उन लोगों का कार्यक्रम उन लोगों का हुआ था। तो उसको सुनते हुए या आपको समझ में आएगा कि वास्तव में मीडिया से चीजें कैसे प्रसारित की जाती हैं और कैसे वो रिसीव होती
0: है के साथ और कितनी गरिमा के साथ।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: श्री प्रकाश सर, इसी कड़ी में मुझे एक और सवाल आता है कि कई बार, जैसे अभी हमने कोविड को झेला कुछ वर्षों पहले, 2-3 वर्षों पहले, तो कई बार जब ये प्राकृतिक आपदा की बात आती है उस समय मुझे लगता है कि आकाशवाणी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये इस स्थिति में, ऐसे समय में आप आकाशवाणी को किस रूप में देखते हैं और इसकी भूमिका को किस रूप में देखते हैं?
1: देखिए, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति आती है तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है सही सूचना।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मुझे याद है कि पटना में एक बार बाढ़ आया था, ये शायद 1970 के आसपास की बात, जबकि आकाशवाणी का स्टूडियो डूब गया था, आप लोगों को नहीं पता होगा
0: जी।
1: और रेणु जी ने, फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी रचनाओं में उसकी चर्चा की है। तो उस समय सारा मतलब शहर पैनिक में था और अफवाहें उड़ने लगती हैं ऐसे समय में। तो उस समय आकाशवाणी नियमित जो बुलेटिन होते हैं उनके अतिरिक्त अलग से 15-15 मिनट पर, और कई बार ऐसा मौका आया है कि 24 घंटे हम लोगों ने वो काम किया है, रात रात भर ड्यूटी,
0: ताकि लोगों में जो अफवाहें हैं वो लोगों सही सूचना मिले।
1: ये मैं जब आकाशवाणी कोलकाता में था तो उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, आकाशवाणी कोलकाता से अधिकारी लोग गए थे पूरा वहां स्टूडियो को मैनेज कर लेने के लिए, कैसे सूचनाओं को रखा जाए,
0: मतलब वो प्रसारण कहीं बाधित ना हो और लोगों तक सूचनाएं, सटीक सूचनाएं पहुंचे और समय पर पहुंचे। ये बहुत बड़ी जवाबदेही निभा रहा आकाशवाणी। श्री प्रकाश सर, एक और बात है, कई बार जब आप किसी संस्थान में, जैसा आपने बताया आप 30-32 वर्षों तक रहे हैं, बहुत ऐसे अविस्मरणीय से पल हो जाते हैं जो गाहे बगाहे हमें याद आ जाते हैं कि अरे वो घटना हुई थी, हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में ये बातें बैठ जाती हैं। कुछ ऐसा किस्सा बताइए हमारे श्रोताओं को जो आपको आज भी बहुत आनंद देता है या आप याद करते हैं तो अपने आप में मुस्कुरा लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे मुख्य बात तो ये है कि मैं चूंकि सब दिन साहित्य या नाटक रूपक जैसे कार्यक्रमों से जुड़ा रहा, जिसका स्वभाव थोड़ा गंभीर है
0: जी।
1: तो जो भी बातें जीवन में आई वो गंभीर और हाँ गंभीरता लिए हुए, संवेदना लिए हुए। अब जैसे आपने कहा कि कुछ याद याद मुझे ये है कि जब मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में पहली बार रांची में ही ज्वाइन किया था, उसके पहले मैं ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव था और भागलपुर से मैं ट्रांसफर पर यहाँ आया था। तो कार्यक्रम की पूरी जिम्मेवारी जब मिली तो सबसे पहले ये मन में रहता था कि अधिकतम लोगों को मैं इस कार्यक्रम में शामिल कर सकूं। नए लोग आते थे, कच्ची स्क्रिप्ट लेके आते थे, तो मुझे मैं उसे एक मतलब कर्तव्य की तरह और जो धर्म शब्द का जो सही अर्थ है समझ लीजिए उसकी तरह की एक कार्यक्रम अधिशासी का क्या धर्म है, ये नहीं कि आलेख नहीं नहीं आपका नहीं प्रसारित हो सकेगा,
0: ऐसा सुधारने का काम
1: मैं सुधारता था। मुझे याद है कई बार दो दो तीन तीन बार लोग स्क्रिप्ट सुधार कर
0: लेते प्रसारण के योग्य नहीं रहती होगी स्क्रिप्ट,
1: तो वो है लेकिन मैंने उन्हें मौका दिया है। मुझे ये भी याद है, अभी देखिए हजारीबाग के एक बड़े कथाकार हैं, मुझे याद है जब मेरी मैंने उन्हें बुलाया था और उनकी एक कहानी पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो हमने उनको एक कहानी में कुछ सजेस्ट किया
0: जी।
1: उसमें वो एक महिला धाविका की कहानी थी, तो उसमें हमने कुछ सजेस्ट किया, स्वाभाविकता की इसमें कमी लग रही, वो उनको इतना अपील किया कि मतलब हम लोग की वो बातचीत जीवन भर की मित्रता में बदल गई।
0: हाँ, ये बदलाव आ गया।
1: ये तो मेरा इस तरह का,
0: अगर लोग इसे सकारात्मक तरीके से ले तो एक अच्छा बदलाव आ सकता है। और एक और बात मुझे याद आती है शिवका सर, कि जब हम लोग यहाँ से कार्यक्रम देके स्टूडियो से बाहर निकलते थे तो ड्यूटी रूम में हम इंतजार रहता था कि आज हमारी आखिरी ड्यूटी है तो चेक मिलेगा, ये बात आप बताइए हमारे श्रोताओं।
1: मैं वही कहने जा रहा था कि एक और जो वो सब बातें तो हम लोगों ने कर ली कार्यक्रम की, जो प्रशासकीय जो एक बड़ी बात थी कि थोड़ा सा मैं उसमें दो तीन मिनट समय लेके बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये थी कि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होने, जैसे मान लीजिए 20 तारीख को रिकॉर्डिंग है, तो 19 की शाम में उस कार्यक्रम का चेक बनकर ड्यूटी रूम में पहुंच जाता था प्रीवियस इवनिंग। और हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किए, उसका वार्ताकार को या कलाकार को लेके ड्यूटी रूम गए, वहां पर हमने एक ब्रॉडकास्ट रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट दिया और उनके हाथ में चेक दे दिया। मैंने ये एक ऐसी परंपरा थी, और उसको लेके मैं ये भी बता दूं कि चेक कैसे बनता है। चेक इसलिए बन पाता था कि आपके पास पूरी एडवांस प्लानिंग है, आपने सफिशियंट पहले कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, अप्लाई शीट आपके हाथ में मिल चुका है और वो कार्य एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में चेक बनने जा रहा
0: है, प्रॉपर तरीके से,
1: यानी इतना एडवांस आपको रहना पड़ता था। और यदि आपका चेक नहीं पेमेंट हुआ या यदि और यदि मान लीजिए आप किसी कलाकार को चेक नहीं दे पाए या आपका चेक बना हुआ रहा और कलाकार रिकॉर्डिंग में नहीं आया और वो चेक कैंसिल हुआ, तो उसकी दूसरे दिन प्रोग्राम बैठक में बहस होती थी और कार्यक्रम अधिशासी को जवाब देना पड़ता था। मतलब इतनी चीजें मैनेज्ड थी, ये था, ये एक भी एक बड़ी चीज है।
0: ये तो चेक की बात हो गई, और
1: मैं इसमें एक और बड़ी एक मजेदार बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। चूंकि उस समय इस तरह से तुरंत चेक मिलता था, कभी कभी ऐसा मौका होता था कि जैसे एकदम आकस्मिक रूप से कोई रिकॉर्डिंग तैयारी नहीं, उसके लिए रिकॉर्डिंग आवश्यक है, तो वो चेक बाद में देना रहता था। तो हम लोग जब भी हम लोग मिलते थे किसी भी कार्यक्रमों में सारे अधिशासी लोग सारे, तो वो उसमें ये एक चर्चा जरूर होती थी कि हम लोगों को कभी भी किसी आयोजन में मिल रहे हैं तो लोग ये टोकने वाले मिल जाते थे, देखिए ना मेरा चेक नहीं मिला है। ये हम लोग चाहे वो हम लोग किसी सहभोज में गए हों, चाहे किसी कार्यक्रम में रहे हों, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव को ये खतरा रहता था।
0: मुझे लगता है शिवकार सर उस चेक की राशि का बहुत महत्व नहीं था, लेकिन वो चेक की अपनी
1: चेक बनने चला था। तो असल बात यह है कि हम उस परंपरा को इसलिए भी याद करते हैं कि वो सिर्फ एक घटना नहीं है, उसके पीछे जो एक सिलसिला है, जो ढंग से काम करने का जो स्वरूप था, ऐसा नहीं चेक बन गया, एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को कायम रखना बड़ा आवश्यक है। अब तो शायद मुझे लगता है कि पिक्स भी नहीं जान पाते कि चेक गया कि नहीं गया, क्योंकि उनके पास चेक जाने के बाद तो इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है,
0: क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, डिजिटली हो गई है।
1: ये है, ये है बातें हैं। कुछ बातें मुझे लगता है कि मैं जो कुछ और कार्यक्रम जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था,

0: तो मैं उसका और बता दूं
1: जरूर से।
0: कि जैसे सबसे तो पहली बात यह है कि जब मैं रांची में आया तो यहाँ के जितने प्रतिष्ठित प्रोफेसर साहित्यकार कवि सबको मैंने बड़ी ही प्रतिष्ठा के साथ आमंत्रित किया। पुराने कुछ नाम हैं जैसे डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर नागेश्वर लाल, भारत यायावर बोकारो से आते थे जिन्होंने फणीश्वरार्थ रेणु पर विशेष कार्यक्रम किया। आपको हजारीबाग से आते थे रतन वर्मा कथक, धनबाद से अनवर शमीम आते थे। तो मैंने कोशिश की कि सारे लोगों को लाएं, और मैं ये भी करता था कि खोजता था कि कहाँ कहाँ वार्ताकार। मुझे याद है कि उस समय हंस पत्रिका में, पत्रिका के अंत में जितने भी शामिल होते थे कथाकार या कवि, उनका पता लिखा होता था। तो शंभू बादल बड़े वरिष्ठ कवि हैं, पता नहीं यहाँ इधर रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, लेकिन वो पहले हमारे समय में उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। वो हजारीबाग में रहते थे। मुझे याद है कि हंस से मैंने पता खोज कर तब फिर उनसे मैंने पत्राचार किया और उन्हें यहाँ इस तरह से बुलाया, इस तरह से धनबाद के लोगों को बुलाया। तो ये मैंने किया था।
1: मतलब कोशिश रहती थी आपकी कि अच्छे लोग आए, इस संस्था से जुड़े और अपनी चीजों को लोगों तक, श्रोताओं तक पहुंचाने का काम करें।
0: और एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, एक कार्यक्रम था जो मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया था, केंद्र निदेशक महोदय से डिस्कस किया, उन्होंने अप्रूव किया। एक संभावना कार्यक्रम करके मैंने अलग से जोड़ा था। इसमें क्या था, युवावाणी में तो सिर्फ युवा आ गए,
1: बिल्कुल,
0: और जो सामान्य काव्य गंगा और कहानी का कार्यक्रम उसमें वरिष्ठ साहित्यकार आ रहे हैं। तो जो बीच के किशोर वय के लोग जो अच्छा लिख रहे हैं उनके लिए मैंने एक संभावना दिया। अभी कई बड़े कहानीकार जो हैं वो लोग उस समय संभावना में, आपको पता शायद मालूम हो, नीला प्रसाद बड़ी अच्छी कथाकार है, मेहरुन्निसा अब्दाली बड़ी अच्छी कथाकार हैं, कलावंती जी बड़ी अच्छी पोएट हैं। इन लोगों को मैंने संभावना में बुलाया था और उनको क्या करता था कि 10 मिनट का उनका प्रोग्राम 9 से 10 मिनट में खत्म करके और आखिरी 4-5 मिनट में किसी एक समीक्षा को साथ में बिठाता था, वो उस पर एक टिप्पणी देते थे। तो एक कंपोजिट प्रोग्राम बनता था। तो इस तरह की कुछ चीजें थी।
1: बिल्कुल सर, बहुत शानदार से प्रयास रहे हैं, बड़ी अच्छी कोशिश आपकी रही है और आपकी बातचीत भी बहुत अच्छी रही है। तो चलते चलते, चूंकि अब आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, अपनी दूसरी पारी में आप कवि की भूमिका में, अभी आपकी किताब में देख रही थी असंभव के विरुद्ध, और इसके बाद आप एक मासिक पत्रिका के संयुक्त संपादक हैं, एक अलग सी भूमिका है जहां बहुत व्यस्तता है, बावजूद इसके आकाशवाणी आपको कहां तक खींचता है, आकाशवाणी का एक अंग होने का और इसकी व्यवस्था का एक अंग होने का जो सुकून है, जो सुख है, वो आप कैसे महसूस करते हैं?
0: देखिए
1: कितने गहरे है ये सुकून।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक, जैसा आपने कहा कि मैं कवि भी हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ, तो कविताओं में के अंतिम पृष्ठ पर परिचय रहता है कवि का। तो उसमें जो मेरा पहला परिचय रहता है वो यही है कि प्रसार भारती से सेवानिवृत्त अधिकारी और अब स्वतंत्र लेखक। यानी ये एक ऐसी संस्था है जिसके नाम से आपको गरिमा मिलती है,
1: बिल्कुल,
0: समाज में
1: सम्मान मिलता है,
0: शहर में सड़क पर, माने कई बार तो ऐसी है, उतना समय हम लोगों के पास नहीं है कि सड़क पर की कोई ऐसी घटना हुई है जब उसको मालूम हुआ कि अरे ये आकाशवाणी का अधिकारी है, तो उसका बिल्कुल रिएक्शन ही बदल गया।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो इसलिए ऐसी संस्था से जुड़ के तो गौरव महसूस होता। आज तक हम लोग कहीं जाते हैं, किसी डॉक्टर से मिलना है, किसी और लोगों से मिलना है, एक लाइन यदि आकाशवाणी वाला जोड़ देते हैं तो उसके चेहरे पर अलग परिवर्तन आ जाता है। तो ये है। एक चर्चा मैं थोड़ी सी, एक कार्यक्रम छूट गया है, नाटक रूपक भी मैं देखता था। तो नाटक में भी मुझे याद है कि इस शहर के, चूंकि कुछ कलाकारों को मैं इस बहाने याद कर सकता हूँ, जैसे चंद्रमोहन खन्ना थे, अशोक पागल थे, ये सब बड़े नाटक के कलाकार, और इनको मैंने अपने नाटकों में इनकी भूमिका मैंने करवाई है और उन्हें जो भी मेरे अंदर जो सलाहियत थी वो मैंने इन्हें समझाया। अभी जो उद्घोषक हैं दिनेश, वो भी हमारे नाटक में रहे हैं। मुझे याद है एक, चूँकि खास नाटक है, एक डॉक्टर श्याम सुंदर घोष प्रोफेसर थे, उनकी एक पुस्तक थी नाटक की, काल पुरुष की योजना, पूरे लंबे, मतलब 2.5-3 घंटे का, उनकी बड़ी इच्छा थी कि इसका प्रसारण हो। उस नाटक को मैंने संशोधित करके 28-29 मिनट के रेडियो नाटक में बदला और बनवास का सच करके उस नाटक को मैंने प्रसारित किया। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि राम के वनवास को लेकर जो

0: जो बातें हम जानते हैं उसको उन्होंने एक अलग ढंग से निरूपित किया जी, था जी। तो ये था, तो ये नाटक रूपक भी जो रहा वो भी मेरे लिए बड़ा ही विशेष संभाग रहा और उसको भी मैंने बड़े ढंग से निभाया और कलाकारों का बड़ा ही मुझे उसमें भी उनकी प्रतिक्रिया और उनका सम्मान हमको मिलता रहा।
1: बिल्कुल श्री प्रकाश सर, आपसे बातें करके मुझे लग रहा है कि अपने काम में अगर ईमानदारी हो, अपने काम से प्यार हो, तो चाहे हम सेवानिवृत्त हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन वो जो अपने काम का स्नेह है, काम के प्रति प्यार है, वो लगातार बना रहेगा। और मुझे अच्छा लग रहा है, सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि इतने समय से आप जुड़े रहे आकाशवाणी से, लेकिन आकाशवाणी के प्रति आपका प्यार, आपका लगाव इसी तरह बरकरार है। तो हमारी कोशिश है, हमारी ये कामना है, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि आप यूं ही हमसे जुड़े रहिए, आकाशवाणी से जुड़े रहिए, और आपकी जो कार्य का आपका जो तरीका है उससे हमें बहुत कुछ सिखाते रहिए, और आप स्वस्थ रहें, बहुत प्रसन्न रहें, और बहुत अपने क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ें, ऐसी अनंत अशेष शुभकामनाएं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंत में मैं आपके प्रति, इस आकाशवाणी परिवार के प्रति इस बात के लिए सहृदयता से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे विशेष कार्यक्रम के लिए आपने मुझे प्रतिभागी बनाया और मुझे भी अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी रांची के पूर्व प्रसारण कर्मी और वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश देवकुलिस से सोनाक्षी शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके सबसे पसंदीदा शो आपकी पसंद में। मैं हूं आपकी दोस्त आभा। तो हो जाइए तैयार अपने पसंद के गाने को सुनने के लिए। तो चलिए सबसे पहली फरमाइश के साथ शुरू करते हैं फिल्म दो दिलों की दास्तान से। अनजान का लिखा ये गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं डेहरी ऑन सोन से किरण सिंह, संजय सिंह और अविनाश सिंह।

अगला गाना है फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर के स्वर में, बोल है कौसर मुनीर का, संगीत सुहेल सेन का, और सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बड़ा बॉम्बे सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेन। गांधी चौक रूपर पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक और मीका वीरक।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

हमारी अगली श्रोता है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। और ये सभी लिखते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज़ में आपकी पसंद का कोई सा भी सुपर हिट गीत सुनवा दीजिए। तो चलिए इन लोगों को सुनवाते हैं फिल्म खानदान का ये सुपर हिट सॉन्ग लता मंगेशकर की आवाज़ में। नक्श लयालपुरी की रचना है, संगीत खयाम का।

अगला गीत फिल्म सनम रे से अमाल मलिक और पलक मुच्छल की आवाजों में। गीतकार हैं मनोज यादव, संगीत अमाल मलिक का। और इस गाने को सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर राही श्रीमती सरिता गवहानकर। बाबा बैजनाथ धाम से हैं मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी और श्रद्धानंद केसरी।

इसी के साथ आपकी पसंद में गानों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और श्रोताओं की पसंद के गानों के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार बहनों, आपकी सखी निधि स्वागत करती है आप सबका कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज मेरे साथ हैं सुभाषिनी। कहो सुभाषिनी, कैसी हो?
1: बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और बहनों को मेरा भी नमस्कार। और निधि, आशा करती हूँ हमारी बहनें भी कुशल मंगल होंगी। अभी तो बच्चों की छुट्टियां हैं, इस वजह से बहनों की व्यस्तता तो बढ़ ही गई होगी। बच्चों को अलग अलग क्लासेस में ले जाना, साथ ही छुट्टियां हैं तो उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखना, क्यों?
0: हाँ, बिल्कुल सही बात कही तुमने सुभाषिनी। बच्चे ज़्यादातर चीज़ों के लिए माँ पर ही तो निर्भर करते हैं, है ना? इसलिए हमारी जो बहनें हैं वो काफ़ी व्यस्त तो हो ही गई होंगी और उन्हें वक्त निकालना ही पड़ता है। खासकर अभी छुट्टियां हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि भाई, हम तो हमेशा पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अभी हमें चाहिए सिर्फ मनोरंजन। तो अभी जो हमारी बहनें हैं वो बच्चों के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए खास करके उन्हें वक्त निकालना पड़ता है। और इस बात का ख्याल माँ को ही रखना पड़ता है। तो बहनों, हम अपना काम कर सकें, स्वस्थ रह सकें और अलग अलग जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बच्चों को हम हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सके, उसके लिए हमें भी तो स्वस्थ रहना है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बहुत ही सही कहा तुमने। और जब स्वस्थता की बात आती है ना, कि अगर खास करके माओं की बात आती है, तो आहार जो होता है ना, वो सबसे पहले आहार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और हमें ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए।
0: हाँ, तो आज हम बातें करेंगे कि आहार जो है हमारा, यूं तो हम सभी पोषक तत्व उसमें लेते हैं और काफ़ी लोग सावधान भी रहते हैं इस मामले में, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आहार में जो फाइबर होता है, जिसे हम रेशा बोलते हैं या आमतौर पर रफेज बोलते हैं, तो ये एक आवश्यक पोषक तत्व है जो भोजन में होना ही चाहिए और सही मात्रा में होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात कि ये जो पाचन क्रिया है हमारी, डाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसे बिल्कुल दुरुस्त करता है और साथ ही ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। इसका कारण ये है कि ये मोटापे पे बिल्कुल

0: नियंत्रण लगाता है। तो आहार में रेशेदार चीजें जो हैं यानी फाइबर, उनका होना बहुत जरूरी है,
1: जरूरी हो जाता है। तो आहार में फाइबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है बहनों, क्योंकि ये पचता नहीं है बल्कि हमारी आंतों की सफाई करता है। फाइबर युक्त भोजन से लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है और इससे हम बार बार खाने से बच सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर हम हमें भूख लगती है ना तो हम बार बार खाते हैं और हमारा इससे क्या होता है ना कि वजन भी नियंत्रित रहता है।
0: हाँ, तो बहनों को और अच्छे तरीके से बता दें कि आखिर फाइबर है क्या। ये आमतौर पर तो हम जानते ही हैं, इस शब्द से हम अवगत हैं, लेकिन जो पौधों से हमें जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो भी पौधों से आते हैं, तो उसमें एक ऐसे रेशेदार पदार्थ होते हैं जो खुद नहीं पचते, मतलब उनका पाचन नहीं होता है, लेकिन वो दूसरी चीजें जो हम खा रहे हैं उनको पचाने में मदद करते हैं और वे शरीर में अवशोषित भी नहीं होते, यानी वो एब्जॉर्ब भी नहीं होते, तो वो जिस तरीके से है उसी तरीके से शरीर के भीतर जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन दूसरी चीजों को पचाने में वे मदद करते हैं। तो इस कारण से फाइबर जो है इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है हमारे भोजन में,
1: बिल्कुल,
0: और ये हमारी आंतों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसके लिए, तो उनके स्वास्थ्य का भी ये ख्याल रखता है, तो इसे हमें अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए।
1: और फाइबर युक्त भोजन करने से हम ब्लड शुगर को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और फाइबर एलडीएल यानी कि जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं उन्हें भी कम करता है। ये हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
0: हाँ, क्योंकि देखो डायबिटीज जो है वो बहुत ही आम बीमारी है आजकल। ब्लड शुगर से न जाने कितने ही लोग पीड़ित हैं, तो ब्लड शुगर के जो मरीज हैं, यूं तो सभी को फाइबर लेना चाहिए भोजन में, लेकिन जो शुगर के मरीज हैं, जो मधुमेह के मरीज हैं, उनको खास इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके भोजन में रफेज फाइबर यानी रेशेदार जो चीजें हैं वो जरूर रहें।
1: बिल्कुल। तो बहनों, अब ये जानते हैं कि फाइबर युक्त भोजन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन चीजों से क्या खाएं हम जिनमें कि फाइबर होता है।
0: बिल्कुल, इनके नाम तो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है साबुत अनाज, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, दलिया और जौ, ये सभी फाइबर से भरपूर होते हैं। और फल और सब्जियों की हम बात करें तो बहुत सारे फल हैं, जैसे सेब, नाशपाती और गाजर है, ब्रोकोली, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, तो इन्हें हमें अपने आहार में रोज शामिल करना ही चाहिए।
1: और राजमा हो गया,
0: दालें जो हैं जिनमें बहुत सारी चीजें हैं,
1: चना, मूंग, बादाम हो गए, अलसी, ये सभी फाइबर युक्त भोजन है बहनों, इन्हें अपने आहार में अवश्य शामिल करें।
0: हाँ बिल्कुल, और ये इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आप फल खा रहे हैं तो फल ही खाएं, ज्यादातर लोग उसका जूस पीने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत आसान लगता है, या बच्चों को भी ये पसंद है, तो बच्चों को भी हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पूरा ही फल खाएं, क्योंकि जब हम जूस पीते हैं तो उसका जो रेशा होता है फाइबर वो निकल जाता है, तो वो हमारे शरीर के लिए, हम ये सोचते हैं कि ये तो भाई बेकार की चीजें हैं और इन्हें हटा देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेशा बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, पाचन तंत्र के लिए, और पाचन तंत्र से ही हमारा जो सारा शरीर है ना वो प्रभावित होता है ना, तो ये हमारे जो जनरल हेल्थ जो बोलते हैं, जो आमतौर पे जो स्वास्थ्य है उसका अच्छी तरह से ये ख्याल रख सकता है, तो आहार में इसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अब हमें ध्यान है सुभाषिनी, हमने याद है ना बच्चों की मनोरंजन की बातें हम कर रहे थे शुरुआत में, तो अब हम जो माँ हैं
1: उनके मनोरंजन
0: और जो हमारी बहनें हैं उनके मनोरंजन के लिए हम ये गाना लाए हैं उनके लिए, चलिए सुनते हैं।

0: दस लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और बहनों, इसी के साथ ही हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। और निधि, आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में।
4: हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बहनों हम इस भेंट वार्ता के साथ, और आज का विषय है घर बैठे रोजगार के तरीके। भेंट वार्ताकार हैं राखी माहेश्वरी, जो कि एक समाज सेविका हैं, और इनसे बातें कर रही हैं सुभाषिनी। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: किसी भी समाज की तरक्की तब होती है जब समाज के लोग आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होते हैं। अक्सर कई प्रतिभावान व्यक्ति घर की जिम्मेदारियां, कुछ मजबूरियां, इस तरह के कारणों से, और बहुत सारे छात्र अपनी पढ़ाई की वजह से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में घर बैठे रोजगार उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यह साधन आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी देता है जो चार दीवारी के पीछे हैं। तो कैसे घर बैठे रोजगार हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं घर बैठे रोजगार के, इन्हीं तमाम बातों के विषय में आज हम बातें करेंगे। हमारे साथ हैं राखी माहेश्वरी, जो एक समाज सेविका हैं। आइए उनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। नमस्कार।
6: नमस्कार सभी को।
5: जी राखी जी, हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि घर बैठे रोजगार के तरीके जो हैं आज के समय में, आज के दौर में इतने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, आखिर ऐसा इसमें क्या है?
6: हाँ देखिए, जब कोविड था तो उस समय लोगों ने समझा कि काम के लिए ऑफिस जाना जरूरी नहीं है,

0: घर बैठे रोजगार से समय बचता है, ट्रैवल का खर्चा नहीं होता है और महिलाएं, स्टूडेंट्स, रिटायर्ड लोग सब अपनी सुविधा से काम कर सकते हैं। और इंटरनेट और स्मार्टफोन ने इसे और भी ज़रूरी बना दिया है, मतलब सबके लिए कहें तो दरवाजे खोल दिए हैं। घर बैठे रोजगार इसलिए आजकल सबको समझ में आ गया है कि ये जरूरी है, या कह सकते हैं इसका महत्व बहुत है। महंगाई का दौर है तो अतिरिक्त कमाई भी इससे हो जाती है। महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं तो घरेलू महिलाएं जो होती हैं वो घर बैठे काम संभालती हैं, कमा पा रही हैं। स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा भी खुद ही उठा रहे हैं। और इंटरनेट गांव गांव तक पहुंच गया है तो काम बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं वो बाहर, मतलब विदेशी कंपनियों के लिए भी काम कर रहे हैं। और डिग्री से ज्यादा अब आपके हुनर को, स्किल को समझा जा रहा है, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि समय की बचत हो जाती है। रोज आने जाने का जो किराया है वो बचता है, समय बचता है। लोग अपनी समय मर्जी से समय पर काम कर सकते हैं और परिवार को भी संभालते हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए तो ये बहुत अच्छा कमाई का जरिया है। तो इस तरह से आज के दौर में अगर देखें तो घर बैठे रोजगार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
1: जी, बहुत बढ़िया राखी जी। तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि घर बैठे रोजगार क्या सिर्फ ऑनलाइन ही के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, या घर बैठे रोजगार के तरीके और भी हैं, इसके बारे में जरा हमें बताएं।
0: नहीं, घर बैठे रोजगार के लिए सिर्फ ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। ऑफलाइन माध्यमों से भी घर पर रहकर बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है।
1: जी
0: जैसे कि पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसमें आप मोमबत्ती, अगरबत्ती, राखी, मसाले हो गए, स्टेशनरी की पैकिंग करना, ये सब काम किया जा सकता है। घरेलू उद्योग में घर पर साबुन, मोमबत्ती या लिफाफे बनाकर उसको लोकल मार्केट में बेचना, ये कर सकते हैं। फिर हैंडीक्राफ्ट आर्ट हो गया, जिसमें कि टेलरिंग, बुनाई, कपड़ों कपड़े सिलकर, कढ़ाई कर कर, या फिर जो बुटीक का काम भी होता है ना, वो भी घर बैठे ही आप कर सकते हैं। गिफ्ट और डेकोरेशन का हो गया, जिसमें आप शादी के कार्ड बनाना, त्योहारों के लिए दिए गए जो गिफ्ट होते हैं उस तरह का आइटम बनाना, पैकिंग करना। फूड और कैटरिंग का जो बिजनेस है उसको भी आप खोल सकते हैं कि घर बैठे काम कर सकते हैं, उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि टिफिन सर्विस हो गया, ऑफिस जाने वालों या छात्रों के लिए घर का बना खाना सप्लाई करना, अचार पापड़ जो बनाते हैं, होममेड अचार पापड़ या मसाले तैयार कर जो लोकल मार्केट या इसमें बेचते हैं। होम बेकरी हो गया, जिसमें जन्मदिन और त्योहारों के लिए घर पर केक और पेस्ट्री बनाकर ऑर्डर लिया जा सकता है।
1: जी
0: होम ट्यूशन भी देते हैं, होम ट्यूशन भी चलता है और अपने घर के आसपास के बच्चों को जो पढ़ाते हैं। इसी तरह से डे केयर हो गया, जिसमें कि कामकाजी माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को दिन भर छोड़ के जाते हैं डे केयर में, वहां उनके बच्चों की देखभाल की जाती है।
1: जी
0: ब्यूटी पार्लर, ये भी तो अच्छा काम है। घर के कमरे में छोटा सा पार्लर से आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह के काम होते हैं जो कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन काम को ही आप घर बैठे कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से काम हैं जो ऑफलाइन भी होते हैं, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के काम हम घर बैठे कर सकते हैं और वो उसे कमाई का जरिया बना सकते।
1: जी, यानी कि जो घर बैठे रोजगार के तरीके हैं वो ऑनलाइन भी इसका फायदा उठा सकते हैं और आप ऑफलाइन भी फायदा उठा सकते हैं। बहुत तरह के रोजगार के तरीके हैं जैसे कि आपने बताया। तो राखी जी, चूंकि ये महिलाओं का कार्यक्रम है तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि घर बैठे

0: रोजगार के जो विभिन्न तरीके हैं वो महिलाओं के लिए किस तरह से लाभकारी हो सकते हैं?
1: महिलाओं के लिए ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार सिर्फ पैसा कमाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है।
0: जी
1: इसके महत्व को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि इससे अपनी पहचान मिलती है, एक गृहिणी के बजाय अपनी एक स्वतंत्र पहचान मिलती है।
0: बिल्कुल
1: और जब हुनर के जरिए अपने हुनर के के जरिए कमाती है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी जरूरतों या जो उनकी ख्वाहिशें रहती हैं उसके लिए किसी के आगे आप वो हाथ नहीं फैलाना पड़ता उनको। तो पैसे पास होने से अगर आर्थिक स्थिति उसकी अपनी मजबूत रहती है, पैसे पास होते हैं उसके, तो वो अपना फैसला खुद ले सकती है। और जो बड़े फैसलों में महिला की बात को अहमियत भी मिलती है।
0: बिल्कुल
1: परिवार की देखभाल, बच्चे, बुजुर्ग, रसोई सब संभालना होता है उसको, तो कुछ भी काम करना मुमकिन नहीं होता बाहर जा करके। तो इस तरह से तो एक महिला के लिए घर बैठे रोजगार कमाना बहुत ही अच्छा साधन है। और बाहर जाने आने जाने के समय सुरक्षा की चिंता भी रहती है, कहीं ट्रैवलिंग करना है तो उसका खर्चा है, कब आना है, कब जाना है, इस तरह की झंझट से वो बच जाती है। और पति की नौकरी अगर चली गई है या तुम बीमार हो गए हैं तो समय पर घर बैठे रोजगार पूरे परिवार को टूटने से बचाता है। वो अगर कमाती है तो परिवार बिखरने से बच जाता है।
0: बिल्कुल
1: महिलाएं अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा इस पर खर्च करती हैं। तो कहा जाए तो जब एक पुरुष कमाता है तो एक व्यक्ति कमाता है, और लेकिन जब एक महिला घर बैठ के कमाती है तो पूरा परिवार सशक्त हो जाता है।
0: जी बहुत बढ़िया
1: तो इस तरह से जो घर बैठे कमाई का जरिया है वो महिलाओं के लिए तो बहुत ही खास हो जाता है। उसके लिए एक समझिए तो एक आजादी का एक जरिया है कि वो अपनी जो जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं, जो उनकी उनके जो सपने होते हैं वो उनको पूरा कर सकती है और घर बैठे पैसे कमा सकती है।
0: जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई राखी जी। महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार के तरीके बहुत उनके लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो घर बैठे रोजगार अगर हम शुरू करें या शुरू करना कोई चाह रहा है तो उसे किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या जोखिम हो सकते हैं इस रास्ते में, ये हमें बताएं।
1: घर बैठे रोजगार शुरू करते समय जितनी संभावनाएं आपको दिखती हैं उतनी ही चुनौतियां भी आती हैं। तो सफल होने के लिए इन सावधानियों और परेशानियों को समझना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: जैसे कि काम से पहले पैसे मांगने वाली कंपनियां जो होती है या रजिस्ट्रेशन फीस के जो मांगती है, तो उसके झांसे में आने से बचे, फ्रॉड से बचे। और जो भी दस्तावेज होते हैं उसकी जांच आप जरूर कर ले। किसी भी कंपनी के साथ अगर ऑनलाइन जुड़ रही हैं आप तो उसके पहले उसकी क्या सरकारी मान्यताएं हैं, उसकी रिव्यू क्या है, इन सब की जानकारी जरूर आप इकट्ठा कर ले। अपनी बैंकिंग की जो जानकारी है, आधार हो गया या ओटीपी हो गया, तो इसी किसी अनजान व्यक्ति से साझा ना करें। काम शुरू करने से पहले पेमेंट की जो शर्त है और जो डेडलाइन है, समय जो है, उसको लिखित में तय करें। मुजवानी इससे डील ना करें और क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखें। ऑफलाइन काम जैसे कि जो अचार पापड़ बनाते हैं या पैकिंग का काम जो हो गया इस तरह के, तो तो उसमें आप क्वालिटी और साफ सफाई से बिल्कुल भी समझौता नहीं करें। शुरुआत में आपको

0: बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। कच्चा माल खरीदने या जरूरी मशीन जैसे कि सिलाई मशीन दिया, इसके बजट में दिक्कत आ सकती है, या घर के कामों और बिजनेस के समय के बीच संतुलन बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है शुरू शुरू में। सामान तो बन जाता है, लेकिन ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए और बेचने में तो समय लगता है,
1: जी
0: तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। शुरुआत में हो सकता है कि आपको परिवार का सपोर्ट मिले भी ना मिले भी,
1: बिल्कुल
0: तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। घर में लगातार अकेले काम करने से थकान भी होता है, मानसिक थकान हो जाता है, सोशल लाइफ जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस तरह से थोड़ी जोखिम तो है इसमें, लेकिन आपको ये करना होगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी और हर चीज में सावधानियां बरतनी होगी,
1: जी
0: और जितने भी जो दस्तावेज होते हैं मैंने पहले भी कहा उसको आप बिल्कुल सही रखें, उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से करके ही आप आगे बढ़ें।
1: जी यानी कि जोखिम तो हर काम में होते हैं। तो जैसे कि घर बैठे रोजगार के जो तरीके हैं, अगर आप शुरू करना चाहती हैं बहनों, तो उसमें भी आपको परेशानियां तो आएंगी ही। लेकिन जैसे कि राखी जी ने कहा कि आप धैर्य रखें, हिम्मत बनाए रखें और आने वाली परेशानियों का सामना करें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाभप्रद बातें आपने बताई। और बहनों, आपने जाना राखी जी से कि घर बैठे हम कैसे रोजगार शुरू कर सकते हैं, कौन-कौन से तरीके होते हैं रोजगार से और क्या-क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। राखी जी, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, घर बैठे रोजगार के तरीके। हमारी आज की मेहमान थी राखी माहेश्वरी, जो एक समाज सेविका हैं, और इनसे बातें कर रही थी सुभाषिनी। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: तो कैसा लगा गीत सुभाषिनी?
1: बहुत ही खूबसूरत गीत तुमने सुनवाया निधि। अब और बढ़ते हैं
0: और
1: आगे
0: एक
1: कार्यक्रम
0: छोटी सी जानकारी है जो हमें बहनों को देनी है,
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज बहुत ही ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया है। तो ये है बहनों वर्क फ्रॉम होम के लाभ, कि कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे काम करना आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये एक अच्छा विकल्प बन गया है, जिससे हम नौकरी भी कर सकते हैं और हमें दफ्तर जाने की जो असुविधा है या
1: वो
0: परेशानी
1: भी
0: है
1: नहीं
0: उससे भी
1: होती
0: हम बचे रहते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और वर्क फ्रॉम होम जो होता है वो कर्मचारियों को

0: अनुकूल माहौल में काम करने और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभालने की सुविधा भी देता है। और आने जाने में तो समय लगता ही है, जैसा कि तुमने कहा, साथ ही परिवहन में भी खर्च कम होता है। तो इस तरह से पेट्रोल, डीजल, ईंधन की बचत से देश को विदेशी मुद्रा की बचत भी होती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: अगर हम घर से ही काम करते हैं तो आने जाने से हम बचते हैं, और घर पर ही रहकर काम करते हैं तो हमें जो वाहन है हमारे, कार, स्कूटर वगैरह, उनका इस्तेमाल कम करना पड़ता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और बाकी ईंधन की भी बचत होती है। और घर से काम करके लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जैसे बेहतर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ऑफिस का जो शोर शराबा है या कुछ रुकावटें हैं वो नहीं होती,
0: बिल्कुल
1: और कर्मचारी जो है ज़्यादा एकाग्रता से काम करते हैं, अपने काम पर फोकस भी करते हैं ज़्यादा।
0: बिल्कुल। तो इसी के साथ ही निधि, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। बहनों से इजाजत लेने से पहले बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की और आपकी सखी सुभाषिनी।
1: और निधि को अब दें विदा।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।
3: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज

0: हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है।
0: जी, एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओ, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओ, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
0: जी,
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
0: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओ, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था।

0: धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं। बादल हट गया।
0: जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे,
1: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
6: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
7: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
1: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
0: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे कार की नहीं लगी।
4: अरे
2: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो, अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
3: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली।
0: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
4: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उससे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
6: क्या बात है चंपा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
6: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरमा,
6: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
6: क्या?
4: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
6: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
7: बिल्कुल,
6: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
8: हाँ, हाँ, सब तैयार हैं।
7: किसी भी हाल में जंगल कटने
8: नहीं कटने देंगे।
4: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
9: ये है जंगल के उपकार,
10: मिट्टी पानी और बयान,
9: मिट्टी पानी और बयान,
10: जिंदा रहने के आधार।
1: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
6: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
11: आगे बढ़ो।
7: अरे कहाँ से?
11: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
7: हम से छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
6: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
4: नहीं लगाने देंगे।
6: बहनों, आगे बढ़कर छिपक जाओ पेड़ों से।
10: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,

0: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
2: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
0: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
2: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
2: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार

0: Defense Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defense cooperation between the two countries. The defense minister said in a social media post that cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said, India and Vietnam share a strong bond rooted in mutual trust, shared values, and close cooperation in defense, security, and regional stability. Mr. Singh also held a bilateral meeting with his Vietnamese counterpart, General Phan Van Chiang. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% in the afternoon session. Today, the Sensex rose 262 points to 75,577, while the Nifty added 75 points to 23,725 when reports last came in. On the sectoral front, IT, realty and utility stocks were driving the market higher. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी, कहा कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित, नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत। JBVNL ने शुरू किया जन समस्या निवारण केंद्र, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई घोषणा, कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग भी टीम में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से 1 जून से देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक गांवों में जाकर मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को संतुलित खाद उपयोग के लिए जागरूक करेंगे।
2: कृषि विभाग ने ICR ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे।
1: इसे लेकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। इस बढ़ोतरी के बाद झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल की कीमत 101.76 रुपए और डीजल की कीमत 96.52 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह वृद्धि 15 मई को हुई, 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कुछ दिनों बाद हुई है। यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होमुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: झारखंड उच्च न्यायालय में रांची नगर निगम में नक्शा पास से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि रांची नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्यपालक अभियंता के स्थान पर सहायक नगर नियोजक यानी एटीपी को नक्शा पास का कार्य सौंपा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में रांची में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ग्रामीण जनता को वनों से जोड़ने और संयुक्त वन प्रबंधन समिति के साथ वन सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में उन्होंने एलिफेंट कॉरिडोर पुनर्जीवित करने, मुआवजा मामलों का त्वरित निपटारा करने, लैंड बैंक बनाने और फॉरेस्ट क्लियरेंस में तेजी लाने के साथ वन भूमि अतिक्रमण व अवैध खनन रोकने पर जोर दिया। साथ ही इको टूरिज्म, बुनियादी ढांचा विकास और मानव पशु संघर्ष कम करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया, ताकि वनों और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। संसद रत्न अवार्ड समिति ने संसद में जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने, सक्रिय भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस सम्मान को गोड्डा और झारखंड की जनता के विश्वास और आशीर्वाद का सम्मान बताते हुए इस क्षेत्र की जागरूक और संघर्षशील जनता को समर्पित किया है। संसद रत्न पुरस्कार समारोह जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम मुख्यालय स्तर पर रांची में जन समस्या निवारण केंद्र की शुरुआत की है। उपभोक्ता मोबाइल नंबर 9031110120 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऊर्जा सचिव के श्रीनिवासन ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
4: बिजली विभाग के जन समस्या निवारण केंद्र आज कुसई कॉलोनी रांची में हम लोग शुभारंभ किए। ये राज्य स्तर के हम लोग इसको तैयारी किए हैं, आज से ये संचालन शुरू हो गया है। इसमें हमारे बिजली विभाग के संबंधित कितने भी आपका सुझाव है, समस्या है, जो भी आपके जानकारी आप दे सकते हैं, उसका तुरंत जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर हल कर सकते हैं।
1: टाटा स्टील वित्तीय वर्ष 2026-27 तक डिजिटलीकरण और AI आधारित कार्य कुशलता के जरिए 7100 करोड़ रुपए की लागत कम करेगी। कंपनी के MD व CEO TV नरेंद्रन ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और ऑटो सेक्टर की मजबूती से मांग बेहतर बनी हुई है। कंपनी गैल्वेनाइज्ड पैकेजिंग, ट्यूब और वायर जैसे डाउनस्ट्रीम व वैल्यू एडेड स्टील उत्पादों में विस्तार कर रही है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भू माफियाओं के अवैध कब्जे की शिकायतों पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने राजस्व और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को जमीन दलालों पर कानूनी कार्रवाई करने और सोना हाथों निवासी प्रकाश कुमार महतो को जमीन के पंजी 2 में सुधार नहीं होने की शिकायत पर जल्द निष्पादन का निर्देश दिया है। खलारी के एनके क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ CISF ने KDH और डकरा इलाके में विशेष अभियान चलाकर लगभग 3 टन अवैध कोयला जब्त किया है। CISF अधिकारियों ने कहा कि कोयला चोरी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ उत्पादन व्यवस्था के लिए भी खतरा है, इसलिए तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र से पुलिस एक युवक और युवती का शव बरामद किया है। खूंटी के DSP वरुण रजक ने बताया कि दोनों युवक युवती छौ नृत्य देखने गए थे और देर रात से लापता थे।
5: विशु पाहन और स्वामी मुंडू जो कि जीवरी के रहने वाले हैं, अन्य लोगों के साथ छव नृत्य देखने गए थे रात में। सुबह सूचना मिला कि ये दोनों घर नहीं आए हैं, गायब हैं। खोजबीन के उपरांत मेला से कुछ दूरी पर जंगल झाड़ी में दोनों का लाश बरामद हुआ। दोनों का उम्र करीब 17-18 साल है और इन लोगों के सिर और गर्दन में धारदार हथियार से हमला किया गया। धारदार हथियार का निशान है मार करने का।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 335 अंक की वृद्धि के साथ 75,657 जबकि निफ्टी 111 अंक बढ़कर 23,762 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,76,000 रुपए प्रति किलो है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरिंग भी शामिल हैं। तीनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य के खेल प्रेमियों और हॉकी खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता के लिए 1 जून से देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। भुवनेश्वर में जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम में नक्शा पास की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। कहा कार्यपालक अभियंता की जगह असिस्टेंट टाउन प्लानर नक्शा के लिए अधिक उपयुक्त। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लगातार 17वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित। नई दिल्ली में जुलाई में होने वाले समारोह में होंगे पुरस्कृत। JBVNL ने शुरू किया जन समस्या निवारण केंद्र। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई घोषणा। कप्तान सलीमा टेटे समेत झारखंड की निक्की प्रधान और दीपिका सोरिंग भी टीम में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी में सिद्धेश्वरी देवी से कजरी और राग झिंझोटी।

उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी के अंतर्गत आपने सुना सिद्धेश्वरी देवी से कजरी और राग झिंझोटी। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत में गजल। पहली गजल है गुलाम अली की आवाज में।

इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे दिल्ली केंद्र से, थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: Former Uttarakhand Chief Minister and senior BJP leader Bhuvan Chandra Khandhuri passed away at a private hospital in Dehradun today after prolonged illness. He was 91. A former Army Major General, Khandhuri served twice as Uttarakhand Chief Minister and was also Union Road Transport and Highways Minister in the government of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Chief Minister Pushkar Singh Dhami described his death as an irreparable loss to public life. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the demise of former Chief Minister of Uttarakhand. Defence Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defence cooperation between the two countries. The Defence Minister said cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said India and Vietnam bond cooperation in defence, security and regional stability.
1: This visit is particularly significant as it serves as a major milestone that showcases the depth of our bilateral relations. We are delighted that during your recent visit to India, this partnership was upgraded to a strategic partnership. I am confident that our discussions will further strengthen our defense and security cooperation and pave the way for new avenues of collaboration in the years to come.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a yellow warning for heat wave conditions in the national capital for the next 3 days. According to the IMD, isolated places in the city are likely to reel under intense heat during the day. A report from our correspondent.
2: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 43 to 45 degrees Celsius today, while the minimum temperature is likely to hover near 28 degrees Celsius. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital were in the range of 43 to 45 degrees Celsius, while the minimum temperature were in the range of around 27 degrees Celsius. As of yesterday, 44.6 degrees Celsius was recorded in the Ridge Area Station of IMD. Safdarjung Station recorded 43.4 degrees Celsius, Lodhi Road Station 43.8 degrees Celsius, and 43.5 degrees Celsius was recorded at Palan Station. Priya Mandal, Akashwani News, Delhi.
0: In Uttar Pradesh, orange alert for heat wave to severe heat wave conditions has been issued again for the coming week. Banka continued as the hottest place in the country on the second consecutive day with a temperature of more than 47 degrees Celsius. Chief Minister Yogi Adityanath directed district magistrates, the health department, power department and relief agencies to remain on alert mode. More from our correspondent.
3: Apart from Banda, which recorded a staggering 47.6 degrees yesterday, several districts across the state are experiencing severe heat wave conditions with maximum temperatures hovering near or crossing the 45 degree mark. The Indian Meteorological Department has issued a heat wave alert for 33 districts and advised people to remain cautious, especially during afternoon hours. Heat wave conditions will prevail in the southern and central parts of the state for the next 1 week, while whole state will have hot nights for the next 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. PM. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend third India-Nordic summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्डॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
5: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
4: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
6: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा

0: भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण सुरंग ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और

0: सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.07 रूपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती मां के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम किसान की बात।

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाई बहनों का, सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं प्रतिमा शर्मा।
2: बिल्कुल, और मैं हूं गौतम झा, और मेरा भी नमस्कार श्रोताओं।
1: बिल्कुल, और गौतम, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जैसा कि अभी समाचारों में भी हम सुन रहे थे कि आने वाले 3 दिन जो है येलो अलर्ट में है, क्योंकि लू चलने की बड़ी संभावनाएं हैं। और ऐसे में फलदार वृक्षों या हरे भरे वृक्ष हों, वो हमारे पंथी के लिए, हमारे राहगीरों के लिए एक बहुत ही बड़ा साधन बनता है छाया का।
2: बिल्कुल, पशु पक्षियों के लिए भी बात कर सकते हैं आप कि उनके लिए भी छायादार वृक्ष बहुत जरूरी है। और हम लोगों का कार्यक्रम जो है वो किसान की बात कार्यक्रम का नाम ही है, तो और किसानों के जीवन में भी अगर आप देखें, बगान का बहुत ही महत्व है, चाहे आप आर्थिक दृष्टि से देखें और सामाजिक दृष्टि से भी आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य खेती की तुलना में बागवानी से अधिक लाभ प्राप्त होता है।

मेरा रंग दे बसंती चोला। जी हाँ, बसंती रंग साहस, स्वतंत्रता और बलिदान का प्रतीक है, जो देश की खातिर मर मिटने की भावना को भी दर्शाता है। ये गीत था फिल्म शहीद का, देव कोहली के बोल थे, संगीत था आनंद राज आनंद का, आवाज़ें थी उदित नारायण और हंस राज की।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जय भारती में। और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आभा। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, हसरत जयपुरी का लिखा और संगीत कल्याण जी आनंद जी का, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है गीत।

अगला गाना आनंद बख्शी का लिखा हुआ फिल्म दो रास्ते से मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़ में, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। हजारीबाग में केंद्रीय सड़क निधि योजना से 107 करोड़ की लागत से बनने वाली 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का शिलान्यास हो गया है। भारत माता चौक से सिंदूर बाईपास तक इस सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण होगा। सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया है।
1: ये लगभग 10 किलोमीटर का है और लगभग 100 करोड़ की ये जो है योजना है। पूरा हजारीबाग के इसी से कनेक्ट होता है, यहाँ से लेकर के नगवा तक, मतलब जितना बाईपास हुआ है इस फोर लेन से लेकर उस फोर लेन तक का जो कनेक्टिविटी है अभी किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और इसके बन जाने से यहाँ के लोगों को काफी रिलीफ होगा।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मंत्री ने बताया कि बैठक में राज्य के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने रिम्स 2 और नए मेडिकल कॉलेजों की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी। राहुल गांधी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए जनता के बीच सक्रिय रहने की सलाह दी। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के गर्भवती होने के मामले को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने जेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। राज्यपाल ने मामले को संवेदनशील बताते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरायकेला खरसावां में 30 और 31 मई को भाजपा का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। जिलाध्यक्ष हरेकृष्ण प्रधान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलकर मार्गदर्शन लिया और उन्हें आमंत्रित किया। इस शिविर में 150 कार्यकर्ता पार्टी इतिहास, सोशल मीडिया और AI की तकनीक सीखेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला में जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू हुआ है। उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि 25 मई तक जिले के 616 जनजातीय बहुल गांवों में लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगेंगे। आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव जो 19 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा, हमारे जिले के 616 ग्राम जो जनजातीय बहुल ग्राम है, जन भागीदारी के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा और उन ग्रामों में जो पूर्व के कार्यक्रम के तहत डीए जगुआ जनमान कार्यक्रम के तहत इस एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है, इसमें प्रयास रहेगा कि उनको विभिन्न इंटरवेंशन में सैचुरेशन मोड पर लाया जा सके।
0: बोकारो में बढ़ती बाइक चोरी के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। BS City थाना पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। DSP आलोक रंजन ने बताया कि आरोपियों पर 3 अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि ये आरोपी झाड़ियों में छिपकर अपराध कर रहे थे। इनके पास से 5 मोबाइल, 6 सिम और 3 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
3: कर्माटांड थाना अंतर्गत रत्नोडी पहिया टोला के पास से वहां से 4 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद उसी क्रम में एक और सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग उसको सिम प्रोवाइड करने के लिए उस क्षेत्र में आए हुए हैं। इस कल की गिरफ्तारी में कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 2 केस इसमें दर्ज किया गया। के पास से जो कुल मोबाइल बरामद हुआ है, कुल 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 3 ATM, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है।
0: झारखंड की युवा निशानेबाज देवासी हेमरम ने थाईलैंड इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। जामताड़ा के गरीब परिवार से आने वाली देवासी को इस ऐतिहासिक सफलता पर आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सम्मानित किया। उन्होंने राज्य सरकार से ग्रामीण और गरीब खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। उनके साथ अनुभवी डिफेंडर निक्की प्रधान और युवा खिलाड़ी दीपिका सोरेन भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसे राज्य के लिए गौरवशाली पल बताया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम लेकर के आएंगे कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी, लेकिन पहले ये संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं को आभा का नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची और मैं हूँ आपके साथ आभा और लेकर आई हूँ बेहद ही खास मस्ती से भरा शो शुरू की महफिल अंत्याक्षरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंताक्षरी में हम शुरुआत करते हैं माँ अक्षर से, तो लीजिए सुनिए माँ से।

अंताक्षरी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन गानों का सिलसिला आकाशवाणी रांची पर जारी रहेगा, कार्यक्रम रांची मेलोडीज में।

फिजाओं में गिटार की गूंज और दिल में सुरों का संगम। स्वागत है आप सबका रांची मेलोडीज के इस संगीतमय सफर में, जहां संगीत बोलेगा और रांची झूमेगी। तो चलिए शाम को और रंगीन बनाते हैं किशोर कुमार की आवाज से। बोल लिखे हैं अनजान ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने और फिल्म है याराना।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म एक दूजे के लिए। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, माफ कीजिएगा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और जिसमें अनूप जलोटा और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज आभा के साथ। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेहंदी रंग लाएगी से लता मंगेशकर की आवाज में, बोल अनजान के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म बेताब से सबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत आर डी बर्मन का।

रांची मेलोडीज़ में गानों का सफ़र यहीं तक। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कुछ और सुरीली धुनों के साथ। तब तक के लिए आप हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े अपने पुराने आदेश में बदलाव की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरी में क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और दाल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर छोटे खेतों को लाभदायक बनाना है। रांची में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वीडन, स्पेन और दावोस दौरों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1,30,000 करोड़ के निवेश और एआई हब बनाने के दावों के बावजूद जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। भाजपा ने इन विदेश यात्राओं के परिणामों पर सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को लेकर रांची में आज प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई। पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। चाईबासा एसपी अमित रेणु ने बताया कि केड़ाबीर गांव के पास तलाशी अभियान के दौरान यह गोलीबारी हुई। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। फिलहाल क्षेत्र में सघन तलाश अभियान जारी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। संकलन एवं वाचन अमित अखौरी का, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की।

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज सबसे पहले हम बातचीत करेंगे आईपीएल की। प्लेऑफ में आरसीबी पहली टीम बनी है, कोहली ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, इस पे चर्चा होगी। टीवी रेटिंग में इस बार आईपीएल थोड़ी पीछे चल रही है, सपाट पिच और ज़्यादा क्रिकेट होने की वजह से लोकप्रियता घटी है थोड़ी। इसके अलावा कुछ ऐसे कप्तान हैं जो अगले आईपीएल में या नहीं रह पाएंगे, उस पर भी चर्चा होगी। पर्सनालिटी में बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार की कि उन्होंने कैसे अपने आप को इस मुकाम पे लाया, उनका प्रदर्शन कितना अच्छा रहा। खास खास में फीफा वर्ल्ड कप की बात होगी, हाफ टाइम शो का आयोजन होगा और इसके अलावा जापान में क्रिकेट कैसे लोकप्रिय हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे और खेल खबरें तो होंगी ही। तो सबसे पहले बातचीत आईपीएल की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। रविवार को पंजाब को 23 रन से हराकर उसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम के 18 पॉइंट्स हैं। प्लेऑफ मैच 26 मई से होंगे, फाइनल 31 मई को खेला जाना है। इससे पहले लीग मैच में आरसीबी ने पंजाब को 223 रनों का टारगेट दिया था। इसमें विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर के अर्धशतक हैं। कोहली ने आईपीएल इतिहास में 50 से अधिक रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया। अब वे 50 या उससे ज़्यादा रन की 138 साझेदारियों का हिस्सा हो चुके हैं। रोहित शर्मा 107 साझेदारियों के साथ दूसरे नंबर पे हैं। इसके अलावा कोहली ने 9वीं बार आईपीएल में 500 से ज़्यादा रन बनाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डेविड वार्नर और केएल राहुल के साथ साथ ऐसे सीजन हैं। सबसे ज़्यादा 280 आईपीएल मैच खेलने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम हो गया है और इसमें भी उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। बाकी प्लेऑफ टीमों की अगर चर्चा करें, तीन चार प्ले टीमों की, तो गुजरात के अभी 16 अंक हैं, टेबल में दूसरे स्थान पर है। एक मैच चेन्नई से बचा है, अगर हार गए तो भी बेहतर रन रेट से प्लेऑफ में टीम चली जाएगी। हैदराबाद की बात करें तो 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है हैदराबाद की टीम। दो मैच बाकी हैं, एक जीते तो प्लस में नेट रन रेट से पहुंच जाएंगी टीम पहुंच जाएगी। राजस्थान रॉयल्स के 12 अंक हैं, टेबल में छठे स्थान पर है, दो मैच बाकी है और दोनों मैच

जीतने जरूरी हैं। पंजाब 13 अंक है, एक मैच बचा है, अगर जीते तो 15 अंक होंगे। किस्मत दूसरों टीमों की हार जीत पर टिकी है। और चेन्नई के 12 अंक हैं, दो मैच बचे हैं, दोनों मैच जीतने होंगे, लेकिन फॉर्म थोड़ा खराब है। तो अब देखना है दोस्तों कि 26 तारीख से जो प्लेऑफ के मैच होंगे उसमें कौन कौन सी टीमें पहुंचती हैं और 31 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। अब हम बात करें आईपीएल की, जिसमें कि टीवी का घाटा हो रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्हें फायदा हो रहा है। टीवी की औसत व्यूअरशिप 26% घटी है, लेकिन डिजिटल रीच 15% बढ़ी है। आईपीएल के 19वें सीजन के आंकड़ों ने बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर की चिंता बढ़ा दी है। मैदान पर भले ही रनों की बारिश हो रही है, लेकिन टीवी स्क्रीन से दर्शक धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और ये गायब होने का प्रतिशत 26 तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन के पहले फेज में टीवी रेटिंग 18.8 और औसत व्यूअरशिप 26% की भारी गिरावट दर्ज की गई। विज्ञापन के मोर्चे पर भी झटका लगा है, जहां टीवी विज्ञापनों में 31% की कमी आई है। इसके विपरीत डिजिटल ब्रॉडकास्टर जो हैं उनकी एक अलग ही ट्रेंड दिख रही है। इसके अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईपीएल की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है और इसकी कुल रीच 110 करोड़ तक पहुँच गई है। तो टीवी पे विज्ञापनों की भी कमी हो रही है और व्यूअरशिप भी कम हो रहा है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उस पे लोगों की व्यूअरशिप बढ़ी है। टीवी व्यूअरशिप घटने की बहुत सारी वजह हैं, उस पे हम चर्चा करते हैं। एक तो पहली बात यह है कि एक तरफा मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, बल्ले और गेंद के बीच जो स्पर्धा है वो खत्म होती दिख रही है। विशेषज्ञों और फैंस का मानना है कि आईपीएल के पीछे अब केवल बल्लेबाजों के लिए बन गई है। मैच में 220 से 260 तक के स्कोर अब बहुत जनरल हो गए, बहुत सामान्य हो गए। जब बल्ले और गेंद के बीच संघर्ष ही जब खत्म हो जाए तो हर गेंद बाउंड्री के पार जाने लगती है और ऐसे में खेल में अनिश्चितता खत्म हो जाती है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम ने गेंदबाजों की भूमिका को और भी कम कर दिया है, जिससे मैच नीरस और एक तरफा होने लगा है। अब बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं और दोनों टीमों के लिए यहाँ पे दिलचस्पी वाली कोई बात नहीं रह रही। एक बात दर्शकों की थकान से भी जुड़ी है कि वर्ल्ड कप के तुरंत बाद इतने बड़े टूर्नामेंट का बोझ दर्शकों पर डाला गया है। साल भर क्रिकेट की अधिकता भी दर्शकों को उबने के लिए छोड़ रही है। आईपीएल का आयोजन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद हुआ और लगातार क्रिकेट देखने के कारण दर्शकों में वो उत्साह नहीं बचा है जो पहले हुआ करता था। अब आईपीएल में 10 टीमें हो गई और 74 मैच खेले जाते हैं और यह लीग 2 महीने से ज़्यादा चलती है। SA20 मेजर लीग और द 100 जैसी दुनिया भर की तमाम लीग के कारण भी क्रिकेट में कुछ नयापन नहीं रह गया है। इसके अलावा एक बात और है कि जो फैंटेसी गेमिंग पे बैन लगा है उससे क्या हो रहा है कि रियल मनी गेमिंग ऐप हटने से क्रेज कम हुआ है। इन्वेस्टेड दर्शक व्यूअरशिप गिरने की सबसे प्रमुख वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 सरकार द्वारा कुछ रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर बैन लगा देने से उस बड़े दर्शक वर्ग को मैच से दूर कर दिया है जो केवल अपनी टीम और इनाम के लिए ही मैच से जुड़े रहते थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो इस गेमिंग ऐप्स के थ्रू पैसा भी कमा रहे थे। ये ऐप न केवल विज्ञापन दाता के लिए बल्कि दर्शकों को भी अंतिम गेंद तक बांधे रखते थे। अब वह वित्तीय उत्साह खत्म होने से भी टीवी के सामने दर्शकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन सरकार की नीतियों के अंतर्गत ये बातें आती हैं, इसलिए इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जो हो सकता है कि अगले सीजन में वो टीमों के कप्तान नहीं रहे। इसकी वजह है खराब प्रदर्शन या कुछ विवाद भी इसकी वजह है। जैसे अक्षर पटेल की बात करें, खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। उन्होंने 9 पारियों में 112.5 शून्य की धीमी स्ट्राइक से 100 रन बनाए और 12 मैचों में केवल 10 विकेट लिए। वे फैसलों के लिए भी कोच
पर निर्भर दिखे अभिषेक पटेल को नजरअंदाज करना और अनुभवहीन साहिल परख को सीधे उतारने जैसे उनके फैसले भी सवालों के घेरे में रहे। अब देखना है कि अगले आईपीएल में वो टिके रहते हैं कि नहीं। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो 27 करोड़ की भारी फीस मिली उन्हें, पर स्ट्राइक रेट सिर्फ 138 की रही। लगातार दो सीजन टीम के क्वालिफाई न करने से मालिक का, जो फ्रेंचाइजी के मालिक होते हैं, उनका नाराज होना स्वाभाविक है। 27 करोड़ की भारी कीमत पाने वाले पंत ने 11 मैचों में 138 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 251 रन बनाए हैं और पूरे टूर्नामेंट में महज 9 छक्के लगाए हैं। धीमी स्ट्राइक रेट वाले आर्सेन कुलकर्णी से ओपनिंग कराना और बिना पावर गेम वाले आयुष बदोनी को टॉप ऑर्डर में भेजने जैसे फैसलों ने उनकी रणनीतिक समझ पे सवाल खड़े कर दिए हैं। अजिंक रहाणे कोलकाता के कप्तान हैं और केकेआर ने मजबूरी में रहाणे को कप्तान बनाया था क्योंकि उनके पास कोई और विश्वसनीय विकल्प नहीं था। इसमें हेड कोच और उनके पूर्व साथी अभिषेक नायर का भी बड़ा हाथ था। 37 साल के रहाणे और युवा अंग क्रिस रघुवंशी दोनों ने टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की, लेकिन इनकी धीमी गति ने हर मैच में टीम की लय बिगाड़ दी। रघुवंशी ने 139 की स्ट्राइक रेट से 340 रन बनाए, जबकि रहाणे ने 133 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 237 रन ही जोड़े। अब बात करते हैं पैट कमिंस की। हैदराबाद के से जुड़े हैं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस इस सीजन शुरुआती 7 मैचों में नहीं खेले। इस दौरान युवा भारतीय ईशान किशन ने कप्तानी करते हुए टीम को 4 मैच जिताए। मतलब साफ है कि फ्रेंचाइजी को ईशान के रूप में कप्तान का एक विकल्प मिल गया। मौजूदा सीजन में कमिंस के नेतृत्व में टीम ने 5 में से 3 मैच जीते और इन मैचों में कमिंस ने सिर्फ 5 विकेट लिए और औसत 33 से ज़्यादा रहा। ऐसे में ईशान बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं और हो सकता है कि अगले आईपीएल में पैट कमिंस हैदराबाद टीम के कप्तान न रहें। हार्दिक पांड्या की बात करें जो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, टीम ने इस सीजन के शुरुआती 11 मैच में से 3 जीते और सीजन से बाहर होने वाली दूसरी टीम ये बनी। पिछले साल भी टीम मुश्किल से प्लेऑफ में पहुंची थी। ऐसे में संभावना है कि अगले साल हार्दिक से भी टीम का नेतृत्व छीन लिया जाए। वह पिछले 2 मैचों में चोट की वजह से नहीं खेले, जबकि इस दौरान नेट्स में अकेले ट्रेनिंग करते दिखाई भी दिए। प्रदर्शन भी औसत रहा। चर्चा है कि कुछ टीमें हार्दिक को ट्रेड करने की कोशिश भी कर रही हैं। अब बारी है रियान पराग की। राजस्थान के कप्तान हैं, उनके नेतृत्व में टीम ने 4 मैच जीतकर शुरुआत बहुत शानदार की, लेकिन उसके बाद 7 मैच में से 5 हारे। 2 बार टीम 220 से अधिक रन नहीं बना पाई। रियान 10 मैच में 23 के साधारण औसत से 207 रन ही बना सके। तो दोस्तों, ये तो हुए आईपीएल की बातें और अब हम पर्सनालिटी में बात करने जा रहे हैं भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली के। तो सबसे पहले बात भुवनेश्वर कुमार की। इनके साथ एक बात यह रही कि आरसीबी से खेल रहे भुवनेश्वर ने 21 विकेट लेकर इस आईपीएल में सबसे सफल गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया है। तेज रफ्तार, आक्रामक बयानबाजी से दूर रहते हैं। अनुशासन और धैर्य ने इन्हें सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाया है और जरूरत के हिसाब से खेल बदल कर ये घातक साबित हो रहे हैं। आईपीएल 2026 में जब भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मुश्किल वक्त में विकेट की जरूरत पड़ी तो कप्तान रजत पाटीदार की नज़र सबसे पहले एक ही खिलाड़ी पर गई और वो हैं भुवनेश्वर कुमार। उम्र 36 साल, शरीर पहले से जैसा तेज नहीं, लेकिन अनुभव और दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत। मुंबई के खिलाफ रायपुर में आखिरी ओवर में रोमांच खत्म करते हुए मुश्किल से एक दिन हुआ था, पर 4 विकेट लेने और बल्लेबाजी से आखिरी ओवर में अहम रन बनाने वाले भुवी के चेहरे पर न कोई अतिरिक्त उत्साह था और न कोई दिखावा। वो शांति से बैठे थे जैसे यह सब उनके लिए सामान्य बात हो। हाल ही में आर अश्विन ने मजाक में कहा था कि भुवनेश्वर को फिर से भारत की T20 टीम में शामिल होना चाहिए। जब यह बात उनसे पूछी गई तो वो मुस्कुराए और बोले कि अश्विन को ही सेलेक्टर बना दो। यही सहजता भुवनेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है और इस सीजन उनके नाम 21 विकेट हैं। वह पर्पल
कैप होल्डर भी बन गए हैं। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड भी इस साल उन्होंने ही बनाया। लेकिन भुवनेश्वर के लिए आंकड़ों से ज़्यादा अहम है मानसिक संतुलन। वे कहते हैं कि जिस दिन मुझे भारतीय टीम से बाहर किया गया उसी दिन मैंने उसे स्वीकार कर लिया। 10 साल तक सब कुछ देखा, इसलिए अलग होना आसान था। कभी सिर्फ स्विंग गेंदबाज माने जाने वाले भुवनेश्वर ने अब खुद को T20 के हिसाब से बदल लिया। उनकी नकल बॉल और डेथ ओवर गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए परेशानी बनी हुई है। वे मानते हैं कि T20 क्रिकेट पूरी तरह से बदल चुका है। पहले 200 रन बनते थे तो लगता था मैच खत्म हो गया, अब 200 भी छोटा स्कोर लगता है। बल्लेबाज बदल रहे हैं इसलिए गेंदबाजों को भी बदलना पड़ता है। हालांकि इतने बदलाव के बावजूद भुवनेश्वर खुद को बदला हुआ खिलाड़ी नहीं मानते। उनका कहना है कुछ नया नहीं किया। वह कहते हैं लोग सोचते हैं मैं कुछ अलग कर रहा हूं, लेकिन मैं वही पुरानी चीज़ें कर रहा हूं जो करता रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि विकेट मिल रहे हैं। विकेट से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से गेंद सही जगह पड़ जाती है। यही भुवनेश्वर की असली कहानी है। तेज रफ्तार नहीं है, आक्रामक बयान नहीं है, सिर्फ अनुशासन और धैर्य और लगातार मेहनत करना उनकी पहचान है। शायद यही वजह है कि बढ़ती उम्र में भी वे आईपीएल के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए हैं। और अब बात करते हैं विराट कोहली की। 2026 में विराट कोहली का किंग अवतार फिर से छा गया दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपनी क्लासिक आक्रामक शैली और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से आलोचकों को करारा जवाब दिया। लगातार 2 मैचों में 0 पर लौटने के बाद बुधवार को कोहली ने केकेआर के खिलाफ नाबाद 105 रनों की पारी खेली और कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। अभी तक T20 में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ियों में पहला नंबर क्रिस गेल का है, जिन्होंने 22 शतक बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम ने 13, विराट कोहली ने 10, डेविड वार्नर ने 10 और अभिषेक शर्मा ने 9 शतक लगाए हैं। अब कोहली के नाम आईपीएल में 21 प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब दर्ज हो गए हैं। किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा यह संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा है। रोहित शर्मा के नाम भी इतने ही अवार्ड हैं। बुधवार को कोहली ने 409 पारियों में 14,000 रन पूरे किए तो विश्व रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 423 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो दोस्तों, पर्सनालिटी में हमने बातें की आज भुवनेश्वर कुमार की, जिन्होंने अपने धैर्य अपने प्रदर्शन के बल पर आईपीएल में अपना एक मुकाम हासिल किया है। और उसी तरह से विराट कोहली भी रहे, जिन्होंने आईपीएल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और खास खास में आज हम बातें करते हैं फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल प्रेमियों के लिए इस साल का वर्ल्ड कप सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि संगीत के इतिहास का सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहली बार सुपर बॉल की तर्ज पर एक भव्य हाफ टाइम शो का आयोजन किया जा रहा है। 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल के दौरान पॉप क्वीन मैडोना, लैटिन सुपरस्टार शकीरा और के पॉप दिग्गज BTS परफॉर्म करेंगे। 49 साल की कोलंबियाई पॉप सिंगर शकीरा अपना नया आधिकारिक वर्ल्ड कप गाना डाई डाई इटालियन शब्द, जिसका अर्थ होता है चलो चलो, रिलीज कर रही हैं और उनके साथ नाइजेरियाई सिंगर बर्नार बाय भी नजर आएंगे। 67 साल की मैडोना 15वीं एल्बम कन्फेशंस 2 के रिलीज के साथ वर्ल्ड कप के मंच पर अपना जादू भी खेलेंगी। हाल ही में कोचेला में उनके सरप्राइज परफॉर्मेंस ने पहले ही काफ़ी चर्चा बटोरी है। और BTS की बात करें तो अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद वापसी कर रहा दक्षिण कोरियाई बैंड BTS अपने 85 एक दिवसीय वर्ल्ड टूर के बीच इस फाइनल में परफॉर्म करेगा। कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन द्वारा क्यूरेट किए गए इस शो के जरिए फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड के लिए $100 मिलियन करीब 957 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है और यह राशि दुनिया भर के बच्चों की शिक्षा और बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये हाफ टाइम शो 11 मिनट का होगा। वर्ल्ड कप को लेकर वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के बीच वैश्विक संगठन
फीफा प्रो ने एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट के दौरान गर्मी का खतरा रहेगा। कुल मैचों में लगभग 25% मुकाबले

अत्यधिक गर्मी और उमस के होने के कारण प्रभावित होंगे और जिन मैचों में गर्मी का जोखिम 10% से अधिक है उनमें से एक तिहाई ऐसे स्टेडियम में जहां एसी नहीं है, इनमें मियामी, कंसास सिटी, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी जोर शोर से चल रही है दोस्तों, और अब खास खास में हम बात करने जा रहे हैं जापान में कैसे लोकप्रिय हो रहा है क्रिकेट। बेसबॉल के दीवाने जापान में अब क्रिकेट की आवाज भी सुनाई देने लगी है। नागोया शहर से करीब 40 मिनट दूर बने कोरोगे स्पोर्ट्स पार्क में जब बल्लेबाज ने गेंद को जोरदार छक्का लगाकर मैदान के बाहर रेत और झाड़ियों तक पहुंचाया तो दर्शकों की तालियों से स्टेडियम गूंज उठा। लेकिन साथ ही साथ नियमों की किताब भी पकड़े हुए थे खिलाड़ी, उन्हें खेल समझ नहीं आ रहा था लेकिन रोमांच जरूर महसूस हो रहा था। इसकी वजह क्या है कि सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स से पहले जापान में क्रिकेट को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। पहली बार यहां क्रिकेट के लिए खास मैदान तैयार किया गया है और इसी मैदान पर 2028 T20 वर्ल्ड कप के ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं। इन मुकाबलों में जापान, वानुआतु, फिजी, समोआ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, कुक आइसलैंड और दक्षिण कोरिया जैसी टीमें हिस्सा ले रही हैं और भले ही बड़ी क्रिकेट ताकतें इसमें न शामिल हैं लेकिन जापान के लिए यह टूर्नामेंट किसी बड़े मौके से कम नहीं है। मैदान पर मौजूद 34 साल के स्थानीय युवा आकिमासु मैच देखने पहुंचते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने क्रिकेट का नया नाम पहली बार बच्चों के मशहूर ऑस्ट्रेलियाई कार्टून ब्लूई में सुना था। मैच देखते हुए नियमों की किताब पलट रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे खेल पूरी तरह समझ नहीं आ रहा लेकिन देखने में काफ़ी मज़ेदार है। यह मैदान जो बनाया गया वह पहले बेसबॉल का था, इसलिए बाउंड्री लाइन के पास अब भी पिचर का छोटा टीला दिखाई देता है। मैदान की पिच तैयार करने की जिम्मेदारी श्रीलंका के अनुभवी क्यूरेटर आसिता विजय सिंगे के पास है जो पल्ले केल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच भी संभालते हैं। आयोजकों का कहना है कि यहाँ की पिच पाकिस्तान जैसी होगी जहाँ गेंद उछाल भी लेगी और स्पिन गेंदबाजों को मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों खास खास में हमने वर्ल्ड कप की बात की और जापान में क्रिकेट कैसे लोकप्रिय हो रहा है ये भी बात की, और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और चलते चलते खेल जगत की कुछ खास खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने बुधवार को जारी आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजों की सूची में 8वें और 9वें स्थान पर रहे, जबकि इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान जो रूट 880 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। जायसवाल के 750 अंक हैं, गिल को एक स्थान का फायदा हुआ है और उनके 730 अंक हैं। हैरी ब्रुक की सूची में दूसरे स्थान पर हैं जबकि उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का नंबर आता है। भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है। टीम ने अपनी पिछली सीरीज स्वदेश में नवम्बर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। एशिया के नंबर एक और विश्व रैंकिंग में छठे नंबर के ट्रैप निशानेबाज जोरावर सिंह संधू को इस वर्ष के आखिर में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की संभावित शॉटगन टीम में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह देश के शीर्ष ट्रैप निशानेबाजों में एक हैं और उन्होंने पिछले वर्ष विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रीय चैंपियनशिप और घरेलू चयन ट्रायल के दौरान जोरावर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप फाइनल्स की तैयारी में व्यस्त होने के बावजूद उनके लिए इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य था। राष्ट्रीय ट्रायल में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण उन्हें एशियाई खेलों के लिए संभावित टीम में जगह नहीं मिली। वह एक महीने पहले तक विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर थे। जोरावर ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। भारतीय वुशू टीम ने 11वें साडा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। महिला खिलाड़ियों के 6 सदस्यीय दल में इन दोनों स्वर्ण पदकों को जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह अस्मिता खेलो इंडिया
महिला लीग के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। सीमा सुरक्षा बल की एथलीट शिवानी ने महिला 75 किलोग्राम वर्ग में अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए रूस की प्रतिद्वंदी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अर्पणा ने भी 52 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। दोनों ने ब्राजील में आयोजित विश्व वुशु में रजत पदक जीते थे। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, दिग्गज खिलाड़ियों को शिकस्त देने वाली साक्षी चौधरी, जादूमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल ने शुक्रवार को चयन ट्रायल के अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। कड़ी स्पर्धा और वजन वर्गों में फेरबदल के बीच इन मुक्केबाजों ने कोटा हासिल किया। ट्रायल के दौरान कई मुक्केबाजों ने सीमित वजन वर्ग में जगह बनाने के लिए अपना वर्ग बदला। इनके साथ विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता परवीन हुड्डा, सुमित कुंडू, अंकुश और कपिल पोखरिया भी ग्लासगो और जापान जाने वाली टीम में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने फातिमा सना की अगुवाई में इंग्लैंड और वेल्स में अपने अगले महीने होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इस टीम में 5 ऐसी खिलाड़ी हैं जो पहली बार इस वैश्विक टूर्नामेंट में उतरेंगे। ऐमान फातिमा, नतालिया परवेज, रामी शमीम, सायरा जबीन और तस्मिया रुबाब पहली बार महिला T20 विश्व कप खेलने जा रहे खिलाड़ियों में शामिल हैं। पाकिस्तान अपना विश्व कप अभियान 14 जून को बर्मिंगम में भारत के खिलाफ मुकाबले से शुरू करेगा। वेलबन सेंथिल कुमार और जोसना चिनप्पा की शीर्ष वरीय जोड़ी ने तीसरी HCL राष्ट्रीय युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में अभय सिंह और रतिका सिलान को 11-7, 11-9 से हराया। सेंथिल कुमार ने अभय के साथ मिलकर फाइनल में राहुल बैठा और सूरज कुमार चंद को 11-8, 11-5 से हराकर लगातार तीसरे वर्ष पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। बायर्न म्यूनिक ने हैरी केन की हैट्रिक की मदद से कोलोन को 5-1 से हराकर बुंडेसलीगा 2026 का खिताब अपने नाम किया। टीम ने 122 गोल का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले बुंडेसलीगा में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बायर्न के नाम था। टीम ने 1971-72 में 101 गोल किए थे जब फ्रांच वेकेन बायर और गेड मोलर जैसे दिग्गज खिलाड़ी क्लब का हिस्सा थे। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए सीजन की चौथी हैट्रिक लगाई। उन्होंने इस सीजन में कुल 36 गोल किए। हालांकि वह रॉबर्ट लेवांडोस्की के 41 गोल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने से 5 गोल पीछे रह गए। बायर्न म्यूनिक की तरफ से इस मैच में टॉम बिशोप और निकोलस जैक्सन ने भी गोल किए। कोलोन पर बड़ी जीत के बाद खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने स्टेडियम में जोरदार जश्न मनाया। इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण और इसी के साथ अपने दोस्त आमित को विदा दीजिए। नमस्कार।

शो तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण, स्वर अमित अखौरी, आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 4:35 से आप सुनेंगे सांझ सरगम युव वाणी। चर्चा होगी ईमानदारी से करें अपना कार्य, इतिहास में आज का दिन। प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे, श्रमिक लोक कार्यक्रम। चर्चा 90 साल की युवा आवाज, कल आज और कल। औद्योगिक विकास में हरित सोच का समावेश। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार किसान वाणी कार्यक्रम। 6:02 से आप सुनेंगे चर्चा, खेतों का नियमित भ्रमण करें, गर्मी में दुधारू पशुओं का प्रबंधन, नई उम्र की नई फसल। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की हमारी दुनिया। चर्चा डिजिटल शिक्षा की ग्रामीण चुनौतियां। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:11 से आप सुनेंगे जिले में आजकल आदिवासी अखड़ा। 7:15 से आप सुन सकते हैं। प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। रात्रि 7:45 अंग्रेजी वार्ता, वॉइसेस फ्रॉम द माइंस, पीपल, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। वार्ताकार केसी जैन, प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। रात्रि 8:00 रजनी गंधा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 8:30 सुर्खियों में।

रात के 10 बजे गूंजे झारखंड, स्वर यात्रा के 80 वर्ष पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। वाचन स्वर होगा संध्या नीलिमा टोपनो का, प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। रात्रि 10:30 से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, सारंगी पर राग पुरिया कल्याण, उस्ताद शबरी खान से। तो श्रोता, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम एप के 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम बैंड के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 4:35 हुए हैं। पेश कार्यक्रम सांझ सरगम। रितेश का नमस्कार।

दिल से निकली आवाज दिल तक पहुंचती है, चेहरे में क्या रखा है। आप सुन रहे थे सलामी फिल्म में कुमार शानू और आशा भोसले को। अगला नगमा फिल्म घायल से है।

0: जब प्यार किसी से होता है फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कुमार सानू को। ये कार्यक्रम सांझ सरगम कार्यक्रम ही संपन्न होता है साथियों, हृदय आपको करता है नमस्कार। श्रोताओं हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, शाम के 5 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची के होटवार जेल में बंद महिला कैदी के यौन उत्पीड़न मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। झालसा की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर जस्टिस एसएन प्रसाद ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट के आदेश पर एक बड़ी जांच टीम तुरंत बरसामुंडा केंद्रीय कारागार पहुंची और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने लोकभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने रांची से मुंबई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा और नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेन शुरू करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने रांची लखनऊ रेल सेवा को भी शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया। बोकारो स्थित दामोदर नदी के बरवा घाट में आज नहाने गए 2 स्कूली छात्र डूब गए। LH आजाद नगर के रहने वाले 3 छात्र स्कूटी से नदी पहुंचे थे। गोताखोरों की मदद से छात्र विष्णु का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि लापता छात्र शनि की तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांडे थाना क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। SP डॉ. विमल कुमार ने बताया कि यह अपराधी लोगों को फर्जी लिंक भेजकर ठगी करता था। इसके पास से 2 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। राज्य में अगले 7 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने आवास पर गोल शॉट बॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। सांसद ने टीम के सदस्यों का उत्साह बढ़ाते हुए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: श्रोतो हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, 5:02 कार्यक्रम युववाणी में लेकर हाजिर है अंकिता और नीरल, प्रस्तुत करता है गौरव कुमार पांडे।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूँ नीरल।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आईपीएल का माहौल चल रहा है, हर गली हर चौराहे और लगभग हर मोबाइल स्क्रीन पर बस क्रिकेट की ही बातें हो रही है। कहीं चौको इको की चर्चा है तो कहीं पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की गणित।
1: बिल्कुल अंकिता, तो क्यों ना इसी खेल के जुनून के बीच आज बात की जाए खेल की उस असली भावना की, जो सिर्फ जीतने से नहीं बल्कि सही तरीके से खेलने से जुड़ी है।
0: बिल्कुल नीरल, आज विश्व निष्पक्ष खेल दिवस यानी वर्ल्ड फेयर प्ले डे के मौके पर हम बात करेंगे खेलों में ईमानदारी, सम्मान और खेल भावना की।
1: क्योंकि खेल सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नाम नहीं है, खेल हमें सिखाते हैं डिसिप्लिन, पेशेंस और दूसरों का सम्मान करना।
0: सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी रन तो बना ले, लेकिन चीटिंग करके, तो क्या वो जीत उतनी ही शानदार लगेगी? शायद नहीं।
1: और यही वजह है कि फेयर प्ले की भावना हर खेल की असली पहचान मानी जाती है।
0: मैदान पर असली खिलाड़ी वही होता है जो नियमों का सम्मान करे, विरोधी टीम की इज्जत करे और हारने के बाद भी मुस्कुराकर हाथ मिलाना जानता हो।
1: बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि कई बार खेल के मैदान में ऐसे पल देखने को मिलते हैं जो स्कोरबोर्ड से कहीं ज्यादा बड़े बन जाते हैं। जब कोई खिलाड़ी घायल प्रतिद्वंदी की मदद करता है या अंपायर के गलत फैसले का गलत फायदा नहीं उठाता, तब समझ आता है कि खेल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि चरित्र का भी नाम है।
0: आज के समय में जहां जीत की होड़ हर जगह दिखाई देती है, वहां निष्पक्ष खेल की भावना हमें याद दिलाती है कि सही रास्ते से मिली जीत ही सबसे खूबसूरत जीत होती है।
1: तो आइए इस विश्व निष्पक्ष खेल दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि चाहे खेल का मैदान हो या जिंदगी का, हम हमेशा ईमानदारी और सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे।
0: क्योंकि असली चैंपियन वही होता है जो सिर्फ मैच नहीं दिल भी जीतता है।
1: दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन असली सफलता वही होती है जो मेहनत और सच्चाई से हासिल की जाए।
0: जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि इंसान के चरित्र की पहचान होती है। जब कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई से करता है तो उसे

0: अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होता है, और चाहे कोई देखे या ना देखे, ईमानदार इंसान हमेशा सही रास्ता चुनता है।
1: और आजकल कई शॉर्टकट से सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। और वहीं जो लोग कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते, लगातार मेहनत करते हैं, समय का सम्मान करते हैं और अपने काम को पूरी लगन से निभाते हैं, वे देर से ही सही लेकिन मजबूत मुकाम जरूर हासिल करते हैं।
0: और ईमानदारी से काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान को बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ता, उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है।
1: और जो लोग अपने काम को जिम्मेदारी से करते हैं, वे छोटी छोटी चीजों में भी लापरवाही नहीं करते। यही आदत आगे चलकर उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।
0: और इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। ईमानदारी से किया गया छोटा काम भी बड़ी सफलता की नींव बनता है। जीवन में मुश्किलें और संघर्ष जरूर आते हैं, लेकिन सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी गलत मंजिल तक नहीं ले जाता। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरी लगन, अनुशासन और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। यही आदत हमें एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, आइए हम लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो दोस्तों अब बात करते हैं इतिहास में आज का दिन यानी 19 मई के बारे में। इतिहास में आज ही के दिन 1904 को भारत के पहले उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन हुआ था।
1: और दोस्तों देश के छठे राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी का जन्म आज के दिन यानी कि आज ही के दिन 1913 को हुआ था।
0: 19 मई 1971 को भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापट्टनम में शुरू हुआ।
1: आज ही के दिन 1979 में हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था।
0: 1892 में बहुचर्चित नाटककार और कवि ऑस्कर वाइल्ड को 2 साल की सजा के बाद जेल से रिहा किया गया। उन्हें समलैंगिकता के अपराध में यह सजा सुनाई गई थी। उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता गैर कानूनी थी।
1: 1934 में अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई को हुआ था। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस भी है जो पानी पर तैरता है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल झील श्रीनगर में एक हाउस बोट पर स्थित है, जो इसे और भी खास बनाता है।
0: और एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य, एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में हीरे सिर्फ भारत में ही पाए जाते थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर करीब 1000 वर्षों तक भारत ही दुनिया का एकमात्र हीरा स्रोत रहा।
1: दोस्तों क्या आपको मालूम है कि गायों के भी हमारी और आपकी तरह बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब उन्हें उनके पसंदीदा साथियों से अलग किया जाता है तो वे तनाव महसूस करते हैं और उनकी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है।
0: एक और दिलचस्प बात, मैग्नेटिक हिल नाम की एक जगह है। ऐसा भ्रम होता है कि गाड़ियां खुद ब खुद ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, जबकि असल में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। यह लेह कारगिल नेशनल हाईवे पर लेह शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं हम एक और म्यूजिकल ब्रेक।

भारतीय सेना जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल बट ओनली व्हेन इट इज डिसिप्लिन्ड, यानी जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम उसमें अनुशासन को अपनाएं। अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं है बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देना है। जब इंसान अपने समय, आदतों और जिम्मेदारियों को समझकर चलता है तभी वह अपने सपनों के करीब पहुंच पाता है।
4: बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है, लेकिन असफल में सफलता के पीछे रोज की डिसिप्लिन हैबिट्स होती हैं, जैसे समय पर उठना, अपने काम को डिले ना करना, लगातार मेहनत करना और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना।
3: बिल्कुल सही कहा नीरल, और खासकर स्टूडेंट्स के लाइफ में तो डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी को अपना कर रोज थोड़ा थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई करें, समय का सही उपयोग करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, तो वे बिना ज्यादा तनाव के अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं।
4: और आज की तो भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी खो देते हैं। जबकि अनुशासन यानी डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता का कारण बनती हैं।
3: और सबसे खास बात, डिसिप्लिन इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब हम अपने जीवन को सही तरीके से चलाते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और बैलेंस अपने आप आने लगता है।
4: इसलिए कहा जाता है कि सुंदर जीवन का रहस्य केवल पैसा, आराम ये नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन लाइफ है। क्योंकि सच में लाइफ इज ब्यूटिफुल ओनली वेन इट इज डिसिप्लिन। तो अपने आसपास भी अपने दोस्तों को और अपने साथियों को समझाएं कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे जिंदगी में।
3: अब आगे बढ़ते हुए आइए हम जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स। विश्व खेल मेला दिवस 19 मई यानी कि आज के दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। पहली बार वर्ल्ड फेयर प्ले डे 2025 में दुनिया भर में मनाया गया था।
4: RBI ने गुणवीर सिंह को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया।
3: UIDAI ने आधार कार्ड को निशुल्क में अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। आधार कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए यह निशुल्क सुविधा अब 14 जून 2027 तक उपलब्ध रहेगी।
4: वेस्ट बंगाल मंत्रिमंडल ने 1 जून से महिलाओं को 3,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी दे दी है।
3: वियोना फिनटेक को NPCI प्रमाणन मिला है, और साथ ही कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को मंजूरी दी।
4: इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान MJK का निधन हो गया।
3: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 37,500 करोड़ की कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी।
4: जियो प्लेटफॉर्म ने आकाश अंबानी को 5 साल के कार्यकाल के लिए MD नियुक्त किया।
3: भारत ने एशियन बॉक्सिंग U15 चैंपियनशिप 2026 में 27 पदक जीते।
4: UAE के 30 मिलियन बैरल तेल भंडारण समझौते के साथ भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। तो दोस्तों, बातें तो हमें आपसे और भी करनी थी, पर अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो अपनी दोस्त नीरल
3: और अपनी दोस्त अंकिता
4: को दीजिए इजाजत।
3: नमस्कार।

श्रोतो, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 5:30 हुए हैं, आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक प्रीति और सुषमा के साथ। प्रस्तुति प्रशांत गौरव की है।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी जानकारियों के साथ आज मैं हूँ सुषमा और साथ में है प्रीति।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक साथियों को प्रीति का भी अभिनंदन। दोस्तों, हम हर रोज आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको हर विषय से जुड़ी जानकारी दे सकें।
0: तो चलिए बातें करते हैं औद्योगिक विकास में हरित सोच के समावेश की। कैसे विकास कार्य भी ना रुके और धरती भी हरी भरी रहे।
1: इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो सके और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रयासरत रहें।
0: जैसे कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास जैसे स्वच्छ विकल्पों को अपनाना।
1: उपयोग करो और फेंको, इसकी नीति जो है, ये नीति जो है, इसके बजाय उत्पादन इस तरह से करना चाहिए कि कचरा कम से कम निकले और उत्पादों को रिसाइकल किया जा सके। कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक हर चरण में पर्यावरण को ध्यान में रखना, जैसे कि प्लास्टिक पैकेजिंग की जगह बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए।
0: और दोस्तों, भारत जैसे विकासशील देश में जहां तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है, वहां हरित सोच का समावेश केवल एक विकल्प नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक वृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
1: तो आइए हम सभी ये संकल्प लें कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम जितना योगदान कर सकते हैं उतना करेंगे।
0: बिल्कुल करेंगे। और एक बात साथियों, 90 साल की युवा आवाज, कल, आज और कल, यह आवाज उस जन संचार की जिसमें पीढ़ियों को जोड़ा, जागरूक किया और देश की धड़कनों को घर घर तक पहुंचाया। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन आवाज का भरोसा कभी नहीं बदला। कभी गांव की चौपालों में रेडियो से खबरें सुनी जाती थी, किसान मौसम की जानकारी लेते थे और श्रमिक अपने अधिकारों की बातें समझते थे।
1: बिल्कुल सही कहा, 90 साल हो गए हमारे रेडियो को।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और ये गौरवशाली इतिहास जो है वो हम सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग, अधिकतर क्या, मैं तो ये कहूंगी कि सारे लोग जो हैं वो बचपन से ही रेडियो से जुड़े हैं। और रेडियो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज की चेतना रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज के डिजिटल दौर तक इसने हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। यही वजह है कि 90 साल के बाद भी इसकी आवाज युवा, जीवंत और प्रेरणादायक बनी हुई है।
0: आज रेडियो मोबाइल पर है, इंटरनेट पर है, लेकिन उसका उद्देश्य वही है, लोगों तक सही जानकारी और सकारात्मक सोच पहुंचाना, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को आवाज देना और आने वाले कल में यह और भी आधुनिक और भी अधिक तेज लेकिन उतना ही संवेदनशील होगा।
1: बिल्कुल। और नई तकनीकों के साथ रेडियो समाज को जागरूक और एकजुट करने का कार्य करता रहेगा। साथियों, यही है कल, आज और कल की वह युवा आवाज जिसने समय के साथ कदम मिलाकर देश के विकास की कहानी लिखी है। और कहानी के साथ साथ एक गीत भी हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: मुझे लगता है बातें बहुत ज्यादा हो गई, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सच में गीत संगीत का आनंद कुछ और ही होता है और हम
1: बिल्कुल।
0: उसमें खो जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें कि संगीत और पर्यावरण ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं सिमिलर है। जब आप कहीं प्रकृति की छाँव में जाते हैं, प्रकृति की गोद में जाते हैं, तो आपको मधुर संगीत सुनने का मन करता
1: बिल्कुल।
0: है
1: और
0: कि नहीं?
1: अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ऊर्जा संरक्षण की, तो
0: बिल्कुल
1: उसी प्रकार उतनी ही जरूरी है पर्यावरण संरक्षण। तो आइए साथियों सुनते हैं एक भेंट वार्ता पर्यावरण संरक्षण पर। भेंट वार्ताकार हैं एकता रचना, जो कि एक शिक्षिका हैं, और आपसे बातचीत कर रही हैं प्रीति कुमारी।
2: कई प्रयास किए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, तो पर्यावरण संरक्षण है क्या और कैसे इसे बचाया जाए, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं श्रीमती एकता रचना से, जो कि एक शिक्षिका है। तो एकता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: एकता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण ये है क्या?
3: देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है पर्यावरण संरक्षण को समझने से पहले हमें पर्यावरण का अर्थ समझना होगा। अब पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब बनेगा परि जोड़ आवरण, यानी कि परि यानी कि चारों तरफ और आवरण मतलब ढका हुआ, यानी हमारे चारों ओर पृथ्वी जिस वातावरण से ढकी हुई है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो भी चीजें हैं, जो भी तत्व हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जल, तापमान, वर्षा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि हम मानव भी, हम सब सब इस पर्यावरण के तत्व हैं। अब जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि पर्यावरण के इन सभी तत्वों को हमें संरक्षित करना है, उन्हें उसे सुरक्षित रखना है, उसे बचाना है। तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ यही हुआ।
2: अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या ये प्रयास काफी है या और भी ज्यादा किए जाना चाहिए?
3: देखिए, प्रयास तो अच्छे हैं जो हमारे तरफ से उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से।

0: जी पर्यावरण संरक्षण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। उसका एक वजह ये भी है, हम मानव ने खास तौर पर इस पर्यावरण का संतुलन को बिगाड़ दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पर्यावरण के सभी तत्व आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और हम सभी मानव भी इसी पर्यावरण के तत्व हैं, उसका एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं किसी एक की गलती पूरे पर्यावरण पर भारी पड़ जाता है। तो पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए हमारे जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को सुचारू रूप से संचालित रहना होगा। कहीं पर भी किसी चीज में कमी या बढ़ोतरी हो गई तो इसका सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, और पर्यावरण पर अगर प्रभाव पड़ा तो सबसे बड़ा खामियाजा इंसान को या हम मनुष्य को ही भुगतना पड़ता। तो आपने कहा कि कहां भूल हुई, कहां त्रुटि हुई, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम मानव ने अपनी जनसंख्या को इतना बढ़ा लिया है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारे पास पेड़ पौधे का अभाव हो रहा है इस वजह से, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है तो हमें अधिक घरों की आवश्यकता पड़ रही है रहने के लिए, और घरों को साफ करने के लिए हमें पेड़ पौधों को काटना पड़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कल कारखाने स्थापित किए जाने हो रहे हैं, आवश्यक हो रहा है। अब इन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए, आप पेड़ पौधे वाली जगहों को काट कर साफ कर रहे हैं। तो हम मानव ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि आज के संदर्भ में ज्यादा आवश्यक हो गया है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक तो जी जल संरक्षण जो कि आज बहुत जरूरी हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण ये कितना जरूरी है आज हम सबके लिए?
0: देखिए प्रीति जी, जल तो जीवन का आधार है, हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा। अब पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों हो पाया है? क्योंकि जल है इसलिए हमारा अस्तित्व है, हम मनुष्य का अस्तित्व है। अन्यथा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन का अस्तित्व हो सकता था, लेकिन वहां जल की उपलब्धता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए। तो इसलिए अगर हम जल की बर्बादी करेंगे या जल को बचाकर नहीं रखेंगे तो निकट भविष्य में हमारी जो भावी पीढ़ी होगी उनको जल की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अभी से जल संरक्षण करें। और जहां तक प्रदूषण की बात है तो प्रदूषण हर जगह है। अब हम इसके लिए अलग अलग से अगर बातें करें तो जल प्रदूषण की समस्या पर अलग से एक विचार विमर्श किया जा सकता है, वायु प्रदूषण पर अलग से बात की जा सकती है, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, हर जगह प्रदूषण फैला हुआ है। ये प्रदूषण अगर हम चाहें कि हम इनको रोकें तो इनके लिए अलग अलग उपाय किए जाने चाहिए, और हम चाहें, हम मनुष्य चाहें तो अपने विवेकपूर्ण तरीके से इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने कहा कि विवेकपूर्ण तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन एक तरह ऐसा है कि हम सभी जानते हैं इस बारे में कि ये हमारे लिए गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जानते हुए भी गलतियां करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे रास्ते पे कचरा फेंक देना, या जल को प्रदूषित करना, या सरकारी नल है तो खुला छोड़ देना, ये एक तरह से जल की बर्बादी है। तो कैसे अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि लोग जो है इसके प्रति जागरूक हों और वो आगे आए और लोगों को भी जागरूक करें?
0: देखिए सबसे पहली बात, हमारे पास जो चीजें हमें उपलब्ध हो रही है ना, और कहीं ना कहीं जो चीजें हमें फ्री में मिलती है तो उनको हम वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी महत्ता को हम नहीं समझ पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है, चाहे पढ़े लिखे लोग हों या कितने भी शिक्षित लोग हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को बहुत सहज तरीके से लेते हैं और हमें लगता है कि ये सब चीजें खत्म होने के बाद फिर दोबारा पाई जा सकती हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक बार खत्म हो जाए तो फिर हम उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये चीजें हमें समझनी होंगी और हमको ये मानना होगा कि पर्यावरण का एक हिस्सा हम भी हैं। हम कहीं कुछ गलती करें तो उसका खामियाजा पर्यावरण को भुगतना पड़ता है। जैसे कभी आपने गौर किया होगा कि प्रकृति अगर अपने नियम से ना चले, अगर बाढ़ की स्थिति आ जाती है या किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, तो उसका कितना सीधा प्रभाव मानव पर पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण पर किसी भी तरह का असंतुलन पूरे पर्यावरण को ही तहस नहस कर सकता है। तो जब हम मनुष्य पर्यावरण का एक हिस्सा हैं, तो हमें भी ये समझना होगा कि हमारी भागीदारी कितनी अधिक है। तो ये जब तक ये संदेश लोगों तक ना पहुंचाया जाए, ये जागरूकता ना दी जाए कि हम पर्यावरण का एक हिस्सा हैं और हमारा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें खुद को भी समझना होगा और जो ना समझे उनको समझाना होगा। क्योंकि छोटे छोटे स्तर पर हम प्रयास करके लोगों तक की जागरूकता फैलाएंगे तभी लोगों को ये बातें समझ में आएंगी।
1: जी बिल्कुल। अच्छा एक तरह आज से जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जब गर्मी आएगी तब पानी की किल्लत जो है वो चारों तरफ हो जाती है, लोग हाहाकार करने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वर्षा जल को कैसे संरक्षित किया जाए?
0: देखिये प्रीति जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ बारिश की तो कोई कमी होती नहीं, बारिश के मौसम में बहुत भरपूर बारिश होती है, फिर गर्मी में जल की कमी क्यों हो जाती है और हमें क्यों पानी की कमी का सामना करना पड़ता है? तो पहली बात तो पानी की दुर्लभता, जल की दुर्लभता या जल की कमी की स्थिति कब आती? जब पीने योग्य पानी का अभाव हो जाता है वैसी जगह पर जहाँ पानी मिलना चाहिए। पानी हमारी पृथ्वी पर कभी कम नहीं होता, किसी ना किसी रूप में वो पृथ्वी पर रहता है, या वाष्प के रूप में रहे या समुद्री जल के रूप में रहे या कहीं ना कहीं

0: पृथ्वी पर जल होता है, लेकिन जल की कमी फिर क्यों होती? तो जल की कमी हम उस स्थिति को बोलते हैं जहाँ पर जितने पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पर उस वक्त उतना पानी नहीं होता। तो ये जल की दुर्लभता की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी कि हमारा जो वर्षा का जल है उसको हम संरक्षित करें और उसको बचाने की कोशिश करें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए ताकि निकट भविष्य में हमें पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। जल को संरक्षित करने के और जल को बचाने के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। अगर हम जल को पीने योग्य बनाना चाहते हैं और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें जल को भूमिगत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भूमिगत करके हम जल को अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं और निकट भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार छोटे मोटे बांध बनाकर, छोटे मोटे जलाशय बनाकर भी हम अपने खेती बाड़ी की आवश्यकताएं और मछली पालन जैसी आवश्यकताओं के लिए हम छोटे स्तर पर भी इन सब चीजों को कर सकते हैं। बांध जैसी जो परंपरागत जो क्रियाएं हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन बांध भी बहुत अधिक से अधिक बनाए जाने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जब कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वर्षा बहुत अधिक हो जाती है, आशा के अनुरूप ना होकर के बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, अतिवृष्टि जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे समय में बांध अगर बना रहे तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, तो एक बहुत अच्छा बचाव हो जाता है बांध करने से। तो मुझे लगता है अगर आपको खेती बाड़ी के लिए, मछली पालन के लिए और अन्य चीजों के लिए अगर बारिश के पानी को एकत्रित करना है तो आप ऊपरी तौर पर बारिश के जल को छोटे मोटे जलाशय बनाकर और छोटे मोटे बांध बनाकर बारिश के पानी को एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय में पीने योग्य पानी की कमी ना रहे तो मुझे लगता है वर्षा के जल को भूमिगत करने का प्रयास किया जाए। में जहाँ पर वर्षा की कमी होती रहती है, बहुत कम वर्षा होती है, या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा के जल को एकत्रित नहीं किया जा सकता या ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जो टैंक है ये बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन चीजों को बनाया जाए ताकि ये इस पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए भी कर सकें, न सिर्फ कपड़े धोने और ऐसी बाहरी चीजों के लिए नहीं बल्कि इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। मैं तो ये अपील करूंगी लोगों से कि आप अपने विवेकपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल करें और अपने आप को माने कि हम पृथ्वी का एक हिस्सा है, हम पर्यावरण का एक हिस्सा है और हमें अपनी भागीदारी निभानी है, क्योंकि पर्यावरण के बाकी तत्व अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो सुचारू रूप से संचालित है। उसी प्रकार हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी भागीदारी देनी होगी पर्यावरण के संरक्षण में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और हमें भी लगता है कि हमारे जितने भी श्रोता साथी इस वक्त आपको सुन रहे होंगे उनका भी यही मानना होगा कि पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबका दायित्व है, किसी एक के करने से नहीं होगा बल्कि हम सबको आगे आना होगा और पर्यावरण को, जल को बचाना होगा ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इसकी किल्लत से ना गुजरे और जो भविष्य है हमारा वो अच्छा हो। तो एकता जी आप हमसे मिली और हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो साथियों बहुत ही अच्छी जानकारी दी एकता रचना ने और उसके इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं और साथियों जो मेहनतकश हाथ देश की ताकत होते हैं ना, लेकिन इन हाथों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। मतलब हम बात कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा और अनिवार्यता, उसकी अनिवार्यता।
3: साथियों सामाजिक सुरक्षा का मतलब है ऐसा सहारा जो कठिन समय में श्रमिक और उसके परिवार के काम आए, जैसे बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, मातृत्व या रोजगार छूट जाने की स्थिति में आर्थिक और सामाजिक महत्व।
2: बिल्कुल सही बात कही प्रीति आपने। और आज सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे ई श्रम कार्ड, कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ESI, भविष्य निधि योजना यानी PF और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है।
3: बिल्कुल, जरा सोचिए अगर परिवार का कमाने वाला व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाए तो बिना सामाजिक सुरक्षा के पूरा परिवार संकट में आ सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सही योजना से इलाज, बीमा और आर्थिक सहायता मिल सकती है।
2: इसीलिए साथियों जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अपनी दस्तावेज सही रखें, योजनाओं की जानकारी लें और समय पर पंजीकरण जरूर कराएं। ध्यान रखें सुरक्षित श्रमिक ही मजबूत भारत की पहचान है।
3: बहुत सही कहा आपने, श्रमिकों का सम्मान तभी पूरा होगा जब उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
2: और जिस तरह साथियों सामाजिक सुरक्षा हमारे जीवन को सुरक्षित बनाती है, उसी तरह ऊर्जा संरक्षण हमारे जीवन को, हमारे भविष्य की सुरक्षा सुन।

0: मतलब भविष्य को सुरक्षित रखता है। आज जरूरत है समझदारी से ऊर्जा उपयोग करने की। हमारी छोटी छोटी आदतें ना केवल बिजली बचाती है बल्कि पर्यावरण और आर्थिक बचत में भी बड़ा योगदान देती है।
1: घर हो या कार्यस्थल, दिन में प्रकृति की जो रोशनी होती है उसका उपयोग करें, एलईडी बल्ब अपनाएं, जरूरत न होने पर पंखे और उपकरण बंद कर दें, ऊर्जा दक्ष मशीनों का इस्तेमाल करें। ये सभी स्मार्ट जीवन की पहचान है और आधुनिक युग में तो सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल भी काफी बढ़ रहा है और हम सब प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखना है आपको कि याद से लाइट जो है या पंखे जो है उन्हें बंद करके
0: ही हमें प्रयास करनी चाहिए इस पर। और साथ ही ऊर्जा बचत का सीधा असर हमारी जेब पर भी तो पड़ता है। कम बिजली खर्च का मतलब है अधिक बचत और बेहतर जीवन। यानी यही नहीं, ऊर्जा संरक्षण से प्रदूषण भी कम होता है और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित भी रहते हैं। क्यों?
1: इसलिए साथियों, आप सभी को याद रखना होगा कि ऊर्जा की हर बूंद को बचाना है और भविष्य को उज्जवल बनाना है।
0: इसलिए हम सबको ये ठान लेना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि कम ऊर्जा में ज्यादा प्रभाव पैदा करेंगे और स्मार्ट जीवन शैली अपनाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और अब चलिए चलते चलते एक और प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: कहीं जाते हैं या चलते हैं तो पता नहीं चलता कि समय कैसे निकल जाता है। और आज तो मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम में भी हमने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी जानकारियाँ दी, और अब समय हो गया है कार्यक्रम में अपने साथियों से विदा लेने का। हालांकि हर बार हम आते हैं, हर बार ढेर सारी जानकारियां देते हैं दोस्तों, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जानकारियां आपके लिए हो, आपको
1: बिल्कुल
0: उससे
1: बिल्कुल,
0: लाभ
1: हम
0: हो।
1: उनकी बेहतरी के लिए ही कार्यक्रम सोच समझ कर लेकर आते हैं। तो साथियों, कार्यक्रम सुनते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और उसका लाभ भी उठाते रहिए। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी उम्मीद के साथ अपनी दोस्त सुषमा,
0: और प्रीति को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोतो, आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक प्रीति और सुषमा के साथ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 6 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन और डीआरएम करुणानिधि सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेल सेवाओं का विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र 2026 से एक वर्षीय और दो वर्षीय स्नातकोत्तर के नए पाठ्यक्रम और क्रेडिट रूपरेखा पर चर्चा की गई। गढ़वा जिले में ईंधन कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम संजय कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने सोनपुरवा से 13 अवैध रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए। वहीं लातदाग गांव के पास ऊंचे दामों पर गैलन में पेट्रोल डीजल बेचने की शिकायत पर एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। रांची के मनन विद्या मंदिर में यातायात पुलिस ने 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट के महत्व, साइबर ठगी से बचाव और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उपनगर आयुक्त पारुल सिंह के नेतृत्व में इमली चौक से आशियाना चौक तक सर्विस लेन पर बने अवैध चबूतरों और निर्माणों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। धनबाद में नागरिक एकता मंच ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर लोधना क्षेत्र से लोगों को जबरन हटाने का आरोप लगाया। मंच के सदस्य बिहारी लाल चौहान ने कहा कि समाज सेवी कुंदन पासवान पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये आरोपी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और मोबाइल बरामद किए हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम सुनाइए सब भाई और बहन मन के रोरमन का संगी मनोज कर जोहार।
1: और संगे संगे मनोज भाई करूँ मनीष भाई करूँ जोहार।
0: जोहार जोहार भाई और सुनाइए सबके। आज का दिन में हम विशेष कार्यक्रम लाए ही और आज कर जो कार्यक्रम है उसके बता देख चाहिए
1: हाँ,
0: कि ये कार्यक्रम को प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत
1: भारत सरकार।
0: सरकार। और भाई देखो अखन तक तो मौसम पहुँचल कि नहीं पहुँचे?
1: एखन तक
0: नहीं
1: मौसम तो
0: पहुँचे।
1: नहीं
0: चलो
1: पहुँचे।
0: भाई तो आज कर कार्यक्रम को बता देख चाहेला। आज हमरे में सबसे पहले जानब डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक से जेकि बतावे कि गर्मी में दुधारू पशु के प्रबंधन के बारे में। एक बाद कृषि विकास गीत में सुनब मेघनाथ महतो और संगी मनकर गावल गीत जेकि नागपुर में रही। और आज एक नवा किसान है जेकि बागवानी करे ना और किसान है बुधराम टोपो। तो भाई देखो मनीष भाई अब खेती बाड़ी कर दिन तो एखन होवत है
1: हाँ,
0: बरसात
1: चलत
0: आवत है।
1: है,
0: हाँ, और इसमें तो सालों भर हमारे मन खेती बाड़ी
1: खेती बारी
0: करते रही
1: चलते
0: ला।
1: रहे।
0: तो भाई देखो बेरा बेरा समय मन के खेत मन में नहीं जाए के देखते रह के चाहिए। बहुत कोई कारण ऐसा कि लगाए के छोड़ देवे ना वो बाद फिर जाबे नहीं करे ना।
1: एकदम बेरा बेरा से जाले हमरे मन के पता चल कि खेत में कतई का देवे खे खे कनो कनो मतलब फसल मन में कीड़ा मकोड़ा तो नहीं हुआ थे, और कोनो कोनो देवे तो न खे खेत में पानी देवे खे कि फसल के का देवे खे, वो सब पता चलेला। और संगे संगे हमरे मन के कखन कखन फसल होत है, उके तोड़े कखन है, उकर हूँ पता चलेल का कहिल।
0: सही बात है। मतलब कहे मतलब है कि नियमित रूप से हमारे मन के बिहान शादी हो तो एको बेरा जाए कि हमारे मन के देखे के चाहिए।
1: खेत के देखे के
0: और
1: चाहिए।
0: संगे संगे देखो दोसर कर खेत मन भी जाके देखे के चाहिए कि वो मन कर कैसन है और हमारे खेत कर कैसन है। अगर वो
1: एकदम
0: मन कर बढ़िया है तो ऊपर से पूछ के हमारे मन को अपन खेत में कोनो जानकारी दे कि हमारे मन बढ़िया से खेती बाड़ी कर सकेला
1: हाँ,
0: है कि नहीं। भाई देखो जरूरी है आदमी मन बहुत सारा अपन गतर के देखते रहना का बीमारी है का है नहीं। उसे नहीं हमारे मन के खेत में फसल मन के देखे है कि का बीमारी हुआ थे और कैसे बढ़ा थे नहीं बढ़ा थे का है। अगर कोनो दरकार है तो ककरो साइंटिस्ट मन से चाहे ककरो किसान मित्र से हमारे मन के पूछ के
1: पूछ के
0: मने कि अपन खेत में इस्तेमाल करके बढ़िया से उत्पादन कर सकेला है कि नहीं
1: और
0: का
1: नवा
0: कहना।
1: विधि मन के हूँ अपनाए चाहिए हमरे मन के खेत मन में, दूसर किसान मन से सीखे हूँ चाहिए।
0: हाँ भाई देखो आजकल तो मोबाइल का युग है। आजकल देखो
1: हाँ
0: तो मोबाइल में सब कुछ भेटाएल। मोबाइल में देखो अब तो खेती बाड़ी से संबंधित दुनिया भर के ऐसा चीज़ है कि हमारे मन जानकारी ले सके ले। अगर केको से नहीं पूछा थे तो भी हमारे मन पेपर के माध्यम से चाहे हमरे कर माध्यम से रेडियो कर माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से चाहे मोबाइल कर माध्यम से जानकारी लेके हम अपन खेत में प्रयोग कर सको है कि नहीं।
1: एकदम
0: तो भाई देखो निकर बात अब का जानकारी है बताओ नहीं तनि।
1: देखो तो आज कर जानकारी जो है हमरे ठीन जिससे है, गर्मी में दुधारू पशु मन जो है ना उकर प्रबंधन कातरी हमरे कर सकेला इकर बारे में है जानकारी। और इके बताते हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक, और इनकर से गोठियाई हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: चलो तो सुनी ले।
1: चलो
2: साथियों जोहार नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बेहद जरूरी है। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप का असर केवल हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि हमारे बेजुबान पशुओं पर भी बहुत गहरा पड़ता है, खासकर जो हमारे दुधारू पशु हैं। उन्हें इस मौसम में हीट स्ट्रेस यानी पानी की मार झेलनी पड़ती है जिससे न केवल उनका स्वास्थ्य गिरता है बल्कि दूध की मात्रा में भी काफ़ी कमी आ जाती है। तो इस गर्मी के मौसम में पशुओं का आवास कैसा हो, उनके खान पान में क्या बदलाव किए जाएं और लू से बचाव के लिए कौन से ज़रूरी कदम उठाए जाएं, इन तमाम विषयों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक, सहायक प्राध्यापक रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि गर्मी में दुधारू पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3: गर्मी जैसे जैसे आप देखते हैं कि बढ़ते जाता है, तो जैसे इंसान में हम देखते हैं कि गर्मी का जो प्रभाव है लोगों में ज़्यादा जो है पसीना आना और पानी का जो है प्यास लगना, ये सब चीज़ देखते हैं, उसी तरह से जानवर में भी ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है शरीर का तापमान उसका बढ़ जाता है। शरीर का तापमान बढ़ने का जो मेन कारण है कि जो शरीर का जो हमारा तापमान होना चाहिए जो गाय का हम लोग देखते हैं 102 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ती है उसका तापमान 103 से ऊपर हो जाता है और गायों में आप देखेंगे कि हाँफना स्टार्ट हो जाएगी
2: जी
3: और उसका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाता है। दूध दूध में अगर है तो दूध प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर बच्चा है या बाछी है तो उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई गर्म होने वाली बाछी है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि बाछी जो है सही समय पर गर्मी पर नहीं आती है। इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो हम खान पान लेते हैं उसी से हमारा जो है पूरा फंक्शंस शरीर में करता है, लेकिन जो हम जैसे भोजन प्राप्त करते हैं वो हमारा जो है भोजन लगना चाहिए प्रोडक्शन में, मतलब उत्पादन में लगना चाहिए या रिप्रोडक्शन में लगना चाहिए, वो नहीं लग करके वो जो है पूरे हीट को निकालने में, शरीर से बाहर निकालने में लग जाता है, जिसके चलते इसका प्रतिकूल प्रभाव जानवरों के शरीर पर पड़ता है, साथ में उत्पादन पर पड़ता है, और उसका जो अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन में पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों को हम लोग यही बोलेंगे कि गर्मियों में खास करके पशुओं का उचित जो है प्रबंधन बहुत ही जरूरी है।
2: जी डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रेस के मुख्य लक्षण क्या हैं?
3: जैसे हम अभी बता रहे थे कि जैसे इंसानों में हम लोग को हीट स्ट्रेस के जो लक्षण दिखते हैं कि खास करके जो पसीना बहुत ज़्यादा आना, तो जानवरों में भी कुछ विशेष लक्षण होते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अगर हीट स्ट्रेस हो रहा है, तो उसमें देखेंगे कि पशु के इस जीभ से जो है लार आ रहा है, टपक रहा है, सांस जो है तेजी से बढ़ने लगता है, और उसका जो है आप चेस्ट वाला जो एरिया होता है, छाती वाला एरिया बहुत ही तेजी से चलने लगता है। तो इससे जो है हम सांस में देखते हैं कि बहुत अचानक वृद्धि, मतलब जो होना चाहिए 15 से 20 बार वो 75 से 80 बार जो है वो आपको सांस लेने का दर जो है बढ़ जाता है, वो देखेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि पानी का जो है उसमें बार बार जो है पानी का जहाँ आप रखे हैं पीने के लिए उसमें जाता है जानवर, और साथ में हम देखते हैं कि उसका भूख में कमी हो जाती है, और देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि जहाँ पानी रखें उसमें ज़्यादातर समय वहीं पे व्यतीत कर रहा है, तो दूध उत्पादन पे कमी और उसके स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव हमको देखने को मिलेगा।
2: अभी आपने पानी की बात की, तो गर्मियों में पशुओं के लिए पानी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए?
3: पशुओं के लिए हमेशा हम बोलते हैं कि हमेशा साफ पानी दें और ठंडा पानी पिलाएं, क्योंकि शरीर का तापमान ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, आंतरिक जो उसका तापमान है बढ़ा हुआ है। तो जब भी मान लीजिए किसी किसान भाई के पास कुआं है तो कुएं से पानी निकालें, ये नहीं कि आप नाद में जैसे है कि नाद में निकाल करके पानी छोड़ दिए हैं और दिन भर उसी पानी को पी रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो सूरज का रोशनी है डायरेक्ट नाद पे पड़ रहा है और उससे पानी गर्म हो जाता है। तो वो पानी अगर आप पिलाएंगे तो पशु का जो है हीट जो है वो ठंडक नहीं पहुंचाएगा, आंतरिक जो है ठंडक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए हमेशा उसको पानी अगर निकाल के पिलाएं, जब भी निकाल रहे हैं अगर चापाकल है तो आप चला करके पिलाएं या कुआं से है तो बार बार पिलाएं। और अगर आप देखेंगे इसमें तो साधारणतः गर्मी के दिनों में पानी का जो रिक्वायरमेंट है उसको जो चाहिए 60 से 80 लीटर कि प्रतिदिन केवल पीने के लिए चाहिए, तो इसीलिए पर्याप्त मात्रा में हमको पानी देना चाहिए और साफ पानी स्वच्छ पानी देना चाहिए जिससे उसका कोई स्वास्थ्य पे असर प्रतिकूल ना पड़े।
2: जी तो गर्मी से बचाने के लिए पशुशाला कैसी होनी चाहिए?
3: पशुशाला के लिए खास करके गर्मियों में हम बोलते हैं कि जो ओरिएंटेशन है मतलब डायरेक्शन जो हम लोग घर बनाते हैं उसमें पूरब पश्चिम की दिशा होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है सनलाइट मैक्सिमम आप देखेंगे कि दक्षिण में होता है, तो डायरेक्ट जो है उसके शेड पे नहीं पड़े, इसलिए पूरब से पश्चिम जो है हम लोग रखते हैं। और आवास जो बनना चाहिए वो हवादार होना चाहिए, जो खिड़की है वो दोनों आमने सामने होनी चाहिए और हवादार होनी चाहिए। जो ऊँचाई है जो छत की ऊंचाई होनी चाहिए बीच का, पहले जो है 10 से 15 हम लोग बोलते थे, लेकिन अभी जो आ रहा है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि 15 से 18 फीट का जो हाइट है वो बहुत ही अच्छा होता है। साथ में अगर मान लीजिए उसका छत की बात करते हैं हम लोग, तो छत में खास करके अगर कोई किसान भाई खपड़ा लगा रखे हैं तो ठीक है, सबसे बेस्ट होता है खास करके हीट स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए। अगर मान लीजिए एस्बेस्टस का रखे हैं तो एस्बेस्टस में वो फूस डाल दें, फूस के साथ साथ में अगर उस पर अगर खपड़ा का जो है खपड़ैल या टाइल्स जो अभी आ रहा है उसको अगर रखेंगे तो बहुत हद तक जो है गर्मी का तनाव जो है अपने आवास में हम लोग कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर गर्मियों में आप पानी का छिड़काव करें ऊपर से तो आप आसानी से जो है हीट स्ट्रेस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं।
2: जी अभी तो आपने बात की पशुशाला कैसी होनी चाहिए और हीट स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गर्मियों में कौन सा चारा देना लाभदायक होगा?
3: यह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, खास करके जब गर्मी पड़ती है तो ये प्रायः देखा जाता है कि पशुओं में भूख कम लगती है, खाना जो है कम कर देता है, तो उस समय में हमको कुछ बदलाव करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि संतुलित आहार देना है हमको, तो संतुलित आहार में आता है सूखा चारा, हरा चारा और दाना आता है। तो सूखा चारा की मात्रा को उस समय हमको कम कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे देखेंगे जनरली तो एक पशु को, खास करके जो 400 केजी बॉडी वेट है और 10 केजी जो है दूध प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि 4 से 5 केजी सूखा चारा देना चाहिए, 20 से 25 किलो जो हरा चारा देना चाहिए, और जो दाना की मात्रा है हर एक 3 केजी दूध पर 1 केजी जो है दाना की मात्रा, मिश्रित दाना की मात्रा देना चाहिए। लेकिन जब गर्मी होता है तो उस समय सूखा के चारा की मात्रा को कम कर देना है 1 से 2 किलो, और जो है हरा चारा की मात्रा 25 से 30 किलो बढ़ा देंगे, और जो कंसंट्रेट जो दे रहे थे वो वैसे ही देंगे जो मिश्रित दाना दे रहे हैं, जो 3 केजी हर एक 3 केजी पर 1 केजी देना है।
2: जी, तो पशुओं को किस समय चारा खिलाना चाहिए?
3: पशुओं को खास करके गर्मी के मौसम में आप सुबह सुबह 8 से 10 के बीच तक आप उसको खिला दीजिए तो बेहतर होगा। 10 के बाद जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उस समय जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रुचि कम हो जाएगी, तो खाना कम खाएगा। साथ ही शाम को अगर आपको चराई के लिए निकालते हैं तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग मतलब 6 से 10 तक आप चरा करके अंदर में रख लीजिए, और शाम को 3 के बाद ही घर से बाहर निकालें। और अगर घर में दिन भर रखते हैं तो उसको उसी समय हमको दाना या जो भी हम चारा देते हैं उसी समय देना चाहिए, ताकि जो है वो मैक्सिमम अमाउंट वो खा सके, उसी से उसका प्रोडक्शन निर्धारित होता है। जितना वो इनटेक होगा उतना जो है आउटपुट हमको उससे मिलता है।
2: जी जी, तो गर्मियों में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से वैज्ञानिक उपाय हमारे किसान भाई अपनाएं जो कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा हो?
3: तो गर्मियों में खास करके हमको, एक तो आपको जैसे बताया कि हमको संतुलित आहार देना चाहिए
2: जी।
3: संतुलित आहार पे हमको फोकस करना चाहिए कि उसमें हरा चारा भी हो, दाना भी हो, और सूखा चारा की जो मात्रा है जैसे आपकी अभी आपको बताया उस तरह से देना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको जो है घर आवास जो है आवास में हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए, खास करके गर्मियों के समय में। जैसे मान लीजिए कि फैन लगा दिया या कूलर लगा दिया, उसके साथ में फवारा विधि से जो है स्प्रिंकलर जो होता है पानी का फवारा, वो बहुत ही अच्छा होता है। उससे तुरंत जो है हीट जो है पशु का शरीर जो है ठंडा होता है, और उससे जो है हम देखते हैं कि पशु में प्रतिकूल जो प्रभाव है वो तुरंत ही नगण्य हो जाता है, और वो अपना अच्छे से खाना स्टार्ट करती है और प्रोडक्शन जो है सामान्य हो जाता है।
2: जी, तो इस गर्मी से बचाने के लिए पशुओं को नहला भी सकते हैं?
3: हाँ, नहलाना इसलिए ज़रूरी है कि उस समय हम लोग देखते हैं कि खास करके आप देखेंगे कि जो भैंस है तो भैंस में ये नहलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और गाय में भी अगर गर्मी का समय है तो तुरंत जो है टेम्परेचर जो इवेपोरेशन के थ्रू जो हमारा हीट में जो आंतरिक हीट है, और जैसे ही हम नहलाते हैं तुरंत जो है हीट को कम करता है, क्योंकि इवेपोरेशन के थ्रू जो है हमारा शरीर ठंडा होता है। तो इससे जो है आप देखेंगे खास करके बुफैलो जो भैंस है और गाय में, ये दोनों में तुलना करेंगे तो बुफैलो में ज़्यादा हीट स्ट्रेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है एक झालर जो नेक के पास लटका हुआ रहता है जिसको हम लोग ड्यूलप भी बोलते हैं, वो अब्सेंट होता है। तो उसमें आप उस स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा उसी में रहता है जिससे पसीना निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पसीना, उसी के थ्रू निकलता है गाय में, जबकि प्रेजेंट है भैंस में नहीं है। तो भैंस को इसलिए आप देखेंगे कि गांव में भी लोग तालाब में डुबा करके रखते हैं, और नहीं है तो अपना खुदवा दिया और वहाँ पर जो है पशुओं को ले जा करके एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा में पानी भर दिया, और उसमें जो है कम से कम 2-3 घंटे आपको रखने से जो हीट का बहुत ही बढ़िया जो है मैनेजमेंट इसमें हो जाता है।
2: और गर्मियों में रोगों से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी हमारे किसान भाई रखें?
3: गर्मियों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है इक्टोपैरासाइट जो हम लोग बाह्य परजीवी जिसको बोलते हैं उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसी गर्मी बढ़ती है तो जितने भी घर हैं घर के जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि इक्टोपैरासाइट में टिक्स है, लाइस है, माइट्स है, वो कहीं कहीं घर में छुपा रहता है, तो उसको जो है एक जैसे ही गर्मी पड़ती है तो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद पशु के शरीर पे वो चढ़ जाता है, चढ़ने से उसमें देखेगा कि वो खून चूसता है, खून चूसेगा

0: तो उसे उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो ले रही है पशु वो टिक्स ले रहा है, माइट्स ले रहा है, उसका खून चूस रहा है। तो इसलिए हम लोग को हमेशा जो है उस समय खास करके इक्टोपरासाइट का दवा लगाने के लिए, जैसे बिटॉक्स आता है या आइवरमेक्टिन है, उस समय जो है लगाना चाहिए। और हर एक 3 महीने में आप करेंगे तो आपका जो है ये ठीक ठाक रहेगा। साथ ही साथ पशुशाला का सफाई भी करना जरूरी है, नियमित सफाई करने की, मच्छर का प्रकोप उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो नीम का जो है जला सकते हैं, साथ में नीम का तेल का छिड़काव करें, जो नाली है उसमें ब्लीचिंग पाउडर छिड़क सकते हैं, साथ में चूना डाल सकते हैं। तो इससे जो है साफ़ सुथरा रखने से आपका मच्छर नहीं होगा और मक्खी का भी प्रकोप नहीं होगा, तो आसानी से हम इसको मैनेज कर सकते हैं
1: जी। तो वाकई आज डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, चाहे वह पशुओं को दिन में 3-4 बार नहलाना हो, उन्हें ठंडी जगह पर रखना हो, या फिर उनके आहार में संतुलित पोषक तत्वों को शामिल करना हो, अगर हमारे पशुपालक भाई इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर गर्मी की इस मौसम में भी उनके पशु स्वस्थ रहेंगे और दूध का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बहुमूल्य जानकारी दी। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: तो एखन हमारा मन के जानकारी दिले डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक, जे कि बताले कि गर्मी कर मौसम में दुधारू पशु मन कर प्रबंधन कर बारे में, तब बेरा है कृषि विकास गीत कर। तो भाई चलो सुनीला नागपुर में मेघनाथ महतो और संगीवन कर गावल गीत।
3: चलो तब सुन लेवेला।

0: अब कृषि विकास कितकर बाद अब बेरा है आइज कर एक ठो किसान है जेकी बागवानी करे ना। और किसान है बुधराम टोपो, इनकर से बतिया है हमारे एक संगी अरविंद कुमार मिश्रा।
1: चलो तब सुन ले वेला। भाई बहन मन जोहार। जैसन कि हमरे मन रोज दिना नवा नवा किसान से रोज मन के भेंट घाट हमरे मन करवाते रहिला, उमन कर अनुभव के जाने कर कोशिश करीला। बढ़िया बढ़िया किसान से हमरे मन कर भेंट भी हो जाला। उमन कर अनुभव के जब जानी लानी तो उमन कर जे तौर तरीका है खेती करे कर एकदम वैज्ञानिक तरीका से है। अरे के जान के हमरे मन के बहुत कुछ सीखे कर मौका भी लागेला किसान मन से। तो चलू नी आज हमरे मन एक ठो नवा किसान से हमरे मन भेंट करब। और ये किसान काफ़ी अनुभवी बुझाए ना, तो इनकर बारे में हमरे मन जानब पूरा। कैसे खेती बाड़ी कर काम करे ना, कहाँ कर रहे वाला है सारा चीज़ हमरे मन जानब। सबसे पहले तो स्वागत करीला हमरे मन कर कार्यक्रम में किसान भाई कर, और इनकर परिचय के भी हम जानब लगे। तब जोहार किसान भाई, का
2: जोहार।
1: नाम होला करोर?
2: मोर नाम बुधराम टप्पो है के।
1: हाँ, कहाँ कर रहे वाला ही बुधराम जी?
2: मैं घाघरा टिकरा टोली प्रखंड बेड़ो जिला रांची कर अस्थाई निवासी है को।
1: बहुत बढ़िया बुधराम जी। बुधराम जी, रोड़े पढ़े के लिखे कहाँ तक पार ली?
2: मोर पढ़े लिखे 8 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़े पढ़ली, कारण हो गया कि घर में स्थिति रहकर कारण से आगे पढ़ाई नहीं कर पा लो।
1: और उकर बाद से खेती बाड़ी करत
2: उकर
1: ही?
2: बाद से खेती बाड़ी में खान जुड़ी।
1: तो खेती बाड़ी कितना दिन हो गया करते करते रुके?
2: खेती बाड़ी करबन करबन हम 2003 में रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची में हुआ बागवानी कर प्रशिक्षण प्राप्त करके हुआ से जैसे कोर्स खत्म होलक तब से 2004 से 4-5 से मैं लग गलो।
1: अच्छा, तोरो रे दिव्यान कृषि विज्ञान केंद्र से बागवानी कर प्रशिक्षण भी ले ही?
2: हाँ, ये 6 माह का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुकी हूँ।
1: तो तनी सन उकर बारे में रोर से हम जाने खोजब। कारण है कि बहुत सारा किसान मन जे नवा खेती बाड़ी से जुड़े खोजे ना, तो प्रशिक्षण बहुत जरूरी हो जाएगा।
2: बहुत जरूरी है ताकि नया नया तकनीकी के अपनाए सकें ना। इखाने बहुत तरह का रोग बीमारी बेमौसम के वजह से जो बारिश हुआ थे और रुके अगर नहीं अपना जानब उके साझा नहीं करब तो खेती बाड़ी करके आमदनी प्राप्त नहीं कर सकीला।
1: एकदम सही बात कहली। तो हुआ कर अनुभव हम जाने खोजब कि कैसे हुआ गेली दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में, हुआ रोके निःशुल्क प्रशिक्षण देवल गेला कि उकर में कोनो काचा मन देवे पड़ल, कैसे का कर ली?
2: नहीं, आदिवासी के लिए उकर में ढीबा कच्चा करे एक कचिया नहीं लगेला, 1 रुपया नहीं लगेला। खाली आवे जाए कर भाड़ा लगी, हुआ रहे खाए पिए सारा चीज व्यवस्था है, साथ साथ में झूला भी ड्रेस भी मिलता हूँ।
1: अच्छा, रहे खाए पिए पिंधे कोढ़े सबका फ्री?
2: सब फ्री,
1: अरे वाह।
2: निःशुल्क।
1: और का का चीज कर प्रशिक्षण? जैसे रोड़े तो बागवानी कर ले ली, और किसान मन और भी ले सके नौकर में प्रशिक्षण?
2: हाँ, और भी ले सखाए नौकर में बहुत तरह कर ट्रेनिंग है उकर में। अगर कहाल जाए कि खेती बाड़ी में बागवानी होला, खेती बाड़ी और उकर बाद में फूल प्रशिक्षण, फूल उत्पादन कर, उकर बाद में इन्हें
1: मधुमक्खी पालन,
2: मधुमक्खी मुर्गी पालन, गाय पालन, खुखड़ी जे की के
1: मशरूम
2: मशरूम उत्पादन,
1: का?
2: बहुत तरह कर, और बीज उत्पादन बहुत तरह कर होवे लोकर, तरह तरह कर प्रशिक्षण, होल्डिंग होलाक, और जे सुअर मने पोसे खाए, छगरी पोसे खाए, तो वहाँ किसान के एग्रीकल्चर में भी बात करके, बिरसे एग्रीकल्चर में बात करके हुआ भी प्रशिक्षण दिवाए ना, हुआ
1: बहुत बढ़िया
2: प्रयास कर थू ना हुआ भी
1: माने निःशुल्क प्रशिक्षण लो रहे हुआ से लेके आली और बागवानी शुरू कर ली।
2: बागवानी कर साथ साथ में खेती बाड़ी भी दोनों करे लगी।
1: बागवानी में रोड कितना ठाव में रोड बागवानी कही?
2: बागवानी हमारे खाने 1 एकड़ में है, आम होलाक, लीची होलाक, अमरूद होलाक, फलदार में बहुत तरह कर लगाल है।
1: तो एखन तक पौधा कितना तैयार हुआ है, कितना दिन पहले रोई रही?
2: वो फल

0: आवे शुरू हो गए लगसा।
1: अच्छा
0: लीची में भी, आम में भी, अमरूद में भी, सब पौधा में फल आवे शुरू
1: बेच थी रो रे
0: बेचे तखन तैयार नहीं हुई, इससे लेखन ओके नी तुड़ी खन नहीं शुरू हुई है।
1: अच्छा, और पिछला जो सीजन रहे उकर में बेच रही?
0: हाँ उकर में बेच रही, उकर में
1: कितना फायदा उकर से हुई रहे?
0: उकर में करबर करबन 60 से 65 हजार। बहुत ओलावृष्टि सब भी आवेला तो आधा के नुकसान पहुँचाला। दूसर बात है कि कीड़ा मकोड़ा लगेला उकरों में हूँ थोड़ा बहुत नुकसान होएला, तो से चलते 50 हजार कर मोटा मोटी बीज रहे होंगे। उकर अलावे खेती बाड़ी भी है,
1: उकर से भी फायदा?
0: हाँ उकर से भी फायदा होएला।
1: तो बागवानी कर जब शुरुआत कर रही तो पौधा मन कहाँ से लाइन रही?
0: पौधा मने रामकृष्ण मिशन से ही।
1: अच्छा,
0: से भेटाए रहे
1: तो उकर से पैसा लाग रहे? उकर में
0: नहीं पैसा ऐसा नहीं लाग रहे,
1: निशुल्क
0: निशुल्क उकर में कुछ उकर में उकर साथ साथ में खाद होलक करान खली सब भी उन्हें से निशुल्क मिल।
1: बहुत बढ़िया है, प्रशिक्षण भी रो रहे बेगर कचिया कर ले ली। उकर बाद रोड के जब बागवानी शुरू करे कर रहे से बेरा उड़ के पौधा भी निशुल्क मिलक और खाद उद भी मिल गया।
0: खाद उद भी मिललक मोर खेत भर सिर्फ सारा चीज से मिललक।
1: आ तो देख रहे कैसे करे खोला जब पौधा तैयार हो गलक और जब फल आवे कर समय रहेला चाहे फल बेचे कर बेरा होला तो पूरा बागवानी कर देख रेख रोड मन कैसे करेला?
0: उके तिरपी अगर मांजर उंजर आवे आवत है तो उकर में कीड़ा मकोड़ा फिर और पटाक झटाक के सब के थोड़ा बहुत देख रेख करे पड़ौला।
1: खाद उद देते रह?
0: खाद उद देते रहिला, गोबर खाद सिंचाई उचाई होते रहेला उकर में।
1: और कहे ना कि पौधा जब तैयार हो जाए है तब भी उकर में कोड़ा उड़ा बीच बीच?
0: हाँ कोड़ा उड़ा कर के किनार किनार पौधा कर किनार किनार उकर में गोबर खाद दे के सिंचाई भी करा जाएला।
1: एखन तो आम का सीजन भी है और भरखर एखन बाजार में चढ़त भी है, रोट ही ना कौन कौन किस्म कर आम बा रोई रोई?
0: हमारे ठीना एखन आम कर वरायटी है लंगड़ा दशहरा और इखन और भी आम है वरायटी खान ये दिन लगा थी इखन।
1: और लीची मन भी?
0: हाँ लीची मन है।
1: कैसा नबरी फार कैसा धे रहे?
0: फार तो अच्छा ही रहे लेकिन बात रह गया कि कर में कि बेमौसम जो बारिश पत्थर गिर के नुकसान पहुंचा थे कभी किसान के। हाँ किसान के कभी तो फायदा भी है कभी तो घाटा भी है कभी मुनाफा भी होला।
1: हाँ संघर्ष करके तेउ में किसान मन बड़ा जीवट है और आगे अपन खेती बाड़ी करते जाते हैं और ओरे मन भी बड़ा जीवट ही लागल है उकर में।
0: दिन भर लागल रही लेकर मैं का करूँ का नहीं हुआ आदमी से बचाए पड़े घेरा उरा तो नहीं कह रही खुले ठाव में है उन्हें खेतियों बाड़ी उधरों भी देखना गरु छगरी है उके भी चराए ना तो मतलब उके नहीं दिखाती तो खेतियों को बड़ा नुकसान कर दी।
1: गर्मी कर दिन में देखो खेदा छोड़ देवे ना जानवर मन के इकर से तो बहुत भारी दिक्कत है। तो कैसा ना और किसान मन अगल बगल में खेती नहीं करे ना करो तब तो खेदा में दिक्कत होबे करी
0: कारा ना लेकिन कम मात्रा में कराने वो मन जगह पानी करो तो ना समुचित उपलब्ध नहीं है।
1: अच्छा
0: जे चलते जेकर चलते वो मने सिर्फ खाए पीले थोड़ा बहुत लगाए ना सब्जी खाए ले सब्जी ना घाटे खाली बाजार से नहीं लेना इस तरह कर।
1: तो रोटी ना पानी का साधन है?
0: हम ठीक नहीं खाने कुआं सदा बाहर कुआं के खाने हूँ गर्मी में अगर करब तो हमके गर्मी भी नहीं खत्म होएला।
1: अच्छा मने अगर जिंदा कुआं?
0: हाँ जिंदा कुआं है और अब तो पटाक उटाक में हूँ टेंशन नहीं होए लागे तो इन्हें करेंट के जुड़ू तो उन्हें डीजल डालू तो पेट्रोल डालू तो गिरीह डालू लेकिन अब बटन लगा ली और बात खेत में पानी पहुँच गया। सौर ऊर्जा जलित कर माध्यम से ही
1: वाला लगा है।
0: हाँ हाँ सौर ऊर्जा
1: उकर में तब तो उकर में बिजली कर भी बचत हो।
0: हाँ बिजली कर भी बचत हुआ थे और फिर इन्हें क्या कहूँ कि तार उर जोड़ा वगैरह इलेक्ट्रॉनिक से अति करा थी उकर में तो घटना भी हुई सकेला मतलब कि कभी उन्हें करेंट लग गई तो उन्हें धरी तो इकर में कुछ घटना कर बाते नहीं एकदम बटन चिपो और खेत पहुँच जाए पानी।
1: बहुत बढ़िया बुधराम जी, बड़ा बेस लागत थे रोसे बतियाए के और मन करत थे रोसे गोठियाए बतियाए कर लेकिन अब बेरा कहत थे रोर से विदा ले हमरे मन। लेकिन जाते जाते रोरे का संदेश देवे खोजिले हमरे मन कर किसान भाई बहन?
0: हम जाते जाते किसान के ये संदेश देवब उठा जागा जब तक लक्ष्य प्राप्ति तक रुका मत जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान यह हम किसान मन के संदेश देवे चाहिए।
1: बहुत बढ़िया कितना बेस बात करो रे बता ली और ये तो विवेकानंद वाला बात करो रे बता ली भाई कि एकदम उठ के हमरे मन के जागे खाए और तब तक जागे खाए जब तक हमरे मन के सफलता नहीं भेटाए जाते नहीं। बुधराम भाई रोरे आली हमरे मन कर कार्यक्रम से जुड़ ली और बड़ा बढ़िया से अपन बारे में जानकारी दे ली खेती बाड़ी कर बारे में जानकारी दे ली रोर के बहुत बहुत धन्यवाद लगे तब जोहार
0: जोहार।

0: तो भाई आज कर किसान रहे बुधराम टोपो जी की बागवानी कर रहे और इकर से हमरे कर संगी अरविंद कुमार मिश्रा गोठियाल है। तो भाई बहन ने कृषि संग आज कर किसान होने कर बेरा सिरा थे कहे चाहते कि कार्यक्रम का प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।
0: तो तनी देर में सुनब हमारे कर कार्यक्रम हमारे दुनिया कहीं मच जाओ।

0: स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो।
1: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के एक दम फिर से मनीष भाई
0: और मनोज भाई कर
1: जोहार।
0: और देखो मनीष भाई, आजकल युग देखब तो जितना भी कहीं भी देखब नहीं तो डिजिटल कर युग है। आजकल के शिक्षा हो, खेती बाड़ी हो, कहीं भी देखब तो हमेशा डिजिटल का प्रयोग होते हैं। तो हमारे मन के खास करके डिजिटल कर माध्यम से शिक्षा में लेवे के चाहिए। लेकिन लेकिन हमारे कर जो भाई बहन है नहीं, सब गाँव घर का रहे वाला है के उमर लेकर तनी सन दिक्कत हो जाए, चूंकि टेक्निकल बात है के डिजिटल बात है के, तो गाँव घर में नहीं रहे तो मोल तनी मन समस्या आ जाए है कि नहीं
1: एकदम। देखू डिजिटल कर बात कहती तो गांव घर में देखू जे नेटवर्क है उकरो समस्या रहेला, काले कि गांव घर में जंगल झाड़ में कहाँ जग नेटवर्क भेटाई नहीं, और नेटवर्क कर बिना तो डिजिटल शिक्षा अधूरा है।
0: देखो नहीं कोविड बेरा जे हमारे मन जो पढ़ाई लिखाई करते रहे, चाहे स्कूल में पढ़ाते रहें, सब मोबाइल कर माध्यम से पढ़ते रहें, लेकिन से बेरा भी ग्रामीण क्षेत्र में कहब नहीं तो बहुत सा 6 महीने नहीं पढ़ पारे। कारण है कि मोबाइल नहीं रहे और संगे संगे नेटवर्क का चक्कर रहे, और ऐसा नहीं कि आजकल रिचार्ज का चक्कर भी हो जाए तो बहुत जगह रिचार्जो नहीं रहे, तो उसके चलते हमको लगा था कि गाँव घरोया मन में तनी मनी दिक्कत हो। लेकिन हमारे मन की चुनौती है कि क्या हमारे मन के स्वीकार करे के है, चूँकि आजकल देखो डिजिटल का जमाना है कि डिजिटल कर संगे अगर हमरो नहीं जुड़ब तो कैसे आगे बढ़ब है कि नहीं।
1: एकदम देखू डिजिटल जे शिक्षा है वो चुनौती तो है, लेकिन गांव घर कर छुआ मन डिजिटल चीज में कोनो तरी से कम न खाए के माने खोई, काले की सुविधा कर कमी है लेकिन उनकर बुद्धि कम है ऐसा नहीं कहे के।
0: सही बात है, सही
1: और ऐसा न खे, काले की गाँव घर कर छुआ मन पूरा गोटा घूमत है पूरा देश में विदेश में, तो मन जग सुविधा कर कमी है, सुविधा रहे वो मन कम केकरो से न खाए।
0: और देखो ना भाई आजकल कहब तो कहीं भी कहब तो 6 मन कहब चाहे बड़ मन कहब तो नशा दानी आजकल देखब तो बहुत कुछ जात हैं और उकर से बर्बाद हो जाते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: तो भाई देखो हमारे कर जो संगी है, जो गायक हैं, जो इग्नेश कुमार है, वो शिक्षा के माध्यम से हमारे मन के एक शिक्षा कर गीत भी सुनाते हैं, जेकर में कहते हैं कि नशा मत करो और आगे बढ़ो।
1: चलो तभी गीत के सुनीला और सीखीला कि का कहत हैं वो।

0: सही बात है भाई बहन, हमारे मन के नशा नहीं करेक चाहिए। अगर हमारे के नशा करेक है तो पढ़ाई में करेक है, कोनो काम में करेक है, जेकर से हमारे मन के कोनो फायदा हो, है कि नहीं।
1: एकदम
0: जान लो भाई, पहले जमाना में नुक्कड़ सभा मन होत रहे, नाटक मन होत रहे, जेकर माध्यम से शिक्षा देवल जात रहे कि भाई नशा करेक न खे, पढ़ाई लिखाई
1: पढ़ाई
0: करेक
1: लिखाई
0: रखे।
1: करे के।
0: से बीरा में आदमी मन सब सुनत रहे और समझत रहे। आजकल तनी मनी नहीं समझत है, नहीं सुनत है। तो हम यह कहे चाहती कि भाई देखो, पढ़ाई लिखाई कर नशा करो, कोनो काम करे कर नशा करो, और बाकी जो नशा है जेकर से बुद्धि भ्रष्ट हो जाला, जेकर से आगे का रास्ता नहीं भेटाएला, उसन हमारे मन के करेक न खे और बढ़िया से आगे बढ़े है और चले के है कि नहीं।
1: एकदम
0: तो भाई इकर बाद अब का जुगाड़ है बताओ तो। नहीं
1: इकर बाद एगो चलो खोरठा लोकगीत है सुकुमार और संगी मनकर गावल।
0: चलो भाई देखो, आज हमारे मन सुनत ही पसंद कर।

0: सचमुच में भाई बहन देखो, मायकर ठाँव के नहीं लेख सकबे और मायकर जैसन जगह है नहीं कि हम कि नहीं लागल कि दुनिया में कोई ऐसा ठाँव है जहाँ भेटे है कि
1: एकदम माय कर
0: मायकर
1: गोदी में पूरा
0: सब
1: सब
0: कुछ
1: सुख कर
0: बात है।
1: प्राप्ति हो जाए का।
0: और माय सबसे पहला शिक्षा भी होएला, तो मायकर तो खैर बात ही नखे। तो एखन हमारे मन के खोठा
1: सुकुमार
0: में सुकुमार गीतकर माध्यम से सुना ले कि मायकर गुणगान किसन कर ले है कि नहीं।
1: हाँ
0: तो भाई अब एकर बाद बेरा है कुरमाली भाषा कर और हमरे के गीत कर माध्यम से संदेश भी देवत हैं जनक सिंह महतो और उनकर संगी मन। चलो सुनीला कुरमाली में।

0: जनक से मुंडा और संगी मिलकर गावल के तखन हमरे सुनली कुरमाली में, और संगी साथी मन भाई बहिमन अब बेरा है एगो अंतिम गीत कर आज कर पसंद कर जे गीत है उकर में हमरे मन सुनब पंच परगनिया में। तो कबाई
1: तो
0: किए हैं
1: इके गावत हैं राजेंद्र प्रसाद गोप और संगीमन।
0: चलो तो सुनीला।

0: तो भाई एक खाना मेरे बंद गीत कर माध्यम से वंदना सुनी सुन ली पंच परगनिया में राजेंद्र कुमार गोपर संगी मनकर गावल गीत एकरे संग आइज कर हमार दुनिया कर पसंद कर लो गीत के बेरासी रात है। तो कहे के चाहती कि भाई मस्त रहो स्वस्थ रहो और खुश रहो रोर मन का संगी मनोजर
1: मनीष भाई के देव विदा
0: जोहार।
1: जोहार।

शो तो आप सुन रहे थे हमारी दुनिया, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की थी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों से पहले सुनते हैं कुछ संदेश।

0: का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की घोषणा। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए लॉन्च किया नया वैज्ञानिक प्रारूप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पूर्वी क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले रेलवे जीएम। राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरों को बताया बेअसर। निवेश और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। और राज्य में अगले 7 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल बोकारो और धनबाद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में देश को नक्सल मुक्त घोषित किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से पीड़ित रहे क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए नए वैज्ञानिक प्रारूप लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत मुक्त हुए इलाकों में शिक्षा, बैंकिंग और रोजगार से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
2: सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और चौथी तिथि 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरी में क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा

0: सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना और दाल तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर छोटे खेतों को लाभदायक बनाना है।
1: हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस है कृषि की और 5 राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कृषि मंत्रीगण, कृषि से संबंधित पूरे वरिष्ठ अधिकारीगण भुवनेश्वर में बैठेंगे। हमारा लक्ष्य है भारत के 140 करोड़ जनता के लिए कभी खाद्यान्न की कमी ना हो, अन्न के भंडार हम भरपूर करें और अन्न उत्पादित करने वाला किसान अन्नदाता नहीं जीवन दाता है, उसको सुखी कर पाए, उसकी आय बढ़ा पाए।
0: रांची के लोक भवन में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने रांची से मुंबई के लिए प्रतिदिन रेल सेवा और नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रांची लखनऊ रेल सेवा को भी शीघ्र प्रारंभ करने का अनुरोध किया। दूसरी ओर महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन और रांची रेल मंडल के DRM करुणानिधि सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस बैठक में राज्य में यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ करने और लंबित रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में CII झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। CII स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष दिल्लू पारिख और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष डीबी सुंदर रमन ने दावोस आर्थिक मंच 2026 में झारखंड को मिले मजबूत निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग की इच्छा जताई। इस बीच रांची में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने संवाददाता सम्मेलन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्राओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पेन, स्वीडन और दावोस दौरों को कई महीने बीत चुके हैं लेकिन राज्य में एक भी कंपनी ने निवेश नहीं किया है।
2: 1,30,000 करोड़ के निवेश की गारंटी लेकर आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल। निवेश में एक वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वीडन और स्पेन गए, एक वर्ष बीत गए, डावोस गए भी कई महीने बीत गए, एक रुपए का निवेश है जो जमीन पर नहीं दिख रहा। अब हमें लगता है हेमंत सरकार की टूर एंड ट्रैवल पॉलिसी से यहाँ के युवाओं को न तो नौकरी मिलने वाली है न उनका कोई फायदा होने वाला है।
0: उन्होंने कहा कि दावोस यात्रा के बाद झारखंड को AI और डेटा साइंस का हब बनाने का दावा किया गया था जो जमीन पर विफल रहा। भाजपा ने इन यात्राओं के परिणामों पर श्वेत पत्र की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और चुनाव आयोग के SIR अभियान को लेकर रांची में आज प्रेस वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया। वहीं विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोहराई।
3: जाति जनगणना केवल काउंटिंग नहीं है, वह समाज का एक्सरे है जो बताएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी विकास में किस जाति, किस समूह के लोग कितनी दूरी तय किया है विकास में, उनकी भागीदारी कितनी रही है सरकारी ऑफिसेस में या फिर अन्य कामों में। तमाम चीजों की जानकारियां जुटानी चाहिए और फिर उस मापदंड को सामने लाके आगे विकास का मॉडल तय करना चाहिए।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी से जुड़े अपने पुराने आदेश में बदलाव की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: रांची यातायात पुलिस ने पुलिस स्टूडेंट संवाद श्रृंखला के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मनन विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमित उपयोग तथा ट्रैफिक सिग्नल के पालन के प्रति जागरूक किया। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2026 में जनवरी से अब तक 27 मामले दर्ज कर 63 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक कुल 706 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
5: वर्ष 2026 जनवरी से लेकर अब तक कुल 27 मामले दर्ज किए जिसमें 63 प्राथमिकी अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और न केवल जेल भेजा गया बल्कि इनके अनुसंधान को लगातार मेरे स्तर पर और हमारी टीम के द्वारा इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है सो दैट कि इनके बेल वगैरह और इनकी डायरीज इतनी स्ट्रांग हो, प्रोसिक्यूशन इतना मजबूत हो कि इनको सजा हम लोग करा पाए और ये कार्रवाई और तेजी से और मजबूती के साथ आगे जारी रहेगी।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले 7 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 50.3 मिलीमीटर बारिश सिमडेगा के ठेठई टांगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बोकारो, धनबाद में ऑरेंज अलर्ट जबकि रांची सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 23 मई को रांची, हजारीबाग और चतरा समेत 7 जिलों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी है। रांची के साउथ रेलवे कॉलोनी मैदान में 22 मई से विशेष ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का आयोजन होगा। रेलवे यूथ स्पोर्ट्स अकादमी के इस शिविर में बालक बालिकाओं को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सिखाई जाएगी। बीसीसीआई के सीनियर वीडियो एनालिस्ट चंद्रदेव सिंह के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों का वीडियो एनालिसिस के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की घोषणा। पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए लॉन्च किया नया वैज्ञानिक प्रारूप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पूर्व क्षेत्रीय कृषि कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिले रेलवे जीएम। राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं को मजबूत करने और विभिन्न रेल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरों को बताया बेअसर। निवेश और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। और राज्य में अगले 7 दिनों तक बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। कल बोकारो और धनबाद में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस द्वारा नक्सली एवं उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में छिपादोहर थाना क्षेत्र के कुरुमखेता जंगल से पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में मनोज लोहरा एवं महादेव सिंह शामिल हैं, जिनकी निशानदेही पर एक AK-47 राइफल समेत 3 हथियार एवं गोलियां बरामद की गई है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस क्रम में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो है महादेव सिंह और मनोज लोहरा। उनके पास से JJMP के जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उनमें एक AK-47 और मैगजीन के साथ और 88 राउंड गोली के साथ और दो SLR राइफल कुल 230 राउंड गोलियों के साथ, इसके साथ वॉकी टॉकी, पाउच, मैगजीन इत्यादि अन्य सामान भी इसमें जब्त किए गए हैं।
1: लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में आजसू पार्टी का प्रमंडल स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ताओं ने झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर विरोध जताया। मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि
3: हमारे युवा इकाई के लतेहार, पलामू और गढ़वा इकाई के जो प्रखंड स्तर के जो प्रभारी हैं उनके साथ आज संयुक्त एक बैठक थी और ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह था और आने वाले कार्यक्रम को किस रूप से आने वाली राजनीतिक चुनौती, इस राज्य के गठन के उद्देश्य और आगे भविष्य में हम किस रूप से संगठन को और धारदार बनाएंगे, इस संदर्भ में आज चर्चाएं हुई है।
1: लातेहार जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला प्रशासन अफीम की खेती एवं मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन सभी संदिग्ध जमीनों का सत्यापन करा रहा है जहां अफीम की खेती होती है। इसके लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए गए हैं। लातेहार जिले में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों एवं उग्रवादियों के परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समस्याओं से जुड़े 59 आवेदन भी आए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
4: नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी के अंतर्गत लातेहार जिला में कुल 51 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। आसपास के जिलों से भी लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्र में हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम किया पिछले 4-5 दिनों में। आज इसका आखिरी चरण है जो लातेहार में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। कुल 16 आत्मसमर्पित नक्सली और उनके परिजन यहाँ पर आए हैं। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जितने भी देय लाभ हैं उनके बारे में इनको अवगत कराना।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में SIR के नाम पर वैध वोटरों का नाम काटे जाने की प्रक्रिया का विरोध किया गया। ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए बूथ लेवल एजेंट एवं 10 सदस्यीय कमेटी बनाने की चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ साहदेव ने कहा कि
5: झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा आज जो बैठक रखी गई है निश्चित रूप से SIR से संबंधित मेन एजेंडा हमारा और उस समिति का पुनर्गठन है। हम लोग माटी को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, बूथों पे मुस्तैदी के साथ खड़े मिलेंगे और हमारा जो VLA है वह VLO के समकक्ष चलाते हुए वैसे मतदाताओं को एक तरीके से सहारा प्रदान करेंगे जिनको डॉक्यूमेंट्स के अभाव में या बहुत सारा चीज को बोल करके उनका नाम काट दिया जा रहा है।
1: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
0: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोता तो आप सुन रहे थे जिले में आजकल, और अब सुनते हैं आदिवासी अखड़ा। खड़िया भाषा में प्रस्तुत करता है प्रदीप कुमार।

0: आम्पी झाड़ी आदिवासी अखड़ा खड़िया लांग ओंडोर आयो आपा कुलम रो कुलम डाई किते इन सरोज क्रिकेटरो
1: राय मुलम डुंग डुंग या जोहार
0: मुसा मांग तो है के अन्य खड़िया लांग बुंग कायम ओंडोर ना बारू नेडा ला आय पे कायम ओंडोर तेनिंग तमा आधुनिक नेडा है के मोबाइल जमाना है के रो मोबाइल इको चाड़ो या जीनिस जो है के उकड़ा हाँ उकड़ा महत्व ते आनिंग ते कोंगना है के उम बहुनताई दीदी जितना जरूरत ई होबनेगा होकड़ा व्यवहार करायना चाही रो जुगाई व्यवहार करायना से होजे हाइन जो हाइन
1: का हुई ना हाँ तांग जो आनिंग उकड़ा व्यवहार करायना बारूडा उनिंग सोईते है नी उनु एवो ना बहना कौन कौन कुंडो किते मोबाइल तेर गोते नी कुंडो अपन इच्छा बुंग अनुसार मोबाइल योते की रो होजेगा कुंडो की गलत आदत बोने का चलते है नी वो आदत सब त्रुटि

0: गा गलताई कुंडू किया स्वास्थ्य जो उकड़ा प्रभाव पड़े था लुतूर मन ते जो मोबाइल या प्रभाव पड़े था उजे लेबुते बुझी ना उमनिंग पालते
1: अगर कुड़ू की अस्वस्थ बायना आई आनिंग ते
0: हाँ
1: ला आनिंग आयोपा किते इकुट उघय करेना आई उ आदत ते सुधरेना हुई ना है
0: हाँ
1: नहीं
0: हाँ सुधराना कुछ आडो गई
1: चाडो गई उकड़ा थों धीरम धीरम मोबाइल ते कम तेर ना हुई ना
0: हाँ
1: उम बहनता है
0: हाँ
1: होकड़ा ठाणो ते जहाँ होडम जीनिस की बुंग व्यस्त उन्ना हुई ना ला हो की अध्यान मोबाइल ती
0: मोबाइल
1: ते
0: ते
1: हटे ना
0: हटे ना हाँ
1: धीरम धीरम हो की दिनचर्या ते जो बदली ना चाहिए खुद आयो आपा की ते जो मोबाइल या प्रयोग कम कराए ना चाहिए
0: हाँ जरूरत अनुसार भी
1: जरूरत अनुसार भी
0: करना चाहिए
1: जहाँ होडम होडम एबो की बुंग हो की ते व्यस्त उन्ना है के जहाँ आलुंग दुरंग कराए कौन जो अनिंग कुड़ू की ते मोबाइल ते डिसा उन्ना
0: दिवसाना
1: पालते नहीं
0: सोतो
1: दीदी
0: गा हाँ हाँ
1: अमरा विचार बताए बार से
0: हाँ उकड़ा सोरी आनिंग आयो अपा कि अगर मोबाइल या कम उपयोग करे ना करे कौन मोइन आदर्श बोने ना पालते नहीं है नहीं इना नो कुंडो की अपन आयो अपा या जुगे नकल करे
1: नकल कराए देगी
0: हाँ
1: हालांकि कुंडू आयो आप या सूर्य आवता आयो आप जे कराएगी हो
0: हो
1: जाएगा हो
0: जाएगा
1: की
0: कुंडो की जो
1: नकल कराएगी
0: हाँ कोनन कुंडो कितने जुग है मोबाइल उपयोग ना सहे हो कि या शारीरिक मानसिक रो भावनात्मक विकास हिंते जो इकुट जुग है प्रभाव बुरा प्रभाव पड़ेता है नहीं
1: इकुट पढ़े ना
0: हाँ उकार मुंग ओटी जो जैसन लक्षण जहाँ गामना बुंग देरी मतलब जहाँ कायम ते जो जल्दी
1: गामना उम्पालता
0: उम्पालता हाँ जैसे
1: तो जीतीपन जैसे जहाँ इन गामिंग गामिंग लेकिन हो जे इन मन ते सोचाए ते नहीं लेकिन तोमट बुंग ओ इना
0: वो
1: मिंग पाले
0: इनाम
1: ला उस
0: पाल
1: मोबाइल अगा प्रभाव
0: प्रॉब्लम
1: चलते उभाई आई
0: हाँ
1: होई ना जिदीपन मोड़े आ कमजोर हुई ना रो लिमिट उम लेना उघे उघे का रकम आ समस्या
0: हो गया
1: होईता चाहे
0: हाँ
1: हुई ना उकड़ा सॉरी बोको कोसू रो दिमाग ते जुगे असर हुई ते मोबाइल आ है
0: हाँ
1: नहीं
0: हाँ
1: ला मोबाइल ते एक ठो ऊजो कायम है इनो मोबाइल रेडिएशन मुता
0: हाँ
1: होकर सुबह स्वस्थ आथों जुगेगा
0: हानिकारक
1: हानिकारक है के
0: हाँ ला आए पे ओडो होडम कायम जो ओडो तेनी कायम तानी है नहीं सरज
1: हाँ
0: कायम है के जन धन योजना
1: अच्छा
0: हाँ प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 ईस्वी ते आपसी ढूमसी को है नहीं वो योजना ते माइन सोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यार 15 अगस्त 2014 ईस्वी ते लाल किला हिंते जे दिनु स्वतंत्रता दिवस आओ कि से दिनु का घोषणा करे
1: करे
0: सिकुई
1: सीखो किया हाँ
0: हाँ वो राष्ट्रीय योजना या मूल उद्देश्य आई नो देश या हर परिवार ते बैंकिंग सुविधा बुंग जोड़े ना
1: जोड़े ना
0: वित्तीय सुविधा ते सुनिश्चित करे ना वो स्कीम ते जोड़े ना लोडो खाता धारी ते 6 महीना पूरा होना तय 5,000 रुपया उधरा ते डोमता है ना
1: डमता
0: हाँ वो योजना ते शून्य बैलेंस यानी कि आधी आते केचिया मावना लाजो
1: खाता
0: खाता खोले ना पालते है
1: पालते
0: नहीं
1: की
0: और रख रखाव या इजो शुल्क यानी कि केचिया उमाई डोबते
1: उमाई रोकती
0: वो खाता धारक या आधार कार्ड में जोड़े ना चाडो आई है नहीं
1: अच्छा पे उते गामडम ता नो 6 महीना बोते बारूद सुचारू रूप से संचालन हुई तई
0: हाँ
1: ला 10,000 बोते ओवर ड्राफ्ट या सुविधा तेर डोमता
0: हाँ
1: उ योजना या उद्देश्य कमजोर ओडो कम आय वर्ग किते किसिम किसिम या वित्तीय सेवा कराए डोमता उम बहुत है
0: हाँ
1: जैसन मूल बचत बैंक खाता ते उन्ना
0: हाँ
1: आवश्यकता अनुसार ऋण बैंक खाता ते उन्ना तेरना
0: हाँ
1: सुविधा तेरसी
0: हाँ
1: बीमा ओडो पेंशन तेरना सुनिश्चित कराएना उ सब सहायता कुईता
0: हाँ
1: ओडो उ योजना ते है नहीं दीदी
0: हाँ
1: 10 वर्ष तय मतलब 10 बरिस तय जुगह उमेर आ
0: हाँ
1: जहाँ गा भारतीय नागरिक खाता खोलाए ना
0: पालते
1: पालते में
0: हाँ ला कोई
1: हाँ
0: कुछ बारू कायम आई ला उ जन धन योजना खाता ते जे सेविंग अकाउंट गुड अपन मर्जी बैलेंस उन्ना पालते में है नहीं जैसे सेविंग अकाउंट ते आनिंग केतनो का उन्ना पालते नहीं हो गएगा उते जो उन्ना पालते
1: उन्ना पालते
0: हाँ
1: नहीं
0: मुदा मुई सात जो

0: कराई इन अम्बे अम्बे ते केवाईसी पूरा कराई ना हुई ना।
1: अच्छा हाँ उहे को साधारण बैंक ते जो केवाईसी
0: हाँ
1: जरूरत हुई तागा।
0: हाँ प्रधानमंत्री जन धन योजना ते खाता धारक एनएम केचिया जो 10,000 बहुत है केचिया वो इतना पालते वो
1: अच्छा
0: सुविधा जो आई। हाँ
1: अच्छा
0: वो योजना ते गोइना लोडो जो लाभ है खाता धारक बीमा आवता लागोने जा लोडो वो जे हर नोमिनी आवता हो करते 30,000 बहुत है जो केचिया कुईता
1: कोई तला आनिंग ते उ सुविधा किते कोंगना चाहिए रो उकड़ा फायदा
0: बेटो
1: बेबरोना
0: ना चाहिए।
1: चाहिए।
0: हाँ ला कायम को उमोंगना ला मुगमती आलोंग ओंडोर ना चाहिए है नहीं
1: हाँ
0: ला आए पे आलोंग ओंडोरे पे वो आलोंग ते आलोंग सीमा इग्नासियस क्रिकेटरो सांगोडोंग की।

0: आलों को इकुट बारु ला की सरो थे नी
1: हाँ दीदी
0: तामा बाखरी उन्डो ना बेराई बाखरी है के दारू ओडो पर्यावरण वो बाखरी ते बेहर किया उन्डो ते किया
1: वो बाखरी ते उन्डो ते किया सुमर वो बासिल बा किया
0: हाँ ला आए पे वो किया रा बाखरी ते उन्डो रे नी
2: आसे पासे रो उस लोगा सीमाना क्षेत्र बोताया वातावरण ते पर्यावरण गामडोम ता पर्यावरण ते किसी मा गैस ओडो होडोम जिनिस की मेतित आई माए उते सुबा मात्रा निश्चित आई हो निश्चित मात्रा गा पर्यावरण ते संतुलन बाय उनते मुदा निश्चित मात्रा ते कमी बेसी होइना से पर्यावरण संतुलन बगड़ेता याने कि वातावरण विषम होई गुटता होजेगा पर्यावरण कोडिल गामडमता पर्यावरण ते डा कोयो साड़ा उसलो किनिर किया निमी डेलता मुसगा दिनुते ऊ झाड़ी जिनिसा रक्षा बारू बो उम करायना से हो दिनु जो डिसा उम्बोड़ी नो मानवा सोरी झाड़ी जियोम बुई बुई जीव किया निमी जो उम आवना तमगा वैज्ञानिक विकास को लेबुते मोन मसीना पुर्जा बायगुटसी अपन विकास निमिबू मनवा जे कुछ गा कराईसी रो कराईते होकड़ा सोच डा असर पर्यावरण ते होइसी प्रकृति बूं एबो ना करने विज्ञान तमा मोन शराब बोने गुटसी विज्ञान विकास निमिबू प्रकृति का तुभलुंगते इकुट जुग है चोट तिरसी किनीर को आनिंग डा है के आनिंग मनवा जाई ता विकास किनीर तैगा आपसिप डोमसी किनीर वैज्ञानिक प्रभाव पर्यावरण ते संतुलित उनते उजे तांग आनिंग इरिप गुट सीनिंग पर्यावरण ते सुधम उन्ना थोंग दारू खुंटोवा होइना इकुट जरूरी आई दारू उन्ना होकड़ा देखभाल करायना उबरगा इकुट जरूरी आई मुस्निंग उघायने डा आओ की नो लेबू इघाय इघाय विकास गोझुंगते आंजोर ओमाय होघायगा किनीर झांकोरते चोट तेरना आपसिफ ओमाय रो इकुट जुघाय इघाय पालो ओमाय हिनघाय घा अंधा धुंध किनीर दारू खुंटोते डेज बुड़ाय ओमाय होकड़ा असर तमा सोच डा पर्यावरण ते ठोतै दियो दियो गा पर्यावरण कोडिल गा चोलतै उकड़ा असर तमा लेबू आतुप लुंगते होइताई एसांग ते राकाम कुसु होइताई ऊ सुप पर्यावरण संतुलन बगड़े ना कारण बुंग होइताई किनीर को एसांग संपत्ति है के इनानो उकड़ा सिरेगा पर्यावरण संरक्षण होइता अगर किनीर रक्षा होइना से पर्यावरण संतुलन बगड़े ना बरखा रानी रागम गोटना रो ऊ हरा भरा उसलो वीरान होइगोना ओडो उसलो एपलोंग धूड़ी रो सोरेगा सुंदर बोने गुटना उते जियम निमिया इजो उम्बांचेना आनिंग झारखंड लेबू को प्रकृति ते दाड़म लेबू है केनिंग तेवा जो दारू किनीरा मोरम ते उनिंग बुझेना लामते रो अपन स्वार्थ ते पूरा करायना घट अपन तीबुं दारू हराते हराकैत करायतेनिंग बुढ़ायतेनिंग पर्यावरण ते चोट तेरते निंग किनीर झांकोया बोंगना से डा उम्बोगा बराबर डेलताई उसलो ते डागा उम्ठूरताई बांधो बेड़ा गोजलो अंकल कोसोरताई माय ओमपायते डा उम्लेंगे ताई उसलोगा डा तूता पताल चोलकानताई एसांगते उन्ना थोंग डा उम्कुईताई उस पर्यावरण संतुलन बगड़े ना से होइताई ओडो पर्यावरण संतुलन इना बगड़ेताई दारू किनीर झांकोयते बुढ़ायना कारण बुंग होइताई दारू रो पर्यावरण संबंध को सृष्टि तैगा अटूट आई उकियारा संबंध ते अनिंग मनवा जाइत अलग करायना लामते निंग उकियारा अभाव बुंग प्रकृति अपूर्ण आई अनिंग ते उसलो ते बनचायना आई ला पर्यावरण संतुलन ते बारू बायना होइना प्रकृति का सूरी मनवाते बेहुदा एबो मेलायना होइना तामगा नेडाते आनिंग लेबु जाइत पर्यावरण अता कोना तेजो एनेम कुपडिल उनिंग मेलाइसी कोयो डा साड़ा उसलोगा किनीर झांकोय इडिप तोहनबो झाड़ी पर्यावरण हिस्सा है कहें ऊ सोपते साफ सुथरा स्वच्छ उन्ना मानवा ती तेगा आई हिना थोंग एसांग झाड़ी कोनोन महाते जाइडिम नाई पर्यावरण ते बारु बायना थोंग कोनोन महा सहयोग तेरना घाट मुगाम देना आई हर लेबुते कम से कम अपन जिंदगी ते 20 से 50 दारू ओन्ना गा चाही जुघाय से जुघाय दारू ओन्ना थोंग रो हो ओन ओन दारू आ संरक्षण करायना घाट लेबु किते प्रोत्साहित करायना आई दारू ओन्ना सरकारी प्रयास किते जन आंदोलन बायना कुर्निश करायना चाही दारू किनीरा लाभ एसांग ते इघाय होइता पर्यावरण ते दारू किनीर इघाय बारू बायते उनते होजे की उतुन्नाई लेबु किया मोझीते किनीर झांकोय या रो पर्यावरण मोरम ते उतुन्ना आई रो जागरूकता ओलना आई उघायबुंग एसांग असिरे दारू ओन्ना रो होकड़ा रक्षा करायना उबरगा होइना पालते पर्यावरण कोडिलते डिप्सा नाया सबसे महा रो सेवा उपाय किनीर झांको या दारू खुंटो वा रक्षा करायना रो तोनमे दारू खुंटो जुघाय से जुघाय ओन्ना गाहे के उघाय बुंग कोयो वा कुडिल काम होइना दारू किनीर सिरेगा उस लोगा डागा सोई तोबलुंग देना लोखाय अभाव काम होइना उकिया आवना से पर्यावरण संतुलन बारू होइना ला लेरांग जो अपन नेडा अनुसार गा देना पाले माए तमगा नेडा ते अनिंग यो तिकनिंग नो बरखा बारू वो होइता रांगा लाताई गिड़िंग जुघाय लाताई नेडा सिरे इजो होइना पालते पर्यावरण अनिंग अस्तित्व बुंग पोइडम आई अगर उक्काड़ सोप रोचपताय कोडिलना ला जियम मा अस्तित्व बोंग गोटना उजे नेडा या आवाव तेगा उनिंग रोकाय ला मुसनिंग कोडिला प्रलय देना रो सोप बोंग उथारना तामा अनिंग देश प्रधानमंत्री मोन बारु कायो मुतुन सी कियार न स्वच्छ भारत बायनिंग उकड़ा थोंग सुबह सहयोग जरूरी आई उघाय गाम कोन मोन कदम मुगम आंजोर सी कियार ला आय पे झाड़ी एसांग लेबु की मोन होई कोन पर्यावरण ते सुधम बायना कोर्निस कराए निंग रो प्रदूषण उनिंग फैलाए
1: बाखड़ी ओंडोर कोन इकुट बेस लाकी है नी दीदी
0: हाँ।
1: अनिया ओंडोर गाड़ की ते जो अगर ध्यान बो ओंडोरो की ला इकुट बारु कायम ते उतुनो की यार हाँ। वो होनते हैं
0: हाँ।
1: ला अनि अम पर्यावरण आ मोजी ते अनि आवता निंग अनि ते दारु ओन्ना रो पर्यावरण ते बारु बो बाइकन उन्ना चाहिए
0: इकुट चालू है सोतोगा
1: दारु किनीरा मोरम ते बोझीना कोर्निस करेनिंग अम्पेजो कराए पे पर्यावरण ते बायना रो बगड़ायना या जिम्मेदारी आनी लेबु किया तो भूंगतेगा आई ला आए पे आप आनी दारू होने नहीं
0: हाँ ला कायम कोई कुछ बारे ला की ला आए पे तामा आलोंग उन्होंने नहीं आलोंग आए है के रेजीना लकड़ा रो सांगोटों की

खूब मिलो, हंसकर दिल से मुस्कुराकर जियो। जीने वाले इसे कहते हैं, इसका नाम, आपका नाम, सबका नाम।

और आप कभी मत समझना दूर रहकर, पर मेरे आप बहुत करीब रहते हैं, पास रहते हैं। जब कभी मुस्कुराकर मिलते हैं तो यही अंदाजे बयां लगता है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं।

ये जो रीत है किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या किसी से पूछकर बनाई? मैं तो कहता हूं सबसे पाक ये दिल है जो सच ही बयां करता है।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनी गंधा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लेते हैं एक अल्प विराम, फिर हाजिर होते हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम रजनी गंधा में। वो दिल की आवाज जब निकलती है तो फिर ऐसे ऐसे नगमे आ जाते हैं सिर्फ आपके लिए। वो कहते हैं ना, आप न जाना कभी बेरुखी करके कि तड़प कर रह जाएगा आपका ये दीवाना।

वाकई साथियों, इस छोटे से जिंदगानी में अगर किसी को सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारा और आपका साथ यहीं तक। अगर कार्यक्रम थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक खत जरूर लिखें। द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भवन, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। रितेश करता है आपको नमस्कार।

0: साथियों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनी गंधा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी है अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग के लिए, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री पांच देशों के दौरे के अंतर्गत आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पांच नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। इन सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर इस शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हुई वार्ता के प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने वार्ता खत्म होने के बाद जानकारी साझा की, जिसके कुछ अंश हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। अंशु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस भारत नॉर्डिक समिट के महत्व को आप एक विशेषज्ञ के तौर पर कैसे आंकती हैं और आपके अनुसार इस समिट का सबसे अहम आउटकम क्या रहा?
2: सोनू जी, पहले तो जब हम इस नॉर्डिक क्षेत्र की ओर देखते हैं यूरोप के, तो ये तकनीक और व्यापार में सहयोग की दृष्टि से, ये प्रोफेशनल मोबिलिटी में सहयोग की दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यदि हम नॉर्वे को देखें तो उसे गेटवे टू आर्कटिक कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी जो मैरिटाइम पॉलिसी है उसको बहुत डायनामिक और लचीला बनाते हुए, जहां हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्षमता अर्जित की है, तो वहीं जब हम आर्कटिक रीजन की ओर देखते हैं तो वहां लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको कॉन्फर किया गया। थर्ड नॉर्डिक भारत समिट जो है उसमें उन्होंने शिरकत की है। यदि हम इस नॉर्डिक समिट को देखें जो भारत के साथ होता है, ये एक बहुपक्षीय ऐसा कूटनीतिक फोरम है जिसमें की नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भारत के साथ जुड़े हैं और ये मिल करके किस तरह से एक जो ऑप्टिक्स बेस्ड बायलेटरल रिलेशंस होते हैं उनको कैसे आउटकम बेस्ड, जो कि टेंजिबल आउटकम बेस्ड रिलेशंस है, उनकी ओर ले जाया जाए, इस पर सतत काम हो रहा है। तो यदि हम पिछले समिट्स को देखें तो 2018 में पहला समिट स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, किस तरह से कोविड के बाद हम एक इकोनॉमिक रिकवरी की ओर जाएं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को कैसे योगदान दिया जाए, इस पर बातचीत हुई थी। जब हम दूसरे समिट को देखते हैं जो 2022 में कोपेनहेगन में हुआ था, उसमें मैरिटाइम इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस था। और थर्ड समिट जो ओस्लो नॉर्वे में हुआ है, तो इसमें किस तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, सामुद्रिक जो अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कैसे सहयोग करें, एआई को लेकर के, फिर एक आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्वे के साथ अभी हमने ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की है।
1: अंशु जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आपने बात की है, तो आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें इसके बारे में क्या बताया, फिर चर्चा को जारी रखेंगे।
3: ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेस बढ़ाएंगे।
1: So, बहुत सारे बहुआयामी जो फैसले हुए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर और इनोवेशन को बढ़ावा देने को लेकर, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जब हमें बताया है, आप हमें बताएं कि किस तरह से ये एक सिनर्जिस्टिक है इन नॉर्डिक देशों की जो क्षमताएं हैं, जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भारत की विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाता है। आपको लगता है ये बहुत ही सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप?
2: बिल्कुल सोनू जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। यहाँ एक सिनर्जी है, एक सिंबायोटिक रिश्ता हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत के पास स्केल है, रिसर्च की क्षमताएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हैं, और जहां तक बात होती है सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन की, तो हमने पिछले 10-11 वर्षों में, मैंने आपको यही बताया कि हम पहले हमने मॉरिशस से सागर डॉक्ट्रिन हिंद महासागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के हम प्रणेता बने, हमने उसकी उद्घोषणा की, फिर हमने उसे महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, हिंद महासागर के सामुद्रिक क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़े हैं, अब हम आर्कटिक की ओर देख रहे हैं, और जब हम इन नॉर्डिक देशों को देखते हैं जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, तो हम जब इन देशों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इनके लिए आर्कटिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है यदि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र जो लेवल है, सामुद्रिक लेवल जो है वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसकी वजह से इनको खतरा है। और यहाँ पर भारत एक बहुत सशक्त साझेदार के, सहयोगी के रूप में इनके साथ में खड़ा है। तो इसीलिए जो फोकस है इस समिट का, वो इस प्रकार की रेजिलिएंट फ्यूचर रेडी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करना है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से आगे लेकर के जाना है जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमुखता दी जाए। तो इसमें सरकार भी और जो इंडस्ट्रीज साथ में जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के दोनों ही तरफ से ये बातचीत हुई है कि क्लीन ग्रोथ होनी चाहिए, क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो भारत और नॉर्वे ने इसीलिए कल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्घोष भी किया है। तो ग्रीन शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, किस तरह से बेहतर ओशन मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसमें फिर देखिए व्यापार भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, शिक्षा भी आ जाती है, को मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, एक बहुत बड़ा विस्तार का ये पूरा क्षेत्र है जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर भी रहे थे।
1: अंशु जी, जो आप विस्तार की बात कर रही है, ये एक लगातार निरंतर प्रयास है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हुआ है उसमें नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है, फिर इंडिया ईयू एफटीए हुआ उसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो की पार्टनर्स हैं, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये जो करार हुए हैं, इसके बारे में सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बताया।
3: अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन

0: यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार हैं। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
1: क्या लगता है आपको अंशु जी, ये जो स्वर्णिम युग की बात करी है, जो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की भी उन्होंने इसी संदर्भ में बात करी कि कैसे हम सब एक चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ हो पूरे विश्व में और मल्टीलैटरलिज्म हो, जिसकी वजह से हम सब नेचुरल पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम सभी इन वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के ऐसे युग में जहां विश्व में बहुत उथल पुथल चल रही है।
2: सोनू जी, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वैश्विक राजनीति में एक फ्लक्स का समय है, संकट का समय है। कोविड-19 की काली छाया से निकले थे तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, और यदि ये काफी नहीं था तो अभी पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, भारत लगातार इसीलिए रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, वैश्विक स्तर पर जो तमाम इंस्टीट्यूशन है उनमें रिफॉर्म की बात करता है, नियमों पर चलने की बात करता है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को कैसे हम और सशक्त कर सकते हैं, यूएन चार्टर को हम किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सशक्त बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि अलग अलग जो ये पश्चिम एशिया के और यूरोप के संकट है ये समाप्त हो। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम लगातार इस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई देखते हैं। तो ऐसे में जो ये नॉर्डिक के देश हैं, ये आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की या रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बात करें तो ये भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। ये वो देश है जो भारत के साथ लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की मांग करते हैं। यूएनएससी में भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप की बात हम करते हैं उसका समर्थन करते हैं, और भारत जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करने की बात हो रही है भारत की, उसमें भारत का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में एक मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलैटरलिज्म, इशू बेस्ड एंगेजमेंट की बात आती है जिसको भारत लगातार प्रमोट करता है, और नॉर्डिक के तमाम देश जो हैं सोनू जी, वो भारत का इसमें साथ देते हैं।
1: तो ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, इसके प्रति जो कमिटमेंट है नॉर्डिक देशों की, भारत की, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं प्रधानमंत्री ने, और एक और एस्पेक्ट है ट्रेड का, आपसी व्यापार का, अंशु जी उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत का, उसका पिछले 10 वर्षों में जो विस्तार हुआ है उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
2: बिल्कुल सोनू जी, और यहाँ पर भारत एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है, जिसको हम टेपा के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम एफ्टा देशों की बात करें तो इनमें आइसलैंड, लिंकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं, या नॉर्वे हमारा एक प्रमुख सहयोगी बन के उभरा, और बाकी के जो ये 3 सदस्य देश हैं इनके भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अभी हमारा जो ट्रेड है इन देशों के साथ वो $19 बिलियन से $20 बिलियन तक का होता है। तो इसको ये तमाम देश भारत के साथ मिलके 2030 तक $30 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, और इसमें एक किस प्रकार से $100 बिलियन का भारत में निवेश हो इसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, हम सशक्त हैं, हम सुरक्षित हैं। तो एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हम चाहते हैं हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो आवश्यक है, और वहीं इन देशों को भारत जैसे देश की आवश्यकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नॉर्वे के पास सबसे बड़ा यदि हम देखें पूरे विश्व में तो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, तो वहां ये एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हमारे लिए FDI बढ़ाने, और मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से नॉर्वे को भारत जैसे सहयोगी मिलने की दृष्टि से, प्रोफेशनल्स मिलने की दृष्टि से देखिए कितनी अच्छी सिम्बायोटिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। इसके अलावा भारत और फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि अभी गांधीनगर गुजरात में सितंबर 2026 में एक वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को दोनों मिलकर साथ में होस्ट करें। तो यदि व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो ये एक एफ्टा देशों के साथ और बायलेटरली भी लगातार भारत जो है वो मार्केट एक्सेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, सर्विसेज को, मोबिलिटी को लेकर के

0: संक्षेप में बताएं। जी
1: जी सोनू जी, देखिए पूरे विश्व की जो यूथ पॉपुलेशन है उसका 22% भारत के पास है, और जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने अपने यहाँ है वो तमाम निवेशक देशों के लिए अति आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि एफ्टा की आप दृष्टि से देखें, यूरोपियन यूनियन की दृष्टि से देखें, यूरोप के देशों की दृष्टि से देखें, ये भारत में निवेश करने में अपनी उत्सुकता को लगातार बढ़ा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं।
0: जी सो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। भारत को वहाँ की उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, उनको हमारी जो क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा बाजार प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अब इटली की ओर रवाना होंगे और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: श्रोतो, आप सुन रहे थे सुर्खियों में, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से थोड़ी देर में प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
5: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
4: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
5: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
5: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी

0: हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: That we will convert the current

0: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रूपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान।

0: कप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम

0: In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 213 for 2 in 18.4 overs against host Rajasthan Royals in Jaipur, when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: For rabid and dangerous stray dogs to protect human life, Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्था

0: गांव में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौकिफ है जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
0: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत के तईं अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ़ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा ताउन की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीर आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वज़ीर आज़म के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
2: वज़ीर आज़म पांच मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि ये दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली क़लीदी शराकतदारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तिजारत, सरमायाकारी और सनअती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकतदारियों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तिसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और ताउन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाहां हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुजाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा, जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर दाखला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा पांच बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।
3: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
1: इससे कबल मरकजी वजीर दाखला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला और सीनियर अहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के अपने तजुर्बात बताए और अपने हुनर को पेश करने के मौके के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तकारों और बुनकरों की मदद की जरूरत पर जोर दिया ताकि उनका रिवायती फन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो खुद कफील बन सकें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा माह होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदेही की गई थी उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। वजीर मौसूफ ने इस बात

पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी जब्तों के तहत एक महफूज, बिला रुकावट और किसी भी कमी के बगैर तरीके कार के तहत मुकम्मल होना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज जनूबी कोरिया के सियोल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दोतरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वो अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निमटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में आज मुनक्किदा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और तरक्की के तस्वुर के साथ काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मरतबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुबतला कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज और अवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अजदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है, जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा ना हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज जुमेरात को फाल्टा असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात से अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। जनाब खान ने एक बयान में कहा कि उनका यह फैसला खित्ते में अमन और तरक्की बनाने की गरज से लिया गया है और उन्होंने बीजेपी की क्यादत वाली नई सरकार की जानिब से फाल्टा के लिए ऐलान किए गए खसूसी पैकेज का खैर मकदम किया। एक बयान में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जहांगीर खान के नाम वापस लेने का फैसला उनका अपना निजी फैसला है और यह पार्टी का फैसला नहीं है। अब जबकि खान इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं तो अब मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दीबांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मुल्ला और सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी के दरमियान है। रूस ने तस्दीक की है कि भारत की सदारत में इस बरस नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी यूरी योशाकोव के हवाले से कहा कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम अरसे में जनाब पुतिन का भारत का ये दूसरा दौरा होगा। वो पिछली मरतबा 23वें भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे जो दिसंबर 2025 में हुई थी। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने जुमेरात तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जनूब मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में भी गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, क्राइकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की सरकारी वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिले के लिए एंट्रेंस इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में आईआईएमसी के हेडक्वार्टर्स में होगा। किसी भी मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर का इम्तिहान दे रहे तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोजा बैन अलाकवामी मैचों की आइंदा घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे और केएल राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल ओडीआई टीम के भी कप्तान रहेंगे जबकि सुरेश अय्यर नायब कप्तान बनाए गए हैं।
गेंदबाज

0: Manth Hunt.
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को एमएसएमई के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर एनपीए संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
2: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं 30% से ऊपर निर्यात में 48% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो। और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है, उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2,50,000 करोड़ रुपए का जो ECLGS है, इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
1: अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
2: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी एमएसएमई का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है। सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है। तो अब के समय में जेम के जरिए, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है, वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है, लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन एमएसएमई के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी, और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी, अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
1: शिशिर जी, भी आपने जेम की बात की तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर लें, एमएसएमई संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से एमएसएमई इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है, इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
2: आपने जो तीन खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TREDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि एमएसएमई जो एक लंबे

0: समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10ों की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़ी अपने उत्पाद में विविधता लाएं और ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी। इसका फायदा क्या है और ये जो आपने 3 खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है और इन एमएसएमई को वैश्विक मंच पर अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
1: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और एमएसएमई को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त है और आने वाले वर्ष का टारगेट यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलकर $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये आने वाले दिनों में अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
1: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से एमएसएमई दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
0: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर यह हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जीएसटी में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड एसएससी हैं। अब अगर आप प्री जीएसटी रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी, अब 1,60,00,000 है। और इस 1,60,00,000 में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। जीएसटी की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका जीएसटीएन है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा जीएसटीएन है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है,
1: आसानी होती है।
0: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीएसटी का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या है जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7-7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
1: तो ये मतलब कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले।
0: अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पर छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं, तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है
1: जी।
0: अगर आप एक महिला उद्यमी हैं तो स्टैंडअप की स्कीम है, जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40-45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
1: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है, डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं। उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
0: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का दो बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है और कोई आपके यहां आकर के ये नहीं कह सकता है कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से ये पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का
1: जी।
0: अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए? क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं? अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
1: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ न कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास हैं, जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
0: बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दें। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का। अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है, तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है। उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता है कि आप कौन है और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है। दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रेजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
1: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
0: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस तरह के प्रावधान किए गए, वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
0: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं। अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए मजबूत

0: उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला है। वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% एमएसएमई का हो चुका है।
1: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: मंथन।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से ही मीडियम वेव के 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम बैंड के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं गूंजे झारखंड स्वर यात्रा के 90 वर्ष पर आधारित ये कार्यक्रम है। वाचन स्वर है संध्या नीलिमा टोपनो का।

जोहार। गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आकाशवाणी ने अपनी स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपनी इस लंबी यात्रा में आकाशवाणी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक और संगीत विरासत को सहेजने में, विशेष रूप से देश के कोने कोने में बसे लोकगीतों को जन जन तक पहुंचाने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। आकाशवाणी और लोकगीतों का अटूट संबंध है। इसने स्थानीय कलाकारों को मंच दिया। विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों ने हमेशा स्थानीय कलाकारों, कवियों और लोक गायकों को खोजा और उन्हें प्रसारित किया। रेडियो ने हजारों दुर्लभ और विलुप्त होते लोकगीतों को अपनी ऑडियो लाइब्रेरी में सुरक्षित किया है। विभिन्न क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लोकगीतों का अपना अलग महत्व है। झारखंड में प्रमुख रूप से नागपुरी, खोरठा, मुंडारी, उरांव, खड़िया, संताली, पंच परगनिया, कुरमाली और हो आदि के लोकगीत गाए और सुने जाते हैं। लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से गाए और संरक्षित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य कृषि, प्रकृति और अपनी संस्कृति से जुड़ाव रहा है। हर विषय पर गीत गाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और साथ ही मनोरंजन भी होता है। ये गीत अलग अलग मौसम और त्योहारों पर गाए जाते हैं। झारखंड में नागपुरी भाषा के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख, जानकी देवी, दीनबंधु ठाकुर और शिवशंकर महली इत्यादि। इनके गाए लोकगीत लंबे समय से लोगों को जागरूक करने के साथ मनोरंजन कर रहे हैं। आइए सुने मधु मंसूरी और साथियों का गाया हुआ ये नागपुरी लोकगीत।

झारखंड में खोरठा भाषा भी बहुतायत में बोली और सुनी जाती है। इस भाषा में भी अनेक कलाकार हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं सुकुमार, रीता कुमारी, सोहित कुमार महतो, करुणा देवी इत्यादि। सुनिए ये गीत खोरठा भाषा में सुकुमार और साथियों का गाया हुआ। इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है।

उराव भाषा के कलाकार हैं सुमित्रा मिंज, नितिया लकड़ा, सुकरा भगत, झिरगा भगत, रायसन उराव इत्यादि। आइए सुने ये भजन सुमित्रा मिंज और साथियों का गाया हुआ।

संताली भाषा में भी अनेक लोकगीत कलाकार हैं। इनमें प्रमुख हैं परगना मरांडी, बादल चंद्र मुर्मू, मनोहर महतो इत्यादि। आइए सुने ये संताली लोकगीत बादल चंद्र मुर्मू और साथियों का गाया हुआ।

दुखू सिंह हो, बुधन सिंह कुंकल, यशमती तियू, प्रेम सिंह पूर्ति इत्यादि हो लोक गीत के कलाकार हैं। आइए सुने यशमती तियू और साथियों का गाया हुआ ये हो लोक गीत।

श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज आपने सुना आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कुछ लोकगीत। वाचन स्वर था संध्या नीलिमा तोपनो का और प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की।

गूंजे झारखंड स्वर यात्रा के 90 वर्ष पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। वाचन स्वर था संध्या नीलिमा टोपनो का, प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। श्रोताओं, 10:30 होने वाले हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद सबरी खान से सारंगी पर राग पुरिया कल्याण और राग मारू बिहाग सुनेंगे। आपके साथ तबले पर संगत किया है राशिद मुस्तफा ठिरकवा और कमला साबरी ने। तानपुरा प्रसाद दिया है गुलफाम साबरी ने। तो आइए सुनते हैं उस्ताद साबरी खान से सारंगी वादन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे थे उस्ताद सबरी खान से सारंगी वादन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said, investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suo Motu case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. Defence Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defence Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart, Ang Yu-bak. The IMD has warned of severe heatwave conditions in North India over the next few days. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

एमएफ के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स। रात्रि के 11:10 हुए हैं साथियों, संपन्न होती है आज की हमारी सांध्यकालीन सभा। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:55 से हमारी पहली सभा पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।